नमस्कार, सुप्रभात। FM 103 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज है शनिवार, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की तिथि 27वीं, तदनुसार 18 जुलाई सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 5:58 और 56 सेकंड हो चुके हैं। इसी के साथ आरंभ होती है हमारी आज की पहली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से कल लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है।
1: अब जैसे जालंधर है, यहाँ की पहचान खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहब स्टेशन जाएंगे तो वहाँ तख्त श्री केशगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारी संस्कृति सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृत शेरहटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की सेवा, उनके जीवन स्तर में सुधार और प्रगति के नए अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि सरकार नागरिक देवोभव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार होगा, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। खेलों में हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में

0: की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज सुबह पीवी सिंधु का सामना विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई से होगा। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंचे। इसके परिणाम स्वरूप क्वार्टर फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया, जिससे सिंधु को वॉकओवर मिल गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कृषि संबंधी कुछ बातें खेती की बातें कार्यक्रम के तहत। दलहनी खेती से मृदा उर्वरता की वृद्धि, संकलन और वाचन स्वर है प्रतिमा वर्मा का। पूर्व प्रसारित यह जानकारी है।
2: नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें दलहनी फसलों से मृदा में सुधार की। जी हाँ किसान भाइयों, दलहनी फसलों का खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण और मृदा के स्वास्थ्य सुधार में भी महत्वपूर्ण योगदान है। इन दिनों हमारी कृषि प्रणाली अनेक समस्याओं जैसे मृदा स्वास्थ्य, जल की कमी, वैश्विक तपन, जैव विविधता, नाइट्रोजन की कमी से जूझ रही है। इनके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन और गुणवत्ता में दिनों दिन कमी आ रही है। इन सभी समस्याओं के समाधान में दलहनी फसलें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए दलहन उत्पादन को बदलते परिवेश में मानव पोषण, पशुधन आहार, पर्यावरण और मृदा उर्वरता का टिकाऊ स्रोत कहा जा सकता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दलहन उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। किसान भाइयों, दलहनी फसलें दुनिया के अधिकांश क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। विश्व में इनके क्षेत्रफल और उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। ये अपेक्षाकृत कम लागत की खाद्य फसलें हैं। मूंग, उड़द, अरहर, चना, लोबिया और मटर मुख्य रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसलें हैं। ये फसलें किसानों और उपभोक्ताओं में बेहद लोकप्रिय हैं। दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो इन फसलों की जड़ों में सहजीवी संबंध बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण करते हैं। इससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है, इसलिए इन फसलों को कम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। इन फसलों की कटाई के बाद इनके अवशेष मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये अग्रिम फसल के उत्पादन में नाइट्रोजन उर्वरकों की मात्रा के प्रयोग को कम भी कर देते हैं। इन फसलों को हरी खाद के विकल्प के तौर पर भी उगाया जा सकता है। दलहनी फसलों में मूसला जड़ तंत्र होने के कारण इनकी जड़ें लगभग 6-8 फीट गहराई तक चली जाती हैं। इन फसलों के अवशेष में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होने के कारण ये केंचुओं की संख्या में वृद्धि करती है। दलहनी फसलों की जड़ों में ग्लोमेलिन प्रोटीन पाई जाती है, जो कि गोंद की तरह मृदा कणों में स्थिरता प्रदान करती है। इससे मृदा संरचना में सुधार होता है और मृदा जल संचयन में वृद्धि और मृदा अपरदन में कमी होती है। इसके परिणाम स्वरूप मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। किसान भाइयों, खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूं, धान, मक्का और ज्वार के अवशेषों की तुलना में दलहनी फसलों के अवशेषों में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कम होने के कारण ये सूक्ष्म जीवों द्वारा खनिजीकरण के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। इसलिए दलहनी फसलों के अवशेषों वाली मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। लगातार अनाज वाली फसलों को उगाने से उनमें लगने वाले कीट और रोगों का प्रकोप अधिक होने लगता है। सामान्यतः अनाज वाली फसलों पर लगने वाले कीट और रोगों का प्रकोप दलहनी फसलों पर नहीं होता है। कीट और रोगों के रोग जनकों को जीवन चक्र पूरा करने के लिए उचित माध्यम नहीं मिल पाता है, इसलिए इन फसलों को फसल चक्र में शामिल करने से कीट और रोगों के निवारण में सहायता मिलती है। किसान भाइयों, सामान्यतः दलहनी फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त ये फसलें अपनी पत्तियों से भूमि की ऊपरी सतह को ढक लेती है, जिससे भूमि की सतह से पानी का वाष्पीकरण कम होता है। प्राकृतिक रूप से मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए दलहनी फसलों को लगाया जाता है। खाद्यान्न फसल लगाने के बाद दलहन फसल लगाने से उत्पादन तो होता ही है, साथ ही साथ पोषण मान भी मिट्टी को प्राप्त

0: हो जाता है। दलहनी फसलें मिट्टी में नाइट्रेट की आपूर्ति करके मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देती है। जी हाँ किसान भाइयों, इस प्रकार दलहनी फसलें की खेती से मृदा की उर्वरता में वृद्धि की जा सकती है। इसी के साथ कार्यक्रम से अब हमें दीजिए अनुमति।
1: खेती की बातें, अभी आप सुन रहे थे कृषि संबंधी पूर्व प्रसारित जानकारी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस गान।

श्री राम के आश्रम में प्रवेश करते ही भरत का दुख और दाह ऐसे मिट गया जैसे योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। श्री राम सीता और लक्ष्मण को देख सखा निषाद सहित भरत और शत्रुघ्न प्रेम के आनंदातिरेक में हर्ष विषाद सुख दुख सब कुछ भूल गए। स्नेह के सागर में डूबते उतराते भरत हे नाथ रक्षा कीजिए कहते हुए दंड की भांति श्री राम के चरणों में आ गिरे।

अभी आप सुन रहे थे गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस गान का पाठ। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन सृजनात्मकता, संकलन और वाचन सर है शर्मिला वर्मा का।

रचनात्मकता वह स्थिति है जिसके तहत मनुष्य की ऐसी सकारात्मक सोच और क्षमता उजागर होती है जो न सिर्फ व्यक्ति विशेष बल्कि पूरे समाज के लिए हितकारी होती है। अक्सर यह माना जाता है कि लेखक, पत्रकार, चित्रकार, आविष्कारक ही सृजनात्मक गतिविधियों से जुड़े होते हैं, पर जिस व्यक्ति के क्रियाकलाप लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होते हैं उसका स्वभाव रचनात्मक ही होता है, जबकि नकारात्मक सोच का व्यक्ति सुचारू रूप से चलने वाले कामों में हमेशा रोड़े ही अटकाता है। क्रिएटिविटी किसी भी समस्या को सुलझाने का नैसर्गिक तरीका है। सृजनात्मकता जन्मजात प्रतिभा कम, निरंतर रचनात्मक कार्यों में संलग्न रहने की प्रक्रिया ज्यादा है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, सृजनात्मक क्षमता हरेक के अंदर होती है लेकिन उसको मूर्त रूप केवल पुरुषार्थी ही दे पाता है। रचनात्मक व्यक्ति के चित्त में शांति विद्यमान रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह स्वार्थ से ऊपर उठकर जनहित के लिए काम करता है। सेवा भाव से प्रेरित होकर कार्य करने से उसकी आत्मबल में वृद्धि होती है। अंतःकरण में अस्थाई शांति का वास होता है। क्रिएटिव व्यक्ति के विचार हमेशा सात्विक और पवित्र होते हैं, जिससे उसके हृदय में उद्विग्नता पनप नहीं पाती। आत्मद्वंद से बचना हर कोई चाहता है। हर व्यक्ति कामना करता है कि उसके जीवन में शांति आए। इसके लिए उसे अपने हितों की पूर्ति की बजाय दूसरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सृजनात्मकता का सहारा लेना होगा। शांतिमय जीवन के लिए रचना बेहद जरूरी है। क्रिएशन जीवन का ऐसा सूत्र है जो चित्त को समुद्र की तरह शांत कर देता है। यदि किसी व्यक्ति का चित्त दुखी है तो समझ लेना चाहिए कि उसने जीवन में लेश मात्र भी सृजन नहीं किया है।

सृजनात्मकता, अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। जी हाँ दोस्तों, निस्वार्थ सेवा का सर्वोच्च स्वरूप सच्ची परोपकारिता है, जो व्यक्ति को आंतरिक रूप से समृद्ध और संतुष्ट बनाता है। नेकी कर दरिया में डाल, यानी निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करना और बदले में किसी फल या एहसान की उम्मीद नहीं करना। यह जीवन दर्शन हमें सिखाता है कि भलाई करके उसे भूल जाना ही मानसिक शांति और अहंकार से मुक्ति का सच्चा मार्ग है। जब हम किसी की मदद करते हैं और बदले में धन्यवाद की उम्मीद छोड़ देते हैं, तो कभी निराशा नहीं होती है, क्योंकि उम्मीद और आकांक्षाएं ये हमें स्वार्थ की ओर ले जाती हैं। लेकिन जैसे ही हम इस सब से परे हो जाते हैं, फिर हमारे अंदर किसी बात की उम्मीद नहीं होती, आशा नहीं होती और हमें निराशा भी नहीं होती है। ऐसे विचार मन को शांति प्रदान करते हैं और नकारात्मक भावनाओं से दूर रखते हैं, जिससे आत्मिक शांति मिलती है।

0: हरिओम शरण और साथियों के गाए इसी भक्ति गीत के साथ ही आराधना कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए आपको जानकारी दिलवाते हैं पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर पवन कुमार वर्णवाल। खुश रहना भी एक कला है, आकाशवाणी रांची केंद्र के सौजन्य से प्राप्त यह भेंटवार्ता है, आइए सुनते हैं।
1: तो आजकल की लाइफस्टाइल में खुश रहना भी एक कला है। हम खुश कैसे रहें और साथ साथ जो हम एक तनाव के वातावरण में ज़िंदगी जी रहे हैं उस तनाव को कैसे कम करें, और जो लोगों में एक संवादहीनता और एक अकेलापन का एहसास होने लग गया है, इन सब चीज़ों से कैसे हम बाहर आएं, इन सारे विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। आज आमंत्रित हैं रांची के प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन कुमार वर्णवाल। डॉक्टर वर्णवाल, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब। खुश रहना भी एक कला है, एक आर्ट है, कैसे लोग अपने अंदर डेवलप करें?
2: आज जो खुश है वो सफल है, यानी आज इस चीज़ की लोगों में बड़ा ही कमी है। लोग इस चीज़ के लिए लोग ढूंढते रहते हैं कि कैसे मुझे खुशी मिले, कैसे हम खुश रहें, कैसे अपनी ज़िंदगी को खुश रखें, कैसे हम परिवार को खुश रखें, समाज में बेहतर कर सकें। और अगर हम खुश रहते हैं तो मानसिक प्रॉब्लम से दूर रहते हैं, यानी मानसिक बीमारी कम से कम होती है। और अगर मन की बीमारी कम होती है तो निश्चित तौर पर हमारी शारीरिक स्थिति पर भी एक पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी बहुत सा शारीरिक बीमारी बहुत कम होती है। खुश रहना एक कला है, और जो आदमी इस कला को सीख लिया या अपनी ज़िंदगी में डाल लिया वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल सकता है और बहुत संतुष्ट रह सकता है। इसकी शुरुआत अगर हम करें तो पहली चीज़ें हैं कि इसकी शुरुआत हमारी घर से होती है, यानी जिस फैमिली में सारे लोग खुश हैं, माता पिता खुश हैं, पूरे इन्वायरमेंट खुश है, उनके सगे संबंधी खुश हैं, यानी उनके दोस्तों लोग खुश हैं, तो डेफिनेटली उसका असर उस पर पड़ता है। यानी अगर फैमिली में सारे लोग अगर खुश हैं तो उसका इफ़ेक्ट उस व्यक्ति पर निश्चित रूप से पड़ता है। कोई भी आदमी खुश तभी रहेगा जब वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट से करेगा, चाहे फैमिली हो, सोसाइटी हो, या जहाँ काम कर रहा हो उस प्लेस हो या पढ़ाई का प्लेस हो। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जो लोग खुश नहीं हैं अगर वो अपनी दिनचर्या को देखें तो उनको ये समझ में आएगा कि खुश नहीं रहने का सबसे बड़ा कारण होगा कि वो अपनी दिनचर्या में कुछ गड़बड़ कर दिया है, कमी कर दिया है, यानी उनकी दिनचर्या ठीक से नहीं चल रही है। जैसे दिनचर्या की अगर हम बात करें तो उसकी शुरुआत हमारी होती है खान पान से, मतलब हम क्या खाते हैं, किस तरह से सोते हैं, कितना पानी पीते हैं, हम मॉर्निंग वॉक करते हैं या नहीं करते हैं, हम लोगों से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जैसे कि खुश रहने के लिए ये भी ज़रूरी है कि अपने दोस्तों को, परिवार वाले को, अपने सगे संबंधियों को समय दें। इसके साथ साथ हमारे जो जिस धर्म के हैं हम पूजा पाठ पर भी थोड़ा ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं, हमारा टाइम का मैनेजमेंट किस प्रकार का है, मतलब टाइम मैनेजमेंट हमारा किस तरह का है। यदि ये सारी चीज़ों पर हम ध्यान दें, साथ ही अगर नशा जैसी चीज़ों को भी अगर हम अपनी ज़िंदगी पर बिल्कुल हावी नहीं होने दें, उससे अगर दूर रखें, तो हम बहुत हद तक अपने आप को खुश रह सकते हैं और दूसरे को भी खुश रहने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
1: खुशी तो आपके अंदर समाहित है, बस उसे ढूंढने की आवश्यकता है। खुश रहने के लिए आपके आसपास का वातावरण भी बहुत जिम्मेदार हो जाता है, जैसा आपने बताया। डॉक्टर साहब, आजकल हम लोग तनाव के वातावरण से जी रहे हैं।
2: जी,
1: हमारे रोज़मर्रा की जो जीवन शैली है वो बड़ी अव्यवस्थित सी हो गई है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं, और जब हम बहुत कुछ नहीं पाते हैं तो फिर तनाव हो जाता है, और यही तनाव दुख में बदलता है, आप अवसादित हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं।
2: बिल्कुल।
1: तो ऐसे मन में लालसा क्यों होती है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बस पाने की चाह लोगों में लगी रहती है।
2: एक्चुअली व्यक्ति को, हमारे समाज के लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हमारा सेटिस्फेक्शन का एक लिमिटेशन कहाँ तक है, यानी हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, हम दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते हैं। हम ये कंपेयर करते हैं कि उसके पास इतनी धन है, इतनी दौलत है, वो इस पोस्ट पर है, उसकी इतनी वैल्यू है, इतनी चीज़ें उसके पास है। जब हम दूसरे से कंपेयर करते हैं तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे में कुछ कमी है, और उस कमी को पाने के लिए हम जो हमारे दिमाग नहीं कहता है, लेकिन दिमाग का एक पार्ट नहीं कहता है, लेकिन दूसरे पार्ट उस पर इतनी हावी हो जाती है कि हम नहीं चाहते हुए भी उस चीज़ की ललक हमारे में बढ़ती है, और बढ़ने के कारण से कुछ इस तरह से अपने जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं जिसके कारण से हमें खुशी मिल नहीं पाती है, और भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपनी जितनी भी रूटीन वर्क है, जो भी हमारी क्रिया है, सबको ख़राब कर लेते हैं। इसके कारण से हम शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार भी पड़ जाते हैं।
1: लोगों में अकेलापन घिरता जा रहा है, लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं
2: जी।
1: और एक लोगों में जो बातचीत था वो कहने के ख़त्म सा होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गजट से लोगों से संपर्क कर लेते हैं, लेकिन सामने मिलकर उनसे बातें कर अच्छी अच्छी बातें करके ये इस चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं। तो ये संवादहीनता क्यों हो गई है, लोग अपने आप को अकेला क्यों महसूस करने लग गए हैं?
2: पिछले कुछ वर्षों से जैसे ही कि डिजिटलाइजेशन हमारे कंट्री और विश्व में आया है, तब से जो संवादहीनता की प्रवृत्ति लोगों में, संवादहीनता जैसी चीज़ें हमारे लगभग सारे लोगों में आया है। कुछ लोग ये चीज़ को अहमियत नहीं देते हैं जो इससे डिजिटल से दूर रहते हैं। अभी के समय में जो डिजिटलाइजेशन हो गई है, इसमें हम ज़्यादातर समय अपने गैजेट्स में, मोबाइल में, टीवी में, कंप्यूटर में, और उससे रिलेटेड इवन हमारे जो कमाई का साधन है वो भी उसी से रिलेटेड चीज़ों में हम ढूंढते रहते हैं, जिसका इफेक्ट हमारे ब्रेन पर बड़ा ही बुरा पड़ता है, और हमारे शरीर पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। जैसे लोग मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, शारीरिक रूप से बीमार हो जाते हैं, उसे तरह तरह का बॉडी में चेंजेज आने लगती है। तो ये तो होगा ही, इसलिए होगा क्योंकि आप एक जगह एक रूम में बैठकर आपने आप को एक सेंट्रलाइज कर लिए हैं, आप किसी से बातें नहीं कर पाते हैं। जब किसी से बातें नहीं करेंगे तो जो ब्रेन जो रासायनिक पदार्थ है जिसे सीरोटोनिन जो कहते हैं, उसका सिक्रीशन तो होगा ही नहीं। जब वो सिक्रीशन ही नहीं होगा सीरोटोनिन का, सीरोटोनिन प्लेजर हार्मोन, खुश देने वाला हार्मोन है, खुश देने वाला केमिकल्स है, तो जो हमारे ब्रेन में वो सिक्रीट ही नहीं करेगा तो हम तो खुश नहीं रह पाएंगे। इवन जितनी भी खुशी की चीज़ें हैं सब में यही हार्मोन सिक्रीट होता है ब्रेन में। आज के ज़माने में जो हम अकेले सारे काम करते हैं तो डेफिनेटली हम अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं, और इसके कारण से संवादहीनता बन जाती है, किसी से बात नहीं कर पाते हैं, और इसका बड़ा ही इफेक्ट, बुरा इफेक्ट हमारे ब्रेन पर, हमारे बॉडी पर पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे फैमिली पर, हमारे सोसाइटी पर, इवन जो हमारे दोस्तों करीब पर बड़ा ही बुरा असर पड़ता है, और इस चीज़ से हम लोग को बचना चाहिए।
1: लोगों के चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब होती जा रही है, कैसे लोग अपने चेहरे पर मुस्कान लाएं, खुलकर हंसें, ठहाके लगाएं?
2: हम अपने आप को कैसे खुश रख पाएं, मुस्कुराहट ला पाएं, और जब हम खुश रहेंगे, मुस्कुराहट लाएंगे, तो निश्चित तौर पर हम संतुष्ट रहेंगे, मुझे की बीमारियों से दूर रहेगी, चाहे वो मानसिक बीमारी हो या शारीरिक बीमारी हो, उससे मुझे दूर रखेगा। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपने दिनचर्या को ठीक करें, यानी जो लोग दिनचर्या को ठीक रखते हैं उसको मेंटेन करें, और जो लोग दिनचर्या को ठीक नहीं रखते हैं उसको ठीक करने की ज़रूरत है। जैसे हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं, खाने पीने का में ग्रीन वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट, सलाद, सारा सीजनल होना चाहिए।
1: इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता
2: है। बहुत प्रभाव पड़ता है। खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के अलावे मिनरल्स, विटामिन्स की बड़ी ही जरूरत होती है, जिससे हमारे ब्रेन तरोताज़ा रहता है। तो इस पर विशेष ध्यान दें, प्रचुर मात्रा में पानी लें, और ये सारे चीज़ें रूटीन, खाना पीना सब रूटीन के रूप में करें। ऐसा नहीं कि आज 8 बजे नाश्ता किया, कल 12 बजे किया, परसों किया ही नहीं, सीधे वो लंच ले लिया, तो इस तरह का चीज़ें नहीं।
0: खुश रहना भी एक कला है। अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के तहत डॉक्टर पवन कुमार वर्णवाल से ली गई भेंट वार्ता, पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता थी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब शामिल होते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः सायंकाले पंजाबस्य जालंधरनगरात् आभासीयमाध्यमेन देशस्य 20 राज्येषु पुनर्विकसितानां 75 रेलस्थानकानां उद्घाटनम् अकरोत्। एतेषां स्थानकानां अमृत भारत स्थानक योजनायाः अन्तर्गतम् आधुनिकीकरणं जातम्। एषा योजना विश्वस्य बृहत्तमासु स्थानक पुनर्विकास योजनासु अन्यतमा अस्ति। प्रायः 70.5 लाख कोटि रूप्यकाणां व्ययेन विकसितानि एतानि स्थानकानि यात्रिसौविध्यैः समलंकृतानि सन्ति। पुनर्विकसितेषु स्थानकेषु पंजाबस्य जालंधर कैंट SAS नगरम्, श्री मुक्तसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब इत्येतेषां स्थानकानां समावेशः अस्ति। तदतिरिक्तं गुजरात ओडिशा दक्षिण रेल क्षेत्राणां अनेकानि स्थानकानि अपि अत्र सम्मिलितानि सन्ति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री करटोली अम्बाला रेलसेवां अमृतसर वाराणसी संत रविदास एक्सप्रेस चेत्येताभ्यां हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। ह्यः जालंधरे प्रधानमन्त्रिणा लोकार्पितानि राष्ट्राय समर्पितानि च एतानि पुनर्विकसितानि स्थानकानि एते द्वे रेलसेवे च रेलमार्गावसंरचना परियोजनानां भागाः सन्ति। एतासां परियोजनानां व्ययः 70.4 लाख अस्ति। अवसरेस्मिन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् 75 पुनर्विकसित रेलस्थानकानाम् उद्घाटनं भारतीय रेलविभागस्य विगतेषु कतिपय वर्षेषु अभवत्, तीव्र परिवर्तनस्य द्योतकं च अस्ति।
1: केंद्र की भाजपा सरकार की भी प्राथमिकता है भारत के हर नागरिक की सेवा, भारत के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे आगे बढ़ने के लिए नए नए अवसर उपलब्ध कराना, और इसलिए हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
0: पूर्वाह्ने एव प्रधानमंत्री हरियाणा राज्यस्य जिंद रेल स्थानकात् भारतस्य प्रथमाय हाइड्रोजन इत्यनेन चालित रेलयानाय अपि हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। एतत् रेलयानं जिंद सोनीपत रेलस्थानकयोः मध्ये सञ्चरिष्यति, अथ 91 किलोमीटर मिता दूरता प्रायः द्विहोरायां पूर्णं करिष्यति। वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः ह्यः एस्टोनिया देशस्य राजधान्यां ताल्लिन् नगरे तत्रत्य विदेशमन्त्रिणा मार्गुत् साह्यकना इत्यनेन सह मेलनं विहितवान्। उभाभ्याम नेतृभ्याम भारत एस्टोनिया देशयोः मध्ये व्यापार निवेश अंकिकीय परिवर्तन साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी चेत्येषु क्षेत्रेषु सहयोगस्य सुदृढीकरण विषये विचार विमर्शः कृतः। अनन्तरं साख्यकना इत्यस्य उपस्थितौ मन्त्रिणा भारत एस्टोनिया व्यापार मञ्चम् अपि अभिसंबोधितम्। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः गतरात्रौ पश्चिमबंगालराज्यस्य त्रिदिवसीयायां यात्रायां सिलिगुड़ी इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। सिलिगुड़ीनगरस्य बागडोगरा विमानस्थानके आगमनावधौ पश्चिमबंगालस्य मुख्यमन्त्रिणा सुवेन्दु अधिकारिणा तस्य स्वागतं विहितम्। श्रीशाहः अद्य जुमागाछ नगरस्य सीमाचौकी इत्यत्र VSF इत्यस्य 18वां बटालियन इत्यस्य भ्रमणं करिष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतीय क्रीडिका तथा द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री PV सिंधुः अद्य प्रातः टोक्यो नगरे जापान ओपन क्रीडायाः महिला एकलस्य उपांत्य चक्रीय स्पर्धायां चीन देशस्य चेन युफेई सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अम्बाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भव के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
1: हम नागरिक देवो भव इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
2: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कार्यशाला सभी हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय से पेंशन संबंधी मुकदमों के प्रबंधन में सुधार करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 25 जुलाई तक 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौत की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए

अभी से थोड़ी देर बाद यानी कि 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंग के तहत बांसुरी वादन। कलाकार होंगे KS गोपाल कृष्णन। 7:45 पर होगी कानून की बात, सुनेंगे आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हिंदी समाचार 8:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। 8:15 पर अंग्रेजी समाचार मॉर्निंग न्यूज़ और प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से सुबह 8:30। 8:45 पर हम अपने स्टूडियो से आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत गुंजन के तहत कुछ फिल्मी गाने। जोहार पलामू आप सुनेंगे सुबह 9:00 हमारा यह विशेष कार्यक्रम। 9:10 पर हम शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, आज आप सुनेंगे 10वीं कड़ी। फिल्म गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत के तहत हम प्रस्तुत करेंगे कुछ फिल्मी गाने सुबह 9:40 पर। दस बजे हम शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में हिंदी समाचारों के लिए अंग्रेजी समाचार 10:05 पर और 10:10 पर हम लिए चलेंगे आपको आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के विविध कार्यक्रम। गीतों भरी कहानी 10:10 पर। 11:00 सुन पाएंगे आप चित्रपट संगीत और 12:00 यादों की महफिल। दोपहर 1:00 पुनः हम शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में हिंदी अंग्रेजी समाचारों के लिए। 1:10 पर आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित होंगे प्रादेशिक समाचार।

1:20 पर आप सुन पाएंगे विविध भारती के तहत सुरीला सफर कार्यक्रम। 2 बजे अंग्रेजी समाचार, 2:15 पर आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 2:30 पर यानी कि 2:30 सुनेंगे आप सदाबहार नगमे में आकाशवाणी के विविध भारती, आकाशवाणी के केंद्र मुंबई से विविध भारती के तहत। 2:55 पर एक बार पुनः प्रादेशिक समाचार सुन सकेंगे आप आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 3 बजे से मनचाहे गीत सुनेंगे आप, नाट्य तरंग का आनंद लेंगे आप 3:30 पर। शाम 4 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से और 4:02 से आप सुनेंगे विविध भारती के तहत बॉम्बे टॉकीज। 5 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से।

शाम 5:30 पर एक बार पुनः हम आपको जानकारी देंगे कार्यक्रमों की। 5:35 पर युवा साथी सुन पाएंगे कार्यक्रम युवावाणी। चर्चा की जाएगी, इस कार्यक्रम में आवश्यकतानुसार करें मोबाइल का प्रयोग और नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर भी चर्चा होगी। अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र सरकार के कार्यक्रम सुनेंगे आप। वार्ताकार होंगे सतीश कुमार दुबे। प्रादेशिक समाचार शाम 6:00 आकाशवाणी के रांची केंद्र से और 6:02 से आप सुनेंगे खेतीबाड़ी कार्यक्रम। चर्चा होगी इस कार्यक्रम में बरसात के मौसम में पशुओं की बीमारियों और देखभाल पर। लत्तर वर्गीय सब्जियों की देखभाल पर भी चर्चा की जाएगी। गेंदा फूल की व्यावसायिक खेती पर ली गई भेंटवार्ता सुनेंगे आप। भेंटवार्ता करेंगे दिलीप कुमार पांडे, कृषि विशेषज्ञ चियां के पलामू, बातचीत करेंगे प्रतिमा वर्मा, पूर्व प्रसारित यह भेंटवार्ता होगी। कृषकों को संबोधित कार्यक्रम शाम 6:30 से। चर्चा की जाएगी इस कार्यक्रम में समसामयिक कृषि कार्य पर। आज की बात होगी कीटनाशक के प्रयोग में सावधानियां पर। उद्यान एवं वानिकी, इस विषय पर ली गई भेंटवार्ता सुनेंगे आप। भेंटवार्ता करोंगे प्रमोद कुमार, कृषि विशेषज्ञ क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियां की पलामू, बातचीत करेंगे संतोष कुमार, पूर्व प्रसारित यह भेंटवार्ता होगी। सब्जियों की खेती आय का साधन आज की नसीहत के तहत और आज का मौसम भी जानेंगे आप, आज का बाजार भाव भी जानेंगे आप इसी कार्यक्रम में। शाम 6:55 पर हम लिए चलेंगे आपको आकाशवाणी के रांची केंद्र। प्रादेशिक समाचार 7:07 पर। जिले में आजकल 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे अपने केंद्र से गीत गौजलों के तहत स्वरांजलि कार्यक्रम, गीत गौजलों का प्रोग्राम। कलाकार होंगे बेगम अख्तर। विज्ञान जगत 7:45 पर। 8:00 फिल्म संगीत चित्रपट से कार्यक्रम के तहत। 8:45 पर शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में समाचारों के लिए। 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के तहत आज के फनकार। 10:00 हम सुनवाएंगे आपको फिल्म संगीत अपने केंद्र से। 11:00 फिर शामिल होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में और 11:10 पर हम करेंगे सभा समापन। तो यह थी कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं राग रंग कार्यक्रम के तहत बांसुरी वादन। कलाकार हैं KS गोपाल कृष्णन।

0: मित्रों जोहार नमस्कार। मित्रों वर्तमान जमाना सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया में हम अपनी बात को रखते हैं और बहुत सारी जानकारियां एकत्रित करते हैं, बैंक से पैसे की निकासी करते हैं और ऐसे में भी आप धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। तो साइबर अपराध से हम कैसे बचें, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और साथ साथ बौद्धिक संपदा अधिकार का किस प्रकार उल्लंघन हो रहा है इस पर भी हम आज गहनता से चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए आज हमारे कानून की बात कार्यक्रम में आमंत्रित हैं झालसा के एडवोकेट और मीडिएटर श्री कौशल कुमार जी। कौशल जी स्वागत है। कौशल जी, हर व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से सोशल मीडिया से जुड़ा होता है और बहुत सारी गतिविधियों में वो सम्मिलित हो जाता है और खासकर पैसे की निकासी ऑनलाइन निकासी करता है और ऐसे में कभी कभी वो धोखाधड़ी का शिकार भी हो जा रहा है। तो साइबर अपराध की दुनिया एक बहुत बड़ी दुनिया है और इसके शिकंजे में यदि कोई फंस जाता है तो फिर उसको बहुत हानि भी होती है। तो इस साइबर अपराध की दुनिया से कैसे हम बचें?
1: देखिए, पहले तो हम लोगों को ये मानना होगा कि साइबर अपराध है क्या
0: जी,
1: किस माध्यम से होता है। साइबर अपराध बहुत तरीके से लोग कर रहे हैं। कंप्यूटर है, आपका मोबाइल हैक कर ले रहे हैं, आपका इंटरनेट को हैक कर ले रहे हैं और आप अन्य कई तरह के डिजिटल के माध्यम का युग है जिसके बिना हम नहीं चल पाते हैं और हम सामने वाले को अपरिचित होते हुए भी उस पर पूर्ण विश्वास करते हुए हम अपनी सभी बातों को उससे शेयर कर लेते हैं जिसके कारण हम तुरंत साइबर अपराध के की ओर अग्रसित हो रहे हैं। अब साइबर अपराध जो है बहुत तरीके से होते हैं, जैसे हैकिंग है, किसी कंप्यूटर प्रणाली या नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से लोग प्रवेश कर जा रहे हैं। लोग हमसे ओटीपी मांगते हैं कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप मेरे को दे दीजिए, तो हम लोग बिना विश्वास किए कि आया होगा और हम उसको दे देते हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी चल रहा है, फर्जी वेबसाइट बन रहे हैं, ईमेल्स बन रहे हैं, मैसेज बन रहे हैं और बहुत सुलभ साधन है फेसबुक। आपका मोबाइल को हैक करके, आपके ईमेल को हैक करके बहुत आसानी तरीका से फ्रॉड किया जा रहा है, फ्रेंड एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। इस सब से हम लोगों को बचना होगा। आपके पहचान की चोरी हो रही है, लोग व्यक्तिगत जानकारी और पासवर्ड इतने अच्छे तरीके से लोग ऑब्टेन कर रहे हैं इस साइबर क्राइम के माध्यम से कि हम लोग कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग में हम लोग फंस रहे हैं। साइबर स्टॉकिंग है, साइबर पूलिंग है, जिससे हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम व्यक्तियों को अपमानित और प्रताड़ित भी किया जा रहा है। लोग डिजिटल अरेस्ट की ओर अग्रसित हो रहे हैं कि हम थाना से बोल रहे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं, तुम तुरंत हमको, तुम्हारे घर वाले फंस गए हैं, तुम फंस गए हो, हमको इतना रुपया ट्रांसफ़र कर दो। ये सब से हम लोगों को बचना होगा,
0: हम लोगों को जागरूक और सावधान होना पड़ेगा। और बहुत सारे अनचाहे कॉल आते हैं आपके पास और बहुत सारे आपको लुभावने ऑफर भी दिए जाते हैं और आपको फंसाने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा, आपका एटीएम ब्लॉक हो जाएगा, आप ये लिंक भेज रहा हूँ उसको आप डाउनलोड कीजिए। और जब आप इस तरह की कार्य करते हैं तो फिर इसके आप शिकंजे में फंस जाते हैं और आपके बैंक से पैसे की निकासी हो जाती है। तो हमें सावधान होना पड़ेगा और जागरूकता ही इसका सबसे बड़ा बचाव है। कौशल जी, इसके साथ साथ एक बौद्धिक संपदा अधिकार भी है, तो ये बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है और इसका उल्लंघन होने पर क्या कार्रवाई की जाती है?
1: देखिए, बौद्धिक संपदा जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ वायलेशन है। इसको पहले हम लोगों को समझना होगा कि बौद्धिक संपदा है क्या। इसका आशय मानव मस्तिष्क जो हमारे मन की स्थिति के अनुसार मन के द्वारा बनाए गए सृजनात्मक कृतियों से, जैसे हम कोई साहित्य की रचना करते हैं, कलाकृतियां का आविष्कार करते हैं, ट्रेडमार्क बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ये हमारे बौद्धिक संपदा के डिफिनेशन में आता है। इसका वायलेशन तब होता है कि जो चीज हम बनाए हैं उसका उपयोग बिना अधिकारों के, बिना उसको अनुमति लिए हम उस संबंधित चीज को बेचते हैं या उसको किसी अन्य के साथ शेयर करते हैं। जैसे हम लोग साइबर क्राइम को लें तो मैक्सिमम डिजिटल के माध्यम से ही ये फ्रॉड हो रहे हैं। उसी तरह ये भी एक माध्यम है कि ये इसका जो वायलेशन हो रहा है वो डिजिटल के माध्यम से ही हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम बौद्धिक संपदा के अंतर्गत हम अपने दिमाग से कोई एक नई सोच आइडिया ला या डिजाइन बनाते हैं, कहानी बनाते हैं, गाना बनाते हैं, आविष्कार आता है। जैसे उसको हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं कि जैसे हमने एक कोई मशीन बनाई या कविता लिखा, तो इसको अपने अर्निंग के लिए, अपने बौद्धिक विकास के उपयोग के लिए बनाते हैं। और इसका वायलेशन रोकने के लिए सबसे पहले हमको पेटेंट अधिनियम के तहत उसको रजिस्टर्ड कराना चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके। तो ये एक बौद्धिक संपदा है। बौद्धिक संपदा के बहुत से कारण हैं कि हम उस पेटेंट को अगर पेटेंट के तहत एक नियम के तहत अगर उसको हम रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे तो जो हमने एक संपदा बनाई है, एक प्रॉपर्टी बनाई है अपने बौद्धिक के लिए, जिससे भारत की भी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है, डिजिटल का एक माध्यम सुदृढ़ होता है, तो वो बहुत तरीका से होते हैं। जैसे कॉपीराइट, पुस्तक, संगीत, फिल्में, सॉफ्टवेयर या अन्य रचनात्मक कार्यों का अधिकार होता है कॉपीराइट के तहत। उसी तरह ट्रेडमार्क है, किसी कंपनी के नाम, लोगों, प्रतीक या ब्रांड ब्रांड की कानूनी सुरक्षा यहाँ पे दी जाती है। जो आप बना रहे हो, जो आप अपने मन से उसको बौद्धिक और अपनी शक्ति के अनुसार जो आपने कहानी लिखी है उसको, उसी तरह है पेटेंट, जिसको हम लोग किसी नए आविष्कार पर प्राप्त कर एक विशेष अधिकार मिलता है कि आप जो चीज बनाए हैं उसको रजिस्टर्ड कराना है एक समावधि के अंतर्गत, ताकि इसका दुरुपयोग अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा न किया जा सके। उसी तरह आप आगे बढ़ेंगे तो औद्योगिक डिजाइन है, इंडस्ट्रियल डिजाइन है, जिसमें उत्पाद के विशिष्ट स्वरूप और डिजाइन की सुरक्षा होती है। बौद्धिक संपदा के बहुत से उदाहरण है, बिना अनुमति सॉफ्टवेयर की कॉपी बनाना, किसी ब्रांड का नकली लोगो उपयोग करना, इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड कर अपने नाम से प्रकाशित करना, फिल्मी गानों और पुस्तकों का अवैध प्रतिलिपि बनाना, नकली उत्पादकों का प्रसिद्ध ब्रांड का नाम लगाकर बेचना, ये सब जो भी वायलेशन हो रहे हैं जो हमने बनाई है वो इसके तहत होती है, जिसके लिए एक कानूनी प्रावधान भी है हमारे यहाँ कि हम इसको कैसे रोके। तो उसके लिए कॉपीराइट अधिनियम है 1957, जिसमें दीवानी और फौजदारी दोनों तरह का के मामले रजिस्टर्ड होते हैं। ट्रेडमार्क में भी है, पेटेंट अधिनियम भी है। क्या क्या चीज़ का हम लोगों को नुकसान होता है, जैसे सॉफ्टवेयर प्राइवेसी है, ऑनलाइन फिल्म और संगीत जो हम बनाए उसकी प्राइवेसी का नुकसान होता है, ई पुस्तकें जो हम कर रहे हैं उसका अवैध प्रतिलिपि वितरण होता है, नकली वेबसाइट बनाकर ब्रांड का दुरुपयोग होता है, ऐसे सभी मामले आईटी अधिनियम के अंतर्गत भी एक साथ लागू होते हैं।
0: बौद्धिक संपदा के अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है किसी व्यक्ति के साथ, उसे लगता है कि हमारे पेटेंट का उल्लंघन हो रहा है, तो अपनी बात कहाँ वो दर्ज कराए और कैसे इस पर कार्रवाई की जाती है?
1: इसमें कानून में प्रावधान है कि आप आईटी एक्ट के तहत या कॉपीराइट के तहत पेटेंट अगर आप रजिस्टर्ड हुए उसके बाद भी दुरुपयोग हो रहा है तो पेटेंट एक्ट अधिनियम के तहत भी आप करा सकते हैं। ट्रेडमार्क अगर आपका कोई चीज चोरी हो गया है तो इसके लिए आप माननीय सिविल कोर्ट में, व्यवहार न्यायालय में इसके विरुद्ध आप अपनी शिकायत वाद या सक्षम पुलिस अधिकारी के समक्ष भी आप इसके विरुद्ध FIR दर्ज करा सकते हैं।
0: और इस पे त्वरित गति से कार्रवाई की जाती है,
1: तुरंत कार्रवाई की जाती है।
0: कौशल जी, हम बात कर रहे हैं साइबर अपराध पर और बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन पर।

0: साइबर अपराध से कैसे बचा जाए, क्या लोगों को सलाह देंगे कि आप जागरूक होइए, सतर्क होइए, सावधान होइए, किसी भी अवांछित फोन कॉल्स का आप जवाब नहीं दें, और यदि आपको कोई धमकाता है, डराता है, तो आप उसके बहकावे में नहीं आए और किसी भी तरह से आप OTP नहीं शेयर करें।
1: आपने सही कहा, सबसे पहले हम साइबर क्राइम से बचने के लिए, आज आए दिन पेपरों में निकल रहा है कि साइबर क्राइम कितने तरीका से एक कीड़े का रूप ले रहा है, जिसमें सरकार चाह करके भी उसको प्रतिबंधित नहीं कर पा रही है। कानून है, लेकिन फिर भी इसके करे कानून के प्रावधान के तहत हम लोग इसके शिकंजे में आ रहे हैं,
0: क्योंकि अपराध करने वाला बहुत चतुर है।
1: चतुर है
0: जी,
1: लोग अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से इसके शिकार हो रहे
0: जी,
1: हैं।
0: बिल्कुल,
1: जो कानूनविंद भी इसके शिकार हो रहे हैं। तो इसके बचने के लिए सबसे पहले आप किसी भी अनचाहे कॉल पर विश्वास न करें, खासकर इसमें बच्चे भी अब अग्रसित हो रहे हैं, बहुत तरह के गेम्स आ रहे हैं जो साइबर क्राइम से आपके अकाउंट को ऐड कर देते हैं। तो बच्चों को भी जागरूक करें कि आप किसी भी तरह का गेम नहीं खेलो, उससे बचो। और किसी भी तरह का OTP, ऐसा नहीं है कि एक बार OTP आएगा तो अगर कोई सही मांग रहा होगा तो वो दोबारा भी आपसे OTP मांग सकता है कि आपका OTP नहीं, आपने भेजा, मेरे को दोबारा भेजो। तो उसके लिए पहले आप उसमें गहन जांच करें कि संबंधित विभाग या संबंधित बैंक के द्वारा अगर मेरे से OTP मांग रहा है तो सही है कि नहीं। आप अपना फ़ोन नंबर रखें उस संबंधित अपने बैंक का, ताकि हम वहां से उसको कंफर्म कर सकें।
0: जी, आपको जागरूक और सतर्क होना पड़ेगा और आपको इस बात की जांच कर लेनी पड़ेगी कि ये जो फोन कॉल आ रहा है ये सही है या नहीं, क्योंकि बैंक वाले आपको किसी भी तरह की फोन कॉल्स नहीं करते हैं, आपसे बेवजह OTP का डिमांड नहीं करते हैं। ये साइबर अपराध जो करते हैं वही व्यक्ति आपको फोन करते हैं, आपको डराने की कोशिश करते हैं, और यदि आप इनके चाल में आ जाते हैं तो बहुत बड़े नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है।
1: अगर मान लीजिए कि आप साइबर क्राइम के शिकार हो गए
0: जी,
1: और आप काफी दूर में हैं, तो साइबर ही क्राइम एक ऐसा अपराध है कि अगर आप फॉरेन कंट्री में भी हैं तो वहां से आप cybercrime.gov.in
0: जी
1: या टोल फ्री नंबर 1930
0: जी
1: पर आप तुरंत अपनी शिकायत दर्ज कराएं कि मैं भुक्तभोगी हो गया हूं, मेरा बैंक अकाउंट से इतना पैसा ट्रांसफर हो गया है या इस तरह का मैं शिकार हुआ हूं। तो उस पर अविलंब इंक्वायरी बैठा करके जांच पड़ताल प्रारंभ कर दी जाती है
0: जी। तो आप सतर्क हो, और यदि आप इस तरह के साइबर अपराध के शिकार हो जा रहे हैं तो तुरंत आप टोल फ्री नंबर, मैं आपको एक नंबर बता रहा हूं, 1930 1930, इस पर आप फोन कीजिए, 1930 इस पर आप फोन कर अपनी बात रख लीजिए और तुरंत इस पर कार्रवाई की जाती है, क्योंकि आपकी जागरूकता ही सबसे बड़ी सतर्कता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कौशल कुमार जी, एडवोकेट एंड मेडिएटर झालसा, आज आप इस कार्यक्रम में आए और साइबर अपराध और बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन किस प्रकार होता है और अपनी बात कहाँ रखें, इस विषय पर आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, तो एक कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, अगले सप्ताह आज ही के दिन इसी चैनल पर इसी समय एक नई जानकारी के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार।

कानून की बात में आप सुन रहे थे श्री कौशल कुमार की भेंट वार्ता, साइबर अपराध और बौद्धिक संपदा का उल्लंघन। भेंट करता थे संजीव कुमार लाल, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशय से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, दो नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की भी शुरुआत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी, और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात मियामी में तीसरे स्थान के लिए फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1575 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है।
3: अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। जब आप यहाँ जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतौली अंबाला रेल सेवा और अमृतसर छेहरटा और वाराणसी के बीच संत रविदास एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नागरिक देवो भवः के मंत्र के साथ कार्य कर रही है।
3: हम नागरिक देवो भवः इस मंत्र पर चल रहे हैं। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, ऐसे हर परिवार को बेस्ट से बेस्ट सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। और नागरिक देवो भव का ये भाव हमारे काम में दिखता है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने हरियाणा के जींद से देश की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री रेलगाड़ी को रवाना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में पेंशन संबंधी मुकदमों पर दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे। सभी मंत्रालयों और विभागों के नोडल अधिकारी और सलाहकार कार्यशाला में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे

0: और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तीन दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वे राज्य में तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा करेंगे। शाम को वे कोलकाता रवाना होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इन तीन परियोजनाओं में खराड़ी जंक्शन और शिरूर बाईपास के बीच 53 किलोमीटर से अधिक लंबी 6 लेन की सड़क शामिल है, जो 246 किलोमीटर लंबे पुणे संभाजीनगर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का पहला चरण है। इसके अलावा हटपसर और यवत के बीच करीब 32 किलोमीटर की सड़क और तालेगांव चाकन शिकरापुर के बीच करीब 54 किलोमीटर की सड़क का भी शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और यातायात जाम में कमी आने के साथ साथ पुणे क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। श्री तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और हिंसा की घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने का आग्रह किया। उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच शांति बनाए रखने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले महीने से चुनावों से पहले जारी प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हुई है। उच्चायुक्त ने सभी मौतों की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई कुछ टिप्पणियां व्यक्तिगत राय पर आधारित हैं और तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। चाबहार बंदरगाह के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका की ओर से दी गई छूट कुछ समय पहले समाप्त हो गई थी और इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है।
2: मैं ये कहना चाहूंगा और हम लोगों ने हमेशा से ये कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो पूरा क्षेत्र है ये भारत का अंग है, भारत का अंग था, भारत का अंग रहेगा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया के विदेश मंत्री मार्गत स्काहकना से राजधानी टालिन में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता वार्ता के सफल समापन के बाद नए अवसरों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत एस्टोनेशिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि क्षमता और बड़े विनिर्माण आधार को विश्व स्तरीय उत्पादन के साथ जोड़कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया जा रहा है।
3: Working to strengthen each other's
4: हम एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और यूरोपीय संघ के सभी लोगों और भारतीयों के लिए साझा समृद्धि और बेहतर भविष्य की दिशा में मिलकर काम कर रहे हैं। हमने एफ्टा के साथ समझौते किए हैं जो पिछले साल 1 अक्टूबर से लागू हुए। ब्रिटेन के साथ समझौता 15 जुलाई को लागू हुआ और 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ समझौता 2027 की पहली तिमाही में लागू होगा। इन समझौतों के साथ हम पूरे यूरोप के साथ कई क्षेत्रों में दोतरफा व्यापार के लिए तैयार होंगे।
1: पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे। भारत की 4 दिन की यात्रा पर आए जांजीबार के राष्ट्रपति डॉ. हुसैन अली मिवनई आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। कल उन्होंने चेन्नई में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। हमारी श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम रामवीर तंवर से बातचीत करेंगे। श्री तंवर ने जल संरक्षण और जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक कार्य किया है। उन्हें आमतौर पर पॉन्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है।
5: मेरा भतीजा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है और मैं भगा भगा नीचे गया। जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया था तो मैं वापस गया अपने कमरे में। जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता तो हम क्या करते हैं तालाब के बीच में एक आईलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पर बैठने की व्यवस्था करते हैं। अभी तक 100 से ज्यादा आईलैंड बनाया।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। आप इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और विश्व की चौथी वरीयता प्राप्त चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी है। सिंधु कल अपने क्वार्टर फाइनल मैच में जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी नोकुहारा के हटने के बाद अंतिम चार में पहुंची हैं। और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे।
6: हॉकी इंडिया आज से देश भर में कोचिंग और रेफरी शिक्षा कार्यशालाओं की शुरुआत करेगा। इसका उद्देश्य प्रशिक्षकों और तकनीकी अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की जानकारी देना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप तिर्की ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आयोजित ये कार्यशालाएं देश में हॉकी की मजबूत नींव तैयार करने और खेल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब अगर बात करें फीफा विश्व कप की, तो फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नास।
7: धन्यवाद जागृति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, न धुआं न प्रदूषण, रेलवे में हरित परिवहन की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन। नव भारत टाइम्स के शब्द हैं, हाइड्रोजन की ताकत, स्वदेशी पटरी पर दौड़ी देश की ऐसी पहली ट्रेन। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर नागरिकता का प्रश्न उठाते हुए लिखा है, समस्या ये है कि अपने देश में नागरिकता सिद्ध करने वाला कोई सुनिश्चित प्रमाण पत्र नहीं है। हिंदुस्तान ने एसआईआर से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, एसआईआर में नाम कटने से नागरिकता नहीं जाती। 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट अगले साल आ सकते हैं, लिखता है दैनिक भास्कर। पॉलीमर शीट कंपनियों से निविदाएं मंगाई, 18 अगस्त को टेंडर। जनसत्ता ने आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान दिया है, कमजोर मानसून आर्थिक वृद्धि के लिए जोखिम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर में 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण किया, 2 नई रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकी का दौरा करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और विकास कार्यों की शुरुआत भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति को लेकर चिंता जताई, प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग। टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और चीन की चेन युफेई के बीच मुकाबला जारी।

0: आज सभी शहरी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष शिविर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की जल्द फॉर्म जमा करने की अपील। जामताड़ा सदर अस्पताल तोड़फोड़ मामले ने पकड़ा तूल। भाजपा और स्वास्थ्य मंत्री ने जच्चा बच्चा की मौत के बाद हुए हंगामे के लिए एक दूसरे पर मढ़े आरोप। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कल रांची रेल मंडल चलाएगा 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। पटना, दुमका और हजारीबाग रूट शामिल। झारखंड में मॉनसून की बेरुखी से जुलाई में भी बारिश का घाटा -40% पर अटका। खेती और धान की बुआई पर मंडराया गंभीर संकट। और रांची के दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन में आज होगा 135वें डोरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी का भव्य अनावरण। खेल मंत्री सुदिव्य कुमार रहेंगे मौजूद। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में घर घर जाकर 97% मतदाताओं को इन्यूमरेशन फॉर्म बांटने का काम पूरा हो चुका है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि आज राज्य के सभी शहरी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य छूटे हुए शहरी मतदाताओं की सहायता करना और इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करवाना है। अगला शिविर 20 जुलाई को आयोजित होगा। उन्होंने शेष मतदाताओं से जल्द फॉर्म जमा करने की अपील की है।
1: एनुमरेशन फेस है आपका 29 तक। आपका आवेदन आने के बाद उसका डिजिटाइजेशन कराना है, उसका बूथवाइज अलॉटमेंट करना है, उसका सीरियलिस्ट करना है, इसलिए यथासंभव आप जल्दी दे देंगे। उसमें कुछ त्रुटि होगा, मतलब बीएलओ आपका त्रुटि का करेक्शन करके करेक्ट फॉर्म जमा करने के लिए वो मदद कर सकते।
0: देवघर के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए बीएलओ तनुजा कुमारी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। देवघर विधानसभा क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार ने उन्हें यह सम्मान सौंपा। तनुजा कुमारी ने अपने बूथ क्षेत्र में समय सीमा के भीतर 100% प्रपत्र वितरण और 100% डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा कर त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जामताड़ा सदर अस्पताल में एक प्रसूता की मौत के बाद हुई तोड़फोड़ पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं ने पीड़ित परिवार को उकसाकर अस्पताल में हंगामा कराया।
2: क्या बीजेपी वाले को ये दिखाई नहीं दे रहा है, इतना बेशर्म हो गए हो? परिवार वाले जब 20,000 लालच देते ताकि छवि इरफान अंसारी खराब हो, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने केस नहीं किया, जिला प्रशासन ने केस किया। हम तो जिला प्रशासन से मांग करते हैं जो दोषी है, चाहे भाजपा हो, चाहे वो हमारे पार्टी का हो, कोई भी हो कार्यकर्ता हो, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
0: इधर भाजपा नेता अमर कुमार बाउरी ने आरोप लगाया कि परिजनों के सहज आक्रोश को डायवर्ट करने के लिए मंत्री के इशारे पर तोड़फोड़ की गई। बाउरी ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री अपनी छवि बचाने के लिए अस्पताल प्रबंधन की जवाबदेही तय करने से बच रहे हैं।
3: उनके इशारे पर कोई पदाधिकारी वहां पर इसका समाधान करने के लिए नहीं जाता है। 4-4.5 घंटे तक सड़क पर रहने के बाद लोग अधीर हो जाते हैं और अधीर होने का फायदा लेकर के कांग्रेस के लोग लोगों को उकसा करके इस मामले को डाइवर्ट करने के लिए जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी उनके इशारे पर वहां तोड़फोड़ का एक आडंबर रचा जाता है।
0: रांची में आयोजित ग्लिट्स एंड ग्लैम एग्जीबिशन का ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने शुभारंभ किया। जेसीआई रांची उड़ान द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी में महिला उद्यमियों के विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं। इस अवसर पर मंत्री ने महिला उद्यमियों से संवाद कर उनके उत्पादों और नवाचारों की सराहना की। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रांची रेल मंडल कल से 5 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाएगा। अभ्यर्थियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे रांची दुमका, टाटानगर हजारीबाग रोड, रांची पटना और रांची गढ़वा रोड मार्गों पर इन परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। लंबी दूरी के यात्रियों की राहत के लिए इन ट्रेनों में सामान्य स्लीपर और मेमू कोच शामिल किए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news@air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य का कभी सबसे मजबूत नक्सली गढ़ रहा कोयल शंख जोन अब पूरी तरह नक्सल मुक्त हो गया है। शीर्ष कमांडर रविंद्र गंजू की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा बल अब इस पूरे इलाके में माओवादियों के सारंडा बूढ़ा पहाड़ कॉरिडोर को स्थायी रूप से ध्वस्त करने के लिए व्यापक तलाशी अभियान चला रहे हैं। पलामू रेंज के DIG किशोर कौशल ने बताया कि इस पूरे जोन में अब माओवादियों का कोई भी बड़ा कमांडर और लेवी तंत्र सक्रिय नहीं बचा है।
4: इनका जो पूरा नेटवर्क है उसको एक तरीके से ध्वस्त किया गया है। तीनों ही जिलों में गढ़वा लगभग पूरी तरीके से फ्री हो गया है। पलामू में एक दो कुछ एलिमेंट्स इस तरीके के बचे हुए हैं जिस पर कि पलामू पुलिस पूरी गंभीरता से काम कर रही है। लातेहार में भी जो इक्का-दुक्का तत्व हैं उनके खिलाफ भी लगातार आसूचना संकलन और अभियान चलाए जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में उन सारे तत्वों का भी एक तरीके से समाप्ति कर ली जाएगी।
0: रांची के नगरी थाना क्षेत्र के सपारूम से अपहृत 5 वर्षीय बच्ची को पुलिस ने 12 घंटों के भीतर बिहार के गया जंक्शन के पास से सकुशल बरामद कर लिया है। ग्रामीण SP गौरव गोस्वामी ने बताया कि 3 लाख रुपए फिरौती मांगने वाले मुख्य आरोपी सहित 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज्य में मॉनसून की बेरुखी पर जुलाई में सामान्य से 40% कम बारिश दर्ज की गई है। इससे किसानों के सामने धान की बुआई का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम न बनने से सूखे जैसे हालात हैं। उन्होंने किसानों से वैकल्पिक खेती करने की अपील की है।
5: जिन इलाकों में निचले खेत हैं जहाँ पे पानी जमा होता है, अगर वहाँ अच्छी बारिश हुई है तो आप उसमें ट्रांसप्लांटेशन का काम कर सकते हैं। मिडिल और ऊपर वाले जो खेत हैं वहाँ पे आपको तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने से ही ज्यादा बेहतर होगा। मोटे अनाज या मड़ुआ या तिलहन दलहन मक्के जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है उसको करने से ही ज्यादा फायदा रहेगा।
0: रांची के दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन स्थित करकेट्टा ऑडिटोरियम में आज पूर्वाहन 10 बजे 135वें डोरंड कप 2026 के ट्रॉफी शो केस का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर खेल मंत्री सुदेव कुमार मुख्य अतिथि और मेजर जनरल सज्जन सिंह मान विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। रांची के खेलगांव में कल 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अजय नाथ सहदेव ने इसका उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में राज्य के 5 प्रमंडलों के कुल 240 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पहले दिन के मुकाबलों में संथाल परगना, दक्षिणी छोटानागपुर और उत्तर छोटानागपुर की टीमों ने अपने अपने मैच जीतकर शानदार शुरुआत की। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक करने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, राज्य में बारिश कम, सुखाड़ को देखते हुए योजना बनाएं। हिंदुस्तान के अनुसार गिरिडीह से 25 लाख रुपए का इनामी माओवादी अजय महतो गिरफ्तार। प्रभात खबर की सुर्खी है, राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में अब लिखित परीक्षा अनिवार्य। दैनिक जागरण के शब्द हैं, देश में चली पहली हाइड्रोजन ट्रेन, 5वां देश बना भारत। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राज्य में SIR अभियान के तहत आज सभी शहरी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष शिविर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की जल्द फॉर्म जमा करने की अपील। जामताड़ा सदर अस्पताल तोड़फोड़ मामले ने पकड़ा तूल। भाजपा और स्वास्थ्य मंत्री ने जच्चा बच्चा की मौत के बाद हुए हंगामे के लिए एक दूसरे पर मढ़े आरोप। झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कल रांची रेल मंडल चलाएगा 5 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें, पटना दुमका और हजारीबाग रूट शामिल। झारखंड में मॉनसून की बेरुखी से जुलाई में भी बारिश का घाटा -40% पर अटका। खेती और धान की बुआई पर मंडराया गंभीर संकट। और रांची के दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन में आज होगा 135वें डोरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी का भव्य अनावरण। खेल मंत्री सुदिव्य कुमार रहेंगे मौजूद। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। गीत गुंजन कार्यक्रम सुनने वाले तमाम साथियों का स्वागत है। स्वीकार करें अपनी दोस्त निर्मला का नमस्कार।

अंदाज फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। आज हम इस कार्यक्रम में ऐसे कलाकार पर फिल्माए गए गाने सुनवा रहे हैं आपको जो उनके ही तरह सदाबहार हैं और रहेंगे। जी हाँ, वो अब इस दुनिया में भले ही नहीं हैं लेकिन उनकी अदायगी, मुस्कान का जादू आज भी जवां दिलों की धड़कन को बढ़ा देता है। जब भी वो रुपहले पर्दे पर आते हैं और अपनी फिल्मों के माध्यम से दिखाई देते हैं तो दिल धड़क ही उठता है। उन पर फिल्माए गए कई गीत गुनगुनाने को मजबूर कर देते हैं। जी हाँ, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बातें कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के महान कलाकार, जिन्हें पहला सुपरस्टार कहा जाता है, राजेश खन्ना जी के। और आज हम उनके फिल्मों के एक दो गाने आपको सुनवा रहे हैं, साथ ही सुनवाएंगे आपको भारतीय फिल्म अभिनेत्री जिन्होंने बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड तक का सफ़र बड़ी ही संजीदा तरीके से तय किया। आज है उनका जन्मदिवस, यानी कि प्रियंका चोपड़ा। तो चलिए अब सुनते हैं अगला गाना।

मित्रों जो इस दुनिया से चले जाते हैं वो तो कभी वापस लौट कर नहीं आते, भले ही हम उन्हें कितना भी पुकारते रहें। ये तो सच्चाई है, लेकिन उनकी बातें और कलाकार ख़ास तौर पर वो तो कभी मरते ही नहीं हैं, हमेशा हमेशा दिलों में ज़िंदा रहते हैं। राजेश खन्ना जी भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में, उनके संवाद, उनकी अदायगी और उनकी मोहक छवि, सब कुछ पर्दों के माध्यम से जब वो फिल्मों के माध्यम से पर्दे पर आते हैं तो हमें उनकी याद दिलाते हैं। गाने बजते हैं, सुनाई देते हैं तो उनकी याद दिलाते हैं। चलिए अब बातें कर लेते हैं प्रियंका चोपड़ा की। आज है उनका जन्मदिवस और हम उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएँ दे रहे हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य की, मंगलमय जीवन की। चलिए सुनवाते हैं आपको उनकी फिल्म से ये गाना।

सोनू निगम, अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे ब्लैक मेल फिल्म का गाना। गीत के बोल समीर के थे, धुन बनाई थी हेमेश रेशमिया ने। और मिस वर्ल्ड सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने जीता और उसके बाद वो छा ही गई पूरी दुनिया में। जे बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफ़र। एक बार फिर हम उन्हें जन्मदिवस की बधाई देते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।
3: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है जोहार पलामू कार्यक्रम।
4: जोहार पलामू।

0: जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप तमाम साथियों का हमारे इस कार्यक्रम में। लोग जन्म से किसी अन्य व्यक्ति से उसकी त्वचा के रंग, पृष्ठभूमि या धर्म के कारण घृणा नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें नफरत करना सिखाया जाता है। और बच्चा यदि नफरत करना सीख सकता है तो उसे प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। ये सुविचार हैं नेल्सन मंडेला जी के। जी हाँ, नेल्सन मंडेला, जिन्होंने रंगभेदी विरोधी के लिए क्रांतिकारी रुख अपनाया और दक्षिण अफ्रीका के वो पूर्व राष्ट्रपति थे। उनके विचार शांति, समानता, साहस और शिक्षा पर केंद्रित थे। वो मानते थे कि शिक्षा दुनिया बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार है और सच्ची स्वतंत्रता के केवल जंजीरों से मुक्ति नहीं, बल्कि दूसरों के अधिकारों का सम्मान भी है। आज उनकी जयंती है। भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया था। महान व्यक्तित्व के धनी थे और साथ ही उन्होंने रंगभेद विरोधी क्रांतिकारी को अपनी प्रेरणा से लोगों को जगाया और उन्हें रंगभेद के खिलाफ लड़ना सिखाया। जी हाँ, आज हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आइए बातें कर लेते हैं मौसम की। तो मौसम तो भीगा भीगा सा है दोस्तों, और आज की यदि हम बात करें तो आज बादल छाए रहने और रुक रुक कर बौछारें पड़ने के संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 20 तारीख तक राज्य भर में कई ज़िलों में भारी वर्षा हो सकती है। यदि हम तापमान की बातें करें तो आज पलामू का तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। तो कुछ ऐसा रहने वाला है मौसम। तो मौसम का आनंद लीजिए और आइए अब सुनवाते हैं आपको एक गाना।
1: कुछ हमको
2: क्या
1: कुछ तुमको

0: मौसम का आनंद लेती जी रहिए दोस्तों, और इसके साथ ही सेहत का भी ध्यान रखिए, क्योंकि इस मौसम में सेहत भी ख़राब हो सकती है। जी हाँ, और इस कार्यक्रम से दीजिए विदा। नमस्कार, जोहार। थोड़ी ही देर में हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: जोहार पलामू।

0: इन्हें पॉन्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने तालाब के संरक्षण के लिए उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए काफी अच्छा काम किया है और यहाँ तक कि इनका जिक्र मन की बात प्रोग्राम में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है। तो आइए स्वागत करते हैं रामवीर तंवर जी का। बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: रामवीर जी। आपको पॉन्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन कब इसकी आपने शुरुआत की? क्या आपने सोचा कि अब तालाबों का संरक्षण करना है, इन्हें पुनर्जीवित करना है?
1: देखिए, ये अचानक से ऐसी कोई घटना नहीं है जिसकी वजह से मैंने काम किया हो। इस तरह की घटनाएं किताबों में अच्छी लगती हैं, लेकिन ये है, मेरा मानना है कि वो धीरे धीरे धीरे धीरे ना कोई भी इनिशिएटिव आपको अपनी ओर खींच लाता है और उसके लिए जिम्मेदार होती है कई बार आपकी चाइल्डहुड यादें, बचपन में आपने जो देखा है और जवानी में आप जो नहीं देख पा रहे। मैं 10th क्लास तक अपने गाँव में भैंसों को चराने जाता था जंगल में, और मैंने अपना पूरा होमवर्क किसी तालाब के या नहर के किनारे किया। मुझे याद है मेरे गांव से और जंगल जाते समय पे एक नहर पड़ती है बहुत छोटी सी, और हमें वो नहर क्रॉस करनी होती थी, अदरवाइज तो 2-3 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था। जब हम जाते थे, मैं 3री-4थी क्लास में जब था तो तैरना नहीं आता था, बहुत छोटा बच्चा था, तो हम भैंस की पूंछ पकड़ के क्रॉस करता था मैं, और कई बार भैंस जो है वो बीच नहर में जाके लेट जाती थी तो हमें भी लेटना पड़ता था उसके साथ, तो उस वजह से तैरना सीखा। लेकिन आई एम सो सैड टू टेल यू कि वो नहर अब एक नाला है और वो ऑफिशियली नाला है। वहां पे सिर्फ अभी पूरे शहर का इंडस्ट्रियल वेस्ट और म्युनिसिपल वेस्ट वहां से बहके जाता है। आप वहां किनारे 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते, जबकि उस नहर का पानी कई बार हमारे मुंह में चला जाता था, पेट में चला जाता था। मुझे कभी याद नहीं है कि हम बीमार हुए हैं। वही नहर है। मैं कई बार जब वहां से गुजरता हूं तो आज अपने रुमाल को नाक पे रख के गुजरता हूं, दुख होता है। जब मैं 11वीं क्लास में गाँव से बाहर 20 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाता था बस में, डेली मुझे 25-30 किलोमीटर जाना था, 25-30 किलोमीटर आना था, तो वहां जब मैं रास्ते में ये देखता था कि जो भी रोड के किनारे के तालाब है वो धीरे धीरे धीरे धीरे लैंडफिल साइट बनते जा रहे हैं, क्योंकि आदत होती है कि जब भी हम जाते हैं हाथ में जो भी कचरा होता है वो सबसे पहला निशाना हमारी बनती है कोई नाली, नाली नहीं मिली तो नाला, नाला ना मिले तो नहर, नहर नहीं मिली तो तालाब। तो आज भी आप गाँव में देखिए तालाब सबसे इजी टारगेट है कचरा फेंकने के लिए। तो जब मैं बाहर निकला गाँव से और मैंने देखा कि ये मेरे गाँव की समस्या नहीं है, ये तो सब जगह सेम इशू होता जा रहा है। जब मैं अपना ग्रेजुएशन में था, कॉलेज डेज में था, तो पॉकेट मनी के लिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। मेरे पास 2 स्टूडेंट थे और दोनों भाई थे। उसके पिताजी ने कहा पूरे दिन इधर उधर कंचा खेलते हैं, सारे दिन उधर जाते हैं, तो तुम अगर इनको पास करवा दो 33% से तो मैं तुम्हें जो है इनाम दूंगा। मैंने उनको पढ़ाया और उनके 70% आ गए। तो उन्होंने इतना प्रचार किया कि मेरे पास 40-50 बच्चे आ गए। वो ऐसे प्रचार करते थे किसी का बच्चा पास नहीं हो रहा हो तो रामवीर के पास भेजता पास हो जाता है, क्योंकि मुझे मैथ फिजिक्स से बहुत प्यार था। तो मेरे पास इतने सारे बच्चे हुए। वीकेंड पे हमने एक्टिविटी करना शुरू किया। एक्टिविटी क्या थी कि गांव में नए नए समर सर्विल लगे थे, पंप सबके घर समर सर्विल पंप है। एक गिलास पानी की जरूरत है तो 1000 लीटर पानी निकालेंगे। छोटे बच्चे को नहाना है उसको बाल्टी में नहीं लाएंगे, उसके लिए बस समर सर्विल का स्विच ऑन कर देंगे, जाओ बेटा नहा लो। अब 10000 लीटर पानी में बच्चा नहा रहा है। सोचिए जो 5 लीटर बच्चा नहा सकता था वो 10000 लीटर में नहा रहा है, और वो ड्रिंकिंग वाटर उसकी कॉस्ट जोड़ेंगे 20 रुपए के हिसाब से तो लाखों रुपए में बैठ रही है। वो पूरे परिवार की इनकम 10000 रुपए महीना है और पानी बहा रहे हैं 5 लाख रुपए का। तो हमने डिसाइड किया खेल खेल में कि जो भी हमारे गांव में सबसे ज्यादा पानी बर्बाद करता है उसके घर के सामने हम जल ही जीवन लिख के आएंगे चुपचाप। वो हमारी एक्टिविटी थी और वो हम वीकेंड में करने वाले थे। जब वो 1 महीना किया, 2 महीना किया, बहुत सारी गालियां भी खाई, कई पेरेंट्स ने अपने बच्चे हटा लिए। हमने सोचा था अच्छा पढ़ाते हो तुम तो इनको ऐब करना सिखा रहे हो लड़ाई करना सिखा रहे हो लोगों के साथ। तो कुछ बच्चे हट गए, कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ ने बहुत अप्रिशिएट भी किया। नेक्स्ट फेज में हमने क्या किया कि एक जगह हम बैठ के मीटिंग करने लगे। गाँव की जो चौपाल बनी हुई है, चौपाल पे किया, हमने उसका नाम रखा जल चौपाल, और हमने उस ग्रुप का नाम दिया था जागरूक युवा समूह। जब हमने मीटिंग किया और सब कुछ हुआ तो कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, कुछ लोग आए। एक बार क्या हुआ, किसी ने फोटो क्लिक करके डीएम में लगाया, अखबार में आया, अखबार से डीएम साहब के पास गया। डीएम साहब ने कॉल किया उन भैयाओं के पास कि उन बच्चों को बुला के लाओ। हमको बुलाया, उन्होंने अप्रिशिएट किया और कहा कि अगली बार मैं आऊंगा। वो अगली बार आए तो हम तो 20 लोग थे, वो आए तो 500 लोग इकट्ठा हो गए। देन आई रियलाइज कि ये जो हम कर रहे थे ये कोई छोटी चीज नहीं है। जिस काम के लिए खुद डीएम साहब, कलेक्टर साहब आपके गाँव में आ सकते हैं, जिन्होंने अभी तक गाँव देखा ही नहीं हमारा, और उनको पता चला, देन आई रियलाइज कि वी आर डूइंग समथिंग बिग। और वहां से ये फिर मैंने कॉलेज किया, 2 साल जॉब के साथ भी मैंने यही किया, अवेयरनेस कैंपेन चलाया, लेकिन अवेयरनेस कैंपेन थोड़ा बड़ा हो गया टाइम के साथ। और फिर मैंने सोचा कि जॉब छोड़ के फुल टाइम अभी मैं ये करूं। वहां से निकल

0: के धीरे धीरे यहाँ तक पॉन्डमैन की जर्नी शुरू हुई।
1: तो पॉन्डमैन की जर्नी इतनी आसान तो नहीं रही होगी, कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे, तो किस तरह की मुश्किलें सामने आई?
0: शुरुआती दौर में क्या था, आपके पास पैसा नहीं था, रिसोर्सेस नहीं थे, आपके पास टीम नहीं थी, आपके पास नॉलेज नहीं थी, आपके पास रिसोर्सेस नहीं थे, आपके पास कोई रेफरेंस नहीं था जिसको आप ये बोल सके कि मैंने वो काम किया है जी, आपको लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे। इंडिया में क्या है, वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट, कोई भी वाटर बॉडी है, तालाब है, पोखर है, कुआं है, कुछ प्राइवेट हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। आप उसको बिना परमिशन के गंदा तो कर सकते हैं लेकिन बिना परमिशन के साफ नहीं कर सकते, साफ करना है तो आपको एनओसी लानी पड़ेगी। तो एनओसी के लिए हम चक्कर काटते थे, हमसे हर पूछता था एनओसी तब देंगे, पहले बताओ एक्सपीरियंस क्या है तुम्हारा, अब एक्सपीरियंस हो तो बताए, हमने तो जीरो एक्सपीरियंस, हमने कभी तालाब ही साफ नहीं किया। गांव वालों से बात करें वो कहते थे कि यार तुमने कभी किया ही नहीं कुछ, तो ये कैसे करोगे। तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट नहीं था जिसको हम उदाहरण के तौर पर बता सके कि हमने वहां पे किया है उसको देखिए। दूसरा, आप तालाब साफ करेंगे आप मैनुअली कितना कर लेंगे, 5 किलो कचरा हटा लेंगे, 100 किलो हटा लेंगे, लेकिन बड़ा अगर आपको इम्पैक्ट करना है तो मशीन चाहिए, आपको डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, मैन पावर चाहिए, टूल्स चाहिए, उसके लिए हमारे पास फंड नहीं था। हमने क्या किया कि जितना हमारे बस की है उससे करते हैं, तो जो भी सोशल मीडिया से, कॉलेज से जितने लोग जुड़े थे अपने साथ, उन सबको हमने साथ जोड़ा और क्लीन अप ड्राइव शुरू किया। मुझे याद है जब हम पहले दिन क्लीन अप ड्राइव किया था तो हमें लगा था बहुत सारे लोग आएंगे लेकिन मैं और मेरा दोस्त दो ही रह गए कोई नहीं आया, हम दो ही लोग हो गए क्योंकि बारिश हो रही थी उस दिन, है ना। हम दोनों को तो जुनून था, सबको थोड़ी ना। हम गए वहां पे, हमने फावड़ा शुरू किया। अब बहुत सारे लोगों के साथ तो आपके अंदर हिम्मत होती लेकिन हम तो दो ही लोग थे, और जब वहां पे हम तालाब साफ कर रहे थे कोई भी हमसे निकल रहा था क्यों कर रहे हो, कहां से हो, तो हमारे पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम जवाब दे सके कि हम ये कुछ करना चाहते हैं। कोई भी आता था, हाँ भाई कौन हो, क्यों साफ कर रहे हो, तो हम ये कहते थे जी नगर पालिका से है। अच्छा अच्छा उधर भी करके जाना, मैंने कहा हाँ जी बाबू जी करके जाएंगे।
1: तो रामवीर जी मैं ये पूछना चाहूंगी कि बात तो सही है कि आपको सफाई का किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि जो कचरा होता है वो किसी भी तरह का कचरा हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ वो कपड़ा और पॉलिथिन बैग्स हो, उसमें मेडिकल वेस्ट भी हो सकता है, तरह तरह के केमिकल्स हो सकते हैं, कांच हो सकता है। तो किस तरह के प्रिकॉशंस आप लेते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको सामने आई?
0: देखिए हम शुरुआत में कोई एक्सपर्ट तो थे नहीं बता सके मेडिकल वेस्ट है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये प्लास्टिक वेस्ट है, तो हमारे लिए तो सब एक प्लास्टिक में बंद कचरा है, हम तो सबको ऐसे ही उठा के फेंक देते। तालाब क्या है, वो सिंक होल है, आपके घर में कुछ भी निकलेगा ना, आपके रजाई, गद्दे, जूते, चप्पल, कांच, जो भी है बस उसमें डाल दो जाके, चाहे वो नाला मिल जाए उसमें डाल दो, तालाब मिल जाए उसमें डाल दो। जब हम तालाब को रिस्टोर करते हैं, और कई बार हम जब डीवॉटरिंग करके उसको खाली करते हैं पूरे तालाब को, ताकि नीचे से खुदाई कर सके वापस से, आप यकीन मानिए कई बार 1 से 1.5 मीटर की एक लेयर मिलती है, पूरी कचरे की लेयर मिलती है। मान लो यही बोतल है, आप इसको फेंकिए तालाब में, अब दो चांस हो सकते हैं, या तो ये इसमें ढक्कन लगा हुआ है और हवा भरी हुई है तो ऊपर तैरेगा, या इसका ढक्कन खुला हुआ है तो पानी भरेगा जाकर नीचे बैठ जाएगा। तो जब हमने तालाब को खाली किया तो 1 से 1.5 मीटर की हमें लेयर मिली, और उस लेयर में सिर्फ बोतल नहीं है, उसमें सब कुछ है, उसमें जूते हैं, उसमें चप्पल है, उसमें कांच है, घर का बचा हुआ सामान है, बहुत सारी मूर्तियां हैं, तमाम सारी चीजें हैं जो सालों से वहीं पे पड़ी पड़ी सड़ रही हैं। और कई सारे तालाबों में तो ऐसा भी हमने देखा, क्योंकि जैसे जलकुंभी और सिल्ट और गाद और सलज हो जाती है तो जानवर भी फंस के मर जाते पानी पीने के चक्कर में, लेकिन उसमें गाद इतनी सारी हो जाती है, उस कचरा डलते वहीं फंस जाता है। तो कई तालाबों में सहता हुआ हमने पानी निकाला तो नीचे ऐसे कंकाल के कंकाल खड़े हुए मिले, जो नीचे फंस गए थे, पानी में डूब गए थे वापस से, ऐसे पड़े हुए मिले। बहुत दुख लगा उनको देख के हमें, क्योंकि गांव वाले को लगता था भैंस चोरी हो गई है, भैंस चोरी नहीं हुई थी, भैंस डूब के मर गई थी तालाब में।
1: जब आप कचरा उठाते हैं, आपकी टीम जाती है किसी लोकेशन पर, तो किस तरह से वो कलेक्शन करते हैं कि उन्हें हार्मफुल इफेक्ट से?
0: देखिए उसके लिए जो सेफ्टी टूल्स होते हैं, एक स्पेशली ग्लव्स आते हैं जो इस तरह के वेस्ट को एक तरह से उठाने के लिए काम आते हैं, वहाँ पे प्रॉपर मास्क, और हमारे पास ना एक ड्रेस होती है प्रॉपर जो पूरा पहन लेते हैं तो यहाँ तक आती है, वो बहुत मोटी होती है, प्लस उसमें पानी भी नहीं घुसता है, सेफ्टी किट होती है, तो उसी को पहन के वो तालाब में घुसते हैं। एक तो आपके कपड़े भी गंदे नहीं होते, प्लस आपको नहीं पता कि पानी में क्या केमिकल घुला हुआ है, तो वो भी आपके टच में नहीं आता है, और वो उसी तरह से फिर वो उठाते हैं। अब तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, नगर पालिका गाड़ियों में भी अलग अलग बॉक्स बने हुए होते हैं, क्योंकि हम कचरे को निकाल तो सकते हैं लेकिन उसको अपनी मर्जी से डिस्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं क्या करूंगा, एक्स जगह से उठा के वाई जगह पे डाल दूंगा, बात तो हुई। तो इसलिए हम जब भी कोई तालाब करते हैं तो वो एक उसमें मल्टीपल पार्टी होती है, एक ट्राई पार्ट एग्रीमेंट होता है, एक होता है कॉर्पोरेट या स्पॉन्सर, एक होता है हम एग्जीक्यूटिंग पार्टनर, एक होता है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जहाँ पे भी उनका निस्तारण एक प्लांट है वहाँ तक उसको लेके।

0: अच्छा
1: जी जी तो लेकिन अभी क्या है, टाइम के साथ हमें भी नॉलेज हुई है तो उसको अच्छे से सेग्रीगेट करते हैं, और जिस तरह से उसका एक आधुनिक तरीका होना चाहिए उसको सेग्रीगेट करने का, निस्तारित करने का, उसी को उसी से निस्तारित किया जाता है। क्योंकि तालाबों में सिर्फ दो तीन तरह का ही वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, इनऑर्गेनिक वेस्ट है। ऑर्गेनिक वेस्ट तो तालाब के अंदर चला जाता है, स्लज ले लेता है। इनऑर्गेनिक वेस्ट जूते चप्पल प्लास्टिक ये सारे, हमने क्या है कुछ स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है, वो प्लास्टिक उनको देते हैं, उस प्लास्टिक से हमें वो बेंच, ट्री गार्ड, मेज, उसको मोल्ड करके वापस से पिंगला के वो हमें देते हैं, और उसी बेंच को हम तालाब किनारे रख देते हैं वापस।
0: अच्छा।
1: ताकि उसी बेंच पे बैठ के लोग शाम को फिर तालाब को निहारे।
0: तो पूरा आपने एक ये सिस्टम क्रिएट कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली वो अच्छे तरह से वो जो कचरा है वो जा रहा है और स्टार्टअप उसे किसी अच्छे फॉर्म में लेकर वापस कर रहे हैं। तो जब आप तालाबों को पुनर्जीवन देने की कोशिश करते हैं, उनकी सफाई करते हैं, तो लोकल्स का किस तरह से सपोर्ट मिलता है या विरोध करते हैं, क्या रिएक्शन?
1: देखो, लोकल दोनों तरह के ही है। जिन लोगों ने तालाब के किनारे घर बनाया हुआ है उनका हमेशा सपना रहता है कि अगले साल 100 गज और कब जाएंगे, उससे अगले साल 100 गज और एंक्रोचमेंट करेंगे। उनका जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है ना तालाब को बचाने की, वो सबसे ज्यादा तालाब को कब्जाने की फिराक में रहते हैं। और ये 90% सक्सेस रेट है मेरी इस बात का। आप कहीं भी जाके देखिए, तालाबों को उन लोगों ने कब्जा हुआ जो तालाब के किनारे पे रहते हैं, क्योंकि वो उस जगह को अपनी मानने लगते हैं। उनका डायरेक्टली कोई फायदा नहीं हो रहा है तालाब से, इनडायरेक्टली तो बहुत सारे हैं भाई। पर्यावरण बच रहा है, आसपास का माहौल ठंडा होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट मिलती है। डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली तब मिलता था जब पानी पीते थे उस तालाब से, जब उसमें नहाते थे, जब उसमें से मटका भर के लाते थे। तो इसलिए अब उसको लैंडफिल की तरह यूज करते हैं। ऐसे लोग तो हमेशा विरोध करते हैं जो उसको कब्जाना चाहते हैं, कुछ भी करके आपका काम रुकवाना चाहते हैं। दूसरे टाइप के लोग हैं जो थोड़े अवेयर हैं, वो सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा है कि सपोर्ट करने वाले लोग अभी भी भारत में विरोध करने वालों से ज्यादा है, इसलिए शायद हमारा काम चल भी रहा है। दूसरा, जो अलग अलग टाइप के लोग मिलते, कुछ लोग हैं जैसे आज हमने तालाब पे काम शुरू किया, शाम तक आ जाएंगे, पहले ये बताइए पैसा कहाँ से मिला, क्यों कर रहे हो, वो सारे लोग हैं। कुछ होते हैं जो अच्छी सलाह भी देते हैं कि भाई यहाँ पे ये पेड़ लगाइएगा, क्योंकि मुझे लगता है हम लोगों को इसलिए उसमें पार्टिसिपेट कराते हैं, इसलिए हम जन भागीदारी करते हैं उसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि तालाब एक दिन में तो मरा नहीं होगा, तालाब को मरने में 30-40-50 साल लगे हैं, और तालाब को मरते हुए उन्हीं लोगों ने देखा है जो उस गांव में रहते हैं, इसलिए उस तालाब के बारे में सबसे ज्यादा, चाहे उसकी हिस्ट्री हो चाहे मरने की कहानी हो, उन्हीं लोगों को पता है जो वहां पे रह रहे, इसलिए हम उसको पार्ट बनाते हैं और हम बताते हैं कि आपको ही रेस्टोर करना है, हम तो सिर्फ आपको सपोर्ट करने आए हैं। तो दोनों तरह के लोग मिलते हैं, बहुत सपोर्ट भी करते हैं, बहुत विरोध भी करते हैं।
0: तो जैसे आपने एक बार किसी तालाब की सफाई कर दी, उसको पुनर्जीवन मिल गया, तो बाद में उसकी कौन देखभाल करता है?
1: अब मान लो अगर हम घर बना रहे हैं, या मेरा खुद का खेत है, या मेरा खुद का प्लॉट है, हमेशा वही देखभाल करेगा जिससे उसकी इनकम जुड़ी हुई है, या जो ऑनर है उस जगह का। तालाबों के साथ इशू क्या है, तालाबों का कोई ऑनर नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब तालाबों को रेस्टोर करते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि तालाबों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाए। सेल्फ सस्टेनेबल बनाए मतलब तालाब अपने मेंटेनेंस का खर्चा खुद निकाले, तालाब अपने लिए इनकम करे। सिंगाड़ा कहाँ से आता है? तालाबों से। लोटस कहाँ से आता है? तालाबों से। मछली कहाँ से आती है? तालाबों से। और आजकल ये बिहार में मखाना देखिए, तालाबों से। बहुत सारी चीजें हैं जो तालाबों से आती है। और अब दिल्ली में, गुड़गांव में तो तालाब इको टूरिज्म के लिए, आप तालाब के किनारे रेस्टोरेंट खोलिए और एक दूसरी जगह खोलिए, तालाब किनारे वाला के इनकम ज्यादा होगी। तो तालाब अपने लिए इनकम करना सीख तो तालाबों की इज्जत भी बढ़ेगी, और इज्जत बढ़ेगी मतलब तालाब के किनारे वाले जो रेस्टोरेंट है या कोई भी चीज है वो आपको मेंटेन करेंगे। तो इसलिए हम तालाबों को इस तरह से एक्वा कल्चर, इको टूरिज्म या किसी न किसी एक्टिविटी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि उसका अगर कोई 5 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं तो वो 50,000 रुपए तालाब के मेंटेनेंस पर खर्च करें। अदरवाइज तो फिर हम अपने ऊपर ले लीजिए भाई, अगर हम ये उम्मीद करके चलें कि मैंने तालाब रिस्टोर कर दिया अब जनता इसको खुद ही मेंटेन कर लेगी, तो हम भी जनता है। हम महीने में कितनी बार जाते हैं आसपास के तालाबों को मेंटेन करने के लिए? मैं कितनी बार जाता हूँ, आप कितनी बार जाते हैं, आप और जो इस तरह की बातें करते हैं वो कितनी बार जाते हैं? तो तालाबों को हमेशा वही मेंटेन करते हैं जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे कुछ फायदा।
0: तो जैसे आपने किसी तालाब को रिवाइव किया और कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद आप पलट कर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर पक्षी आने लगे, जीव जंतु आने लगे, जनजीवन वहाँ पे पनप रहा है, तो देखकर कैसा फील होता है, क्या इमोशंस होते हैं?
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: कोई एक्सपीरियंस भी हो तो बताइए।
1: हम क्या, हमारे एक यूएसपी है तालाब रेस्टोर करने का। हम जब भी कोई तालाब बनाते हैं तो उसके बीच में नेस्टिंग आइलैंड बनाते हैं।
0: अच्छा।
1: बीच में छोटे छोटे टापू बनाते हैं, उस टापू पे वहीं की लोकल नेटिव घास भी लगाते हैं।

उसका हमारा जो पर्पज है नेस्टिंग आइलैंड बनाने का वो ये है, क्योंकि हमें लगता है कि देखो पिछले 50-100 साल में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आई है। आजकल तो जो घरों में फिल्टर है वो भी AI वाले आ रहे हैं, लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजी आई किसके लिए है? इंसान ने बनाई है, इंसान के लिए आई है। आज से

0: मैं तालाब को मार दे रहा हूँ, मैं तालाब को कूड़ा घर बना दे रहा हूँ। नहीं भाई, आपके लिए ही तो टेक्नोलॉजी आई है, उनके लिए थोड़ी ना आई है। वो तो आज भी तालाबों पे उतने डिपेंड है। दूसरा, अभी पॉपुलेशन उतनी है, ट्रैफिक साउंड उतना है, तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है, बिल्कुल या तो तालाब जो है वो शहर के बीच में आ गए या रोड किनारे आ गए। पक्षी तालाब किनारे पे तो बैठ नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, तालाब के बीच में एक आइलैंड बनाते हैं मिट्टी का, उस पे बैठने की व्यवस्था करते हैं
1: पक्षियों के।
0: बिल्कुल, आप और मैंने अभी तक 100 से ज्यादा आइलैंड बनाए। आप इस साल बनाइए आइलैंड और अगली साल देखिए, कम से कम आपको 100 बर्ड्स मिलेंगे, एक्वेटिक बर्ड्स मिलेंगे, बहुत सुंदर सुंदर बत्तखें मिलेंगे, क्योंकि बीच में फिर अब वो ना घोंसला रख सकती है, बीच में वो अपना नेस्ट बना सकती है, बीच में अपने बच्चों को पाल, अपने बच्चों को ट्रेन कर सकती है। मैं अभी एक महीने पहले गया था एक तालाब पर, ग्रेटर नोएडा में हमने वो डेवलप किया था दुजाना गांव में। मैंने बीच में देखा तो मिट्टी के ना बहुत सारे छोटे छोटे होल थे नेस्टिंग आइलैंड के ऊपर, वहां बत्तखों ने अपने बच्चे छिपाए हुए थे और पूरा तालाब एकदम बत्तखों से भरा हुआ है। आप सोचिए, अगर वो बीच में नहीं होता, किनारे पे तो कोई नहीं रखेगा, रखेंगे भी तो कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे, कोई बच्चा उठा लेगा। तो जब भी मैं एक ऐसे तालाब जाता हूँ जो मैंने 2 साल पहले रेस्टोर किया था और आज पूरा पक्षियों से भरा हुआ है, बत्तखों से भरा हुआ है, जलीय जीवों से भरा हुआ है, उसको देख के जो तसल्ली मिलती है दिल को, बुरा नहीं लगता कि मैंने जॉब छोड़ दी।
1: अब मैं इसी पे आ रही थी कि इतना मुश्किल रहा होगा कि जॉब छोड़ के आप फुल टाइम इस काम में लग रहे थे, अपने डिसीजन से ज्यादा मुश्किल रहा होगा घर वालों कन्विंस करना, उन्हें समझाना, क्योंकि आप अच्छी पढ़ाई लिखाई कर चुके थे, तो उसके बाद कैसे कन्विंस किया अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को?
0: क्या है, 5 भाई बहन है, अभी मैं सबसे छोटा हूँ, और मेरी मम्मी बताती है कि हम 5 नहीं, हम 10 भाई बहन थे, 10 में से 5 नहीं रहे, 5 बचे, और 5 जो भी नहीं रहे वो गरीबी के कारण नहीं रहे। 5ों में से भी मैं ऐसा हूँ जिसने 11th क्लास में पढ़ाई की, पहली बार घर का सबसे छोटा, क्योंकि मेरे बाद तो नेक्स्ट जनरेशन शुरू होने वाली थी, हमारे बच्चे आने वाले थे, तो आई वॉज द पर्सन जिसने 11वीं क्लास में एडमिशन लिया, और मैं कॉलेज गया पहली बार, और जिसने पहली बार एमएनसी में जॉब भी की। तो मेरे घर वालों के लिए तो कितना बड़ा अचीवमेंट था कि कोई कॉलेज गया है। जब मैं कॉलेज गया था तो मैं कॉलेज में घुसने के अगले दिन ही मेरे इतने सारे रिश्ते आने वाले थे, क्योंकि रिश्तेदारियों में कोई था नहीं जो कॉलेज जा
1: पढ़ा लिखा और एमएनसी में जॉब करे।
0: जबकि जो मेरे साथ के थे वो बता रहे हैं कि मेरे दादाजी वहाँ के ग्रेजुएट थे, मेरे परदादाजी वहाँ दरोगा थे, और मैं वहाँ पहली बार कॉलेज में जा रहा हूँ। वहाँ फिर मुझे शर्म लग रही थी कि हम कितने पीछे हैं, लेकिन मेरे घर वालों को लग रहा था कि हम कहाँ पहुँच गए चांद पे। प्राउड फील कर रहे थे घर वालों को, उम्मीद थी। और जब जॉब लगती है किसी की, पहली बार कोई जॉब करता है तो अलग बात होती है। तो जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि जॉब छोड़ना मेरे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आपके पास खोने को कुछ है ही नहीं तो आपको डर किस बात का, जॉब ही तो अगले साल फिर लग जाएगी, यहाँ छोड़ के कहीं और लग जाएगी। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जस्टिफाई कैसे करूँ। तो उन दिनों में क्या था, ये 2016 से 18 जॉब किया था, तो 18 में जब मैंने जॉब छोड़ी तो नक्सली वाला कुछ चल रहा था इधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की तरफ, झारखंड की तरफ। मैं जॉब छोड़ चुका था, और मैं जॉब छोड़ने के एक महीने तक मैं घर से उसी समय निकलता था जिस समय जॉब के लिए निकलता था, और उसी समय घर पे आता था जिस समय जॉब से आता था, ताकि घर वालों को रियलाइज ना हो।
1: अच्छा।
0: और मैं करता क्या था उस बीच की, कहीं पे कोई पर्यावरण का सेमिनार हो रहा है, एक दो भैया थे जो काम कर रहे थे उनके ऑफिस पे जाके बैठता था, कहीं ऐसा प्रोग्राम चल रहा है उसको जाके सुनना है, और कई बार उधर से मेट्रो में बैठ के आता था, यहाँ एक सीपी में बीच में गोल चक्कर है बहुत बड़ा सा, उस पे जाके बैठ जाता था, तो वो मेरा काम था। तो मैंने फिर एक दिन ऐसे ही कहा अपनी मम्मी से कि वहाँ जो है मेरा ट्रांसफर उधर हो रहा है छत्तीसगढ़। तो मम्मी ने पूछा छत्तीसगढ़ कहाँ पड़ता, क्योंकि मम्मी तो हमारी कभी स्कूल देखी नहीं कैसा होता है स्कूल, उन्होंने छत्तीसगढ़ क्या, उन्होंने अपने नोएडा के बाहर कभी जाके नहीं देखा। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा छत्तीसगढ़ वही जगह है जहाँ पे आजकल नक्सली और बहुत हमले हो रहे हैं जो टीवी में देखा था। तो उसने कहा, नहीं नहीं बेटा वहाँ नहीं जाना, तुम जॉब छोड़ दो कहीं और ढूंढ लो।
1: अच्छा।
0: तो मैंने कहा ठीक है कल छोड़ दूंगा।
1: तो मैंने पहले आपने पूरा वो भूमिका तैयार की, उसके बाद
0: क्योंकि जस्टिफाई करने में मुझे समय लगा उसको कि उनको बताऊं कैसे, है ना, मैं बोलूंगा क्या, हाल तो मेरी जॉब मेरा डिसीजन वो वाला नहीं है, बट हम गाँव के लोग हैं, हमें पेरेंट्स को भी साथ लेके चलना है, को भी बुरा नहीं फील कराना है, उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई है हमसे। हमारे लेकिन पिताजी इस काम से बिल्कुल ना खुश थे, वो मुझसे नहीं कहते थे लेकिन मेरी मम्मी को बहुत डांटते थे, तुम्हारी वजह से ये कर रहा है, तुम बोलती नहीं हो कुछ, ये है घर का नाश हो जाएगा, ये है वो है। तो
1: ऑब्वियसली लगता है कि बेटा इंडिपेंडेंट हुआ, जॉब कर रहा है,
0: हाँ, छोड़ के गलत डायरेक्शन में जा रहा है, है ना, उनके लिए गलत डायरेक्शन थे, और कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि बच्चा इनसिक्योर फील्ड की तरफ। तो कई बार ऐसा होता था कि न्यूज पेपर में मेरा आता था, आज इंटरव्यू देखा है तो कल आएगा ही आएगा, तो मैं गली के बाहर खड़ा हो जाता था, न्यूज पेपर वाले को रोकता था, वो पेज फाड़ लेता था और बोलता था हाँ तुम ले जाओ अब इसको, पिताजी तक नहीं पहुंचता था। लेकिन भाई गांव में आया तो गांव वाले खुद

0: आ जाते थे हाथ तो तुम्हारे लड़के का गवाह।
1: तो वो बताइए मुझे घटना कि जब मन की बात पीएम मोदी ने आपका जिक्र किया तो फिर क्या माहौल था, आपने सुना था वो?
0: मैं तो सुन नहीं पाया था। उस दिन मैं अपने घर पे ही था और लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। मेरा भतीजा आया था, मैं ऊपर था फर्स्ट फ्लोर पे, वो ग्राउंड फ्लोर पे था, तो वो भगा भगा आया था कि अंकल आपका नाम टीवी में आ रहा है। तो मैंने तुरंत लैपटॉप साइड में रखा और मैं भगा भगा नीचे गया। और जब तक नीचे गया तो मन की बात प्रोग्राम तो चल रहा था, बट मेरा वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया। तो मैंने उसको बोला कि तुम मजाक क्यों करते हो। अरे नहीं अंकल, अभी देखा था, सच में देखा था मैंने। तो मैं वापस गया अपने कमरे में। जब लेकिन वहां जाके देखा तो मेरा मोबाइल बज रहा था।
1: अच्छा।
0: और बार बार बज रहा था। मैंने उठा के देखा तो बहुत सारे ढेरों सारे मैसेज थे, कॉल थे, मेरे जितने भी लोग मुझे जानते थे आसपास के, तो सब लोग कॉल करके बधाई देना चाहते थे। तो जब मैंने एक दो मैसेज पढ़ा तो फिर मुझे अपने भतीजे की बात पे यकीन आया कि हाँ वो सही कह रहा था। उसके बाद से जो लोग कुछ मजाक उड़ाते थे, क्या ये ऐसा काम करते हो, ये करते हो,
1: वही लोग,
0: तो मेरे पास एक जस्टिफिकेशन और आ गया कि जब प्रधानमंत्री जी तारीफ कर सकते हैं तो आपको लोगों के मजाक उड़ाने वाले।
1: और आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था?
0: देखो गांव में ना हमारे एक बेटा और पिताजी के बीच में इस तरह के कन्वर्सेशन होते नहीं है। उनको मनी मन खुशी हुई होगी लेकिन उन्होंने कभी कहा नहीं कि बेटा आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ऐसा सिर्फ हम टीवी में देखते हैं कि पिताजी कहते हैं जाके।
1: तो जब इतने बड़े लेवल पे आपकी तारीफ आ गई और सब कुछ अच्छा चलने लगा तो आपने अपने पिताजी को फिर कैसे कन्विंस किया?
0: मैं तो क्या करता था कि जैसे शुरू में जब तालाबों की बात आती थी, तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम कुछ भी करो लेकिन ऐसा काम करो जिससे पैसा आए। तुम्हें इसलिए पढ़ाया ताकि तुम पैसे कमा सको। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं जब भी तालाबों के बारे में पूछते थे तो मैं कहता था मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मछली पालन में बहुत पैसा आए।
1: अच्छा।
0: इससे मछली पालन करेंगे, करोड़ों रुपए कमाऊंगा मैं। तो वो उस बात से खुश हो जाते थे। अच्छा, मछली पालन का काम करना है। मैंने हाँ जी, मैंने सुना उसमें बहुत पैसा है, एक साल ट्राई कर लेता हूँ, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मेरे पिताजी को किसी भी काम से कोई दिक्कत नहीं है जिससे पैसा आए। तो इसलिए मैंने तालाबों के काम को मछली पालन से जोड़ के मैंने उनको जब बताया तो इस साइड की ठीक है भाई, मछली पालन में मैंने भी सुना है बहुत पैसा है।
1: तो कभी फिर ट्राई किया आपने सच में मछली पालन?
0: नहीं, मेरे साथ के करते हैं ना।
1: अच्छा।
0: मैंने मछली पालन कराया। अगर तालाबों को सस्टेन कराना था तो किसी ना किसी तरह से एक्वा कल्चर से जोड़ना है। अदरवाइज तो आज आप तालाब साफ करेंगे अगले साल फिर उतना ही बढ़ जाएगा। आप एक साल में तालाब ही तो रेस्टोर कर सकते हैं, लोगों का माइंडसेट थोड़ी ना रेस्टोर कर सकते हैं। जो लोग कचरा फेंक रहे हैं उनको दिमाग को थोड़ा ना अंडू कर सकते हैं कि आज कचरा फेंकना बंद, क्योंकि आदत खराब होती है, धीरे धीरे धीरे खराब होती है तो धीरे धीरे सही भी होती है। अब हमारा हाथ चलता ही नहीं है डस्टबिन की तरफ। अब तो माननीय प्रधानमंत्री ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है और ये स्वच्छ भारत मिशन चलाया तो थोड़ा थोड़ा आदत में आ रहा है डस्टबिन की तरफ, अदरवाइज तो फेंकने की तरफ ही चलता है। मैं तो जब कॉलेज में जाता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, बच्चों को उदाहरण देता हूँ कि भाई अगर मैं आपको आज होमवर्क देके आऊँ, होमवर्क देके जा रहा हूँ कि आपको नेचुरल सीनरी ड्रॉ करके लानी है कल, तो मुझे पता है 90% बच्चे क्या ड्रॉ करके लाएंगे। दो पहाड़ पीछे से उड़ता हुआ, एक पक्षी, आगे झोपड़ी, एक छोटा सा पॉन्ड, सूरज निकल रहा है, कहाँ से आया ये, है ना? क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वही बनाते आ रहे हैं। लेकिन वो सब झूठ है। अब ऐसे तालाब नहीं बचे हैं। अब तालाबों की असली पिक्चर बनाइए ना कि तालाब कैसे कचरे से भरे हुए हैं।
1: तो अब तक आपने कितने तालाब साफ किए हैं और उन्हें पुनर्जीवन दिया है?
0: अभी तक तो हम 100 से ज्यादा तालाब कर चुके हैं।
1: अच्छा।
0: और ये 100 तालाब कोई बड़ा है, कोई छोटा है ना, कोई 50-50 एकड़ के भी, जिसमें एक में से भी 50 तालाब निकल सकते हैं, छोटे छोटे है। क्या जैसे उत्तर भारत में आप रहेंगे तो यहाँ पे अगर 500 एकड़ की भी कोई वाटर बॉडी है ना, ह्यूज वाटर बॉडी, उसको भी तालाब ही बोलेंगे। वैसे आमतौर पर तालाब एक छोटी वाटर बॉडी है और झील बड़ी वाटर बॉडी है, लेकिन यहाँ पे उत्तर भारत में आप चाहे कितनी भी बड़ी वाटर बॉडी ले लीजिए उसको तालाब ही बोलेंगे। उदाहरण के लिए कहता हूँ, भोपाल का बड़ा तालाब, आप उसको इस किनारे खड़ा होकर देखिए, आपको दूसरा किनारा ही नजर नहीं आता और वो समुन्दर लगता है आपको, लेकिन नाम क्या है? बड़ा तालाब। उससे थोड़ा छोटा होता तो छोटा तालाब। तो इसलिए यहाँ अपने झील भी रिवाइव करिए तो वो भी तालाब है। तो ऐसे कर करके हमने 100 से ज्यादा तालाब अभी तक रिवाइव किए और अभी हम 11 स्टेट्स में काम कर रहे हैं एक साथ।
1: अच्छा।
0: हमने गांव से शुरू किया था लेकिन अभी हम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, पौंडीचेरी, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, एवरीवेयर वी आर वर्किंग।
1: आने वाले समय में किस किस जगह को, कौन से तालाब आपने टारगेट किए कि अब यहाँ पर काम करें?
0: नहीं, टारगेट हम नहीं करते हैं, हम क्या है अगली साल के लिए हमेशा एक नई लिस्ट बनाते हैं।
1: अच्छा।
0: और वो लिस्ट बनती है लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग। भाई मान लो आप स्पॉन्सर है, आप किसी गाँव से निकले हैं और आप यूएस में रहते हैं और आपके पास अभी पैसे की कोई कमी नहीं है और आप बोलते हैं मुझे अपने गाँव के तालाब की बहुत याद आती है, मैं जिस तालाब में नहाया हूँ अभी वो एकदम कचरा घर बन चुका है, मैं इसको रिवाइव कराना चाहता हूँ। तो

0: हमारी टीम जाती है, उसको रिवाइव करती है, जो खर्चा होता है वो देते हैं।
1: अच्छा, तो इस तरह से फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है और
0: फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है। दूसरा है कुछ कॉर्पोरेट है, मान लो मैं एक कंपनी हूँ और मैंने इस जिले में एक अपनी कंपनी लगाई हुई है और मैं पूरा मेरा प्रोडक्शन ग्राउंड वाटर से है, मान लो मैं कोल्ड ड्रिंक ही बना रहा हूँ, मैं पैक्ड वाटर बना रहा हूँ, तो मैंने ऊपर वाला प्लॉट खरीदा है उस जिले का या उस गाँव का, मैंने नीचे का पानी नहीं खरीदा है, क्योंकि जब मैं वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूँ, स्पेशली ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करता हूँ, तो वो उसी प्लॉट का पानी नहीं निकल के आता है, वो वहाँ से 1 किलोमीटर के दूर का भी पानी आता है, वो 500 मीटर दूर का भी, लेकिन वो तो आपने खरीदा नहीं है, आपने तो सिर्फ वो प्लॉट खरीदा है। तो फिर आपकी एक कॉर्पोरेट जिम्मेदारी बनती है कि जिस क्षेत्र का आप रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं, जिस पर पब्लिक का हक था, यहाँ की हवा पर पब्लिक का हक है, जितना एक कंपनी के मालिक का हक है उतना ही गाँव के एक आदमी का हक है, तो आप कम्युनिटी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो फ्री में, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी के लिए, उस क्षेत्र के लिए आप कुछ करें। इसीलिए CSR लाया गया, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो बड़े कॉर्पोरेट है वो अपने प्रॉफिट का 2% निकाल के अलग रखते हैं और उस क्षेत्र के लिए खर्च करते हैं जहां पे उनका प्लांट काम कर रहा है, और ये मैंडेटरी है, ये हर कॉर्पोरेट को करना है। हम क्या करते हैं, उन कॉर्पोरेट को बोलते हैं कि भाई आपकी फैक्ट्री यहाँ पे है, आपसे 20 किलोमीटर दूर एक तालाब है जो गांव वाले रिवाइव कराना चाहते हैं और हम उसको रिवाइव करने के लिए रेडी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है हमें सपोर्ट करने की। तो वो CSR के अंतर्गत जरूरी है, सब मदद करते हैं, कुछ कॉर्पोरेट हमारी मदद करते हैं, और ऐसे करते करते अभी तक हमारा 60 से ज्यादा कॉर्पोरेट पार्टनर्स हमारे बन चुके हैं अलग अलग क्षेत्र।
1: जैसे मेरे जैसे कोई आम जन के लोग अगर जुड़ना चाहे सफाई के या रिवाइव करने के लिए, तो वो क्या कर सकते हैं?
0: देखो, शुरुआत तो घर से होती है। अगर तालाब में जो कचरा है वो भी हर इंडिविजुअल का ही कचरा है ना, किसी ने जाके एक ट्रक कचरा तो डाला नहीं है एक साथ, तो हमारा हर घर से एक एक बोतल निकलती है जब वहाँ पे एक ट्रक कचरा होता है। तो जब मैं स्कूलों में जाता हूँ, मैं बच्चों को बोलता हूँ, अगर आपने 5 किलो प्लास्टिक स्कूल में इकट्ठा कर लिया, तो मतलब आपने 1 स्क्वायर मीटर पॉन्ड आपने साफ कर लिया।
1: बेहतर है कि उसे गंदा ही ना किया जाए।
0: हाँ, तो तालाब को रिवाइव करने के 2 तरीके हैं, एक आप जाके तालाब से कचरा निकालें, एक आप तालाब में कचरा जाने ही ना दे। तो जब आप जाने नहीं देते तो वो ज्यादा एफिशिएंट होता है और ज्यादा काम का होता है, इसलिए हम स्कूल के बच्चों को जोड़ते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे ही बदलाव ला पाएंगे, इसके अलावा और कोई, क्योंकि जब आप बड़े पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं और एक छोटे पेड़ को उखाड़ कर दूसरी जगह लगाते हैं, मतलब अगर आप बदलाव करना चाहते हैं, बड़े पेड़ का सक्सेस रेट बहुत 5-10% होता है, बड़े पेड़ नहीं बच पाते, छोटे पेड़ तो आप लगाते ही रहते हैं, जंगल लगाइए, तो वो एडॉप्ट कर लेते हैं नई जगह को, उनको अंदर सीखने की क्षमता होती है। इसलिए हम बच्चों को जाके बहुत सारी वर्कशॉप करते हैं, हम बच्चों के साथ जाके बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो तालाबों को गंदा ना हो।
1: मतलब हर बड़े काम की शुरुआत जो है वो छोटे छोटे चेंजेस, छोटे छोटे बदलाव से की जा सकती है। रामवीर जी, आप यहाँ पर आए और हमारे पॉडकास्ट में इतने सहज तरीके से आपने इतनी अच्छी बातें बताई जल संरक्षण के बारे में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप भी ये छोटे छोटे बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं, कचरा कम फैलाएं ताकि जो हमारी वाटर बॉडीज है वो गंदी ना हो। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए नीति को, नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे तालाबों के संरक्षण और विकास के लिए प्रयासरत पॉन्डमैन के नाम से प्रसिद्ध रामवीर तंवर के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के आज 10वीं कड़ी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनवाते हैं आपको कुछ फिल्मी गाने फिल्म संगीत के तहत।

एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी के लिखे गाने को अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। खुल में थी आराधना। आइए सुनते हैं अब अगला गाना।

दो रास्ते। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गाना। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, गीत के बोल आनंद बख्शी के थे, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आइए सुनते हैं अब अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को मेरे जीवन साथी फिल्म में गीत के बोल मजरूह के थे, धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने। सुनवा रहे हैं आपको कुदरत फिल्म का गाना, आवाज़ किशोर कुमार की है, गीत के बोल मजरूह के हैं, धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत का पहला निजी रूप से विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 अपनी पहली परीक्षण उड़ान के लिए तैयार है। इसे हैदराबाद की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। ये रॉकेट मिशन आगमन के तहत सुबह 11:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में ही डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये 4 चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों, खासकर युवाओं से इस ऐतिहासिक मिशन को देखने और टीम स्काई रूट की सफलता की कामना करने की अपील की है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित, निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। पनामा के विदेश मंत्री जेवियर एडार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चौथे नंबर की चार चेन यू की खिलाफ पहला गेम 21-19 से जीता। वहीं दूसरे गेम में वो 15-10 से आगे थी, तभी चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का फैसला किया। इसके बाद सिंधु को विजेता घोषित किया गया। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर से कल 20 राज्यों के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। इन स्टेशनों का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत लगभग 1,570 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। ये योजना दुनिया के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रमों में से एक है। विरासत भी विकास भी की भावना के अनुरूप विकसित इन स्टेशनों में स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण भारतीय रेल में तेजी से हो रहे परिवर्तन का प्रतीक है। मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक तेज वर्षा हो सकती है। वहीं बिहार, कर्नाटक, केरला, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में आज बारिश की संभावना है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म और उमस भरा मौसम बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

विजय कुछ 18-19 साल का रहा होगा। बड़े भैया अब दुनिया की आपाधापी में उलझ गए थे। चार पांच तरीके के धंधों में हाथ आजमाया, लेकिन कहीं कुछ बात बनी नहीं। उम्र हो गई थी सो उनकी शादी की बात चल निकली थी, और ऐसे में काम का ना होना और बड़ी दिक्कत दे रहा था। भैया के किए सारे एहसानों का विज्जू को स्मरण हो आया। यही वजह रही होगी शायद, भैया जो बोलते विज्जू कर डालता। मतलब वो दादाजी के खेत संभालने की जिम्मेदारी आई विज्जू पे, तो भैया के कहने पर वो भी कर दिया। वो जो नहीं बोलते विज्जू वो भी कर देता। वो कचरे से बिजली बनाने का काम किया भैया ने, तो विज्जू फैक्ट्रियों में घूम घूम के कचरा भी लाद लाद के इकट्ठा करता रहा। बड़ी बहन हालांकि बड़े भैया से छोटी थी, लेकिन उनकी शादी बड़े भैया की शादी से पहले हो गई। विज्जू शादी में इतना काम कर चुका था कि बहन की विदाई का समय आते आते वो कहीं पसर के सो गया। बड़े भैया ने ही आकर जगाया, बोले, दीदी विदा हो रही है, आ जा, उनको बाय बोलकर सो जाना। मम्मी और बड़े भैया खूब रोए दीदी के विदाई पे। विज्जू को दीदी के जाने का रोना तो नहीं आया, लेकिन भैया को इतना रोते देख वो भी रो दिया। बैंड वाले ने वो विदाई वाला गाना बजा के माहौल और भी गमगीन कर दिया था।

बड़ी बहन की शादी के बाद दादाजी चल बसे। अज्जू भैया का वो बिजली उत्पादन कारखाना भी बंद हो गया। मतलब वो चालू था लेकिन भैया वहां जाते नहीं थे। पता नहीं पार्टनर्स लोगों से कुछ झगड़ा हुआ था शायद, पता नहीं। बिज्जू कभी भैया से सवाल नहीं करता था, उसे लगता था भैया जो कर रहे हैं वो सही ही है। दादाजी के जाने के बाद पिताजी और बड़े भैया एक दिन बिज्जू के पास आए कुछ प्रॉपर्टी के कागजातों के साथ। उन्होंने बिज्जू से उन कागजातों पर 8-10 जगह साइन करवाए। बिज्जू को याद आया उसे नदी में तैरना सिखाया बड़े भैया ने। वो पानी में थोड़ा दूर जाकर खड़े हो जाते और बिज्जू से कहते, कूद जा मैं खड़ा हूं तुझे संभाल लूंगा। और बिज्जू कूद जाता। बिज्जू हाथ पैर मार के उन तक पहुंचता तो वो और पीछे चले जाते। और बस यही खेल कर करके तैरना सिखा दिया भैया ने उसे। अब तो भैया कहें इस कुएं में कूद जा तो वो कूद जाए। इन कागजातों पर हस्ताक्षर कौन सी बड़ी बात थी। भैया के भावों से बिज्जू को हमेशा यही लगता जैसे कह रहे हो तो चिंता मत कर मैं हूं ना।

बड़े भैया की शादी की बात चल निकली, उनके लिए लड़की ऐसे ढूंढी जा रही थी कि बस राजकुमारी मिल जाए। भैया ठहरे भी गोरे चिट्टे स्मार्ट, दुल्हन अच्छी मिली, मतलब भैया जितनी गोरी तो नहीं लेकिन शांत स्वभाव की दिखी। हंसने में थोड़ी कंजूस मालूम पड़ती थी, लेकिन विजय अपनी हंसी में उनको शामिल कर ही लेगा। इतना जोर जोर से हंसता है, कहाँ तक बचेगी भाभी प्यारी। सबसे ज्यादा उछलना विजू को ही आया भाभी के आने का। अलग अलग पकवान तरकारी खिलाएगी, गप्पे लड़ाएगी, ताश खेलेंगे घंटों बैठकर, और वो नदी किनारे पानीपुरी खाने जाएंगे और पता नहीं क्या क्या नाच नाच के काम किया विज्जू ने शादी में। विज्जू से बड़ी बहन की शादी, मतलब वो जो तीसरे नंबर की बहन, उसकी शादी भी साथ ही में हो गई। सहेली जैसी बहन गई तो सहेली जैसी भाभी आ गई। विज्जू अलग अलग तरीकों से बार बार बोलता, मेरी भाभी। ये बोलने में उसे बड़ा मजा आता। कारण तो नहीं पता, लेकिन बेवजह ही इस उद्बोधन को हर बात में ले आता। मेरी भाभी ये, मेरी भाभी वो, मेरी भाभी मेरी भाभी।

0: विभिन्न पत्रिकाओं में अलग अलग तरह की व्यंजन विधियां आती और विज्जू लाल आकर भाभी को देता। कभी मकई की टिक्की, कभी मखाने की खीर, कभी मेथी मटर के कोफ्ते मलाई वाली सब्जी। लेकिन एक के बाद एक भाभी ने कुछ नहीं बनाया। शादी के बाद विज्जू उनके चेहरे पर हंसी तो नहीं ला पाया, उल्टा जो एक हल्की सी वो मोनालिसा मुस्कान दिखती थी कभी, वो भी गायब हो गई। उम्र कम थी विज्जू की, लेकिन समझ में आ रहा था कि उसकी माँ और भाभी की पट्टी नहीं थी, वही वो सास बहू वाला एंगल कह सकते हैं। विज्जू का दिल टूट गया। सुख बुघाट ये भी थी कि भैया का कुछ काम जम नहीं रहा था। अब वो तेल का धंधा कर रहे थे कुछ, आसपास वाले बताते हैं कि शायद तेल का सट्टा कर रहे थे। विज्जू के लिए ये सब कुछ समझ से परे था। आदतन कोई सवाल तो विज्जू करता नहीं था भैया से, लेकिन कुछ शंकाएं जरूर आई उसके मन में। अब घर में चुप्पी सी रहने लगी थी, अशांति वाली चुप्पी। विज्जू हंसमुख मिजाज का सरल लड़का रहा, ये सब कैसे भाता उसे। घर में टूटे तार बिखरे पसरे दिखने लगे। टिमटिमाती चमक लिए विज्जू की आंखों में अब सूनापन दिखने लगा।
1: झूठ।

0: गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे हैं श्याम माहेश्वरी की लिखी कहानी भाई हो तो ऐसा।
1: विज्जू बड़ा हो गया था, फिल्म लाइन में आने का मौका मिला तो बंबई आ गया। आज का मुंबई कल बंबई ही था। अच्छा काम जमा लिया उसने। कालचक्र का पहिया भी अजीब है। बात कुछ ऐसी बैठी कि बड़े भैया का भी वहां काम जोरदार चल निकला, और उससे भी बड़ी बात, उन्हें हर सप्ताह मुंबई आना पड़ता अपने काम के सिलसिले में। मुंबई में आकर विज्जू के घर ही रहते हर हफ्ते 4-5 दिन। विज्जू को लगा तो यही था कि अपने गांव से दूर इस पराये शहर में भी भैया के आ जाने की वजह से वही अपनापन फिर लौट आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। भैया तनाव में ही दिखते हमेशा। पैसा आता है तो बरकत आ जाती है, लेकिन भैया के साथ उलट हुआ। भाभी का शांत स्वभाव सुना है अब ज्वालामुखी हो गया है। दोनों दीदियां बताती हैं अब वहां भाभी का ही राज चलता है। मम्मी

सालों साल निकल गए इस आपाधापी में। ये शहर अब बंबई से मुंबई हो गया। कोरोना काल में स्वास्थ्य की दृष्टि से तो विजय सही सलामत रहा, लेकिन कोई पिक्चर बनाई उसने जिसमें कमर टूट गई उसकी। नौबत यहां तक आ गई कि बिज्जू का घर बिक गया। और उधर गांव में सुना बड़े भैया ने बहुत पैसा जमा कर लिया था। मुंबई आने की अब जरूरत भी खत्म हो गई थी, इसलिए वे नहीं के बराबर ही आते, और आते भी तो बिज्जू के घर नहीं रुकते, वो कहीं किसी होटल में रुकते थे। आजकल बिज्जू को उनके हाव भाव व्यवहार से समझ आ रहा था कि उन्होंने इसलिए मुंबई आना बंद नहीं किया था कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो गई थी, बल्कि इसलिए बंद किया था कि भैया अब बिज्जू से मिलने से कतरा रहे थे। उन्हें शायद ये डर सता रहा हो कि बिज्जू इतने सालों मुंबई में रखने की कीमत न मांग बैठे। कठिन समय में अपने ही याद आते हैं, और वो अजय भैया जैसे अपने हों तो ज़्यादा याद आते हैं।

विजय अभी भी अपने तो अपने होते हैं कि भावों से निकल नहीं पाया था पूरी तरह, लेकिन भैया ने तयशुदा पूरी तरह भुला दिया था बिज्जू को। चलो उसे भुला देते तो भी ठीक था, लेकिन इस वक्त जरूरत में था वो। यही सोचकर मेहरबानी समझ ही मदद का हाथ बढ़ा देते उसकी तरफ, पर ऐसा हुआ नहीं। तब विजय को याद आई अपने दादाजी की जमीन, वही जो दादाजी ने अजय और विजय के नाम कर दी थी और जिन कागजातों पर तब हस्ताक्षर करवाए थे विजय से, वो इसी जमीन को बेचने के कागजात थे। और उसी जमीन को बेच के भैया ने कपड़े की दुकान ली थी अपनी, जिसने आज यहां तक पहुंचा दिया उन्हें। सुना है कुछ लाखों में बेची वो जमीन आज करोड़ों की हो गई है। नंगे के नवग्रह बलवान, विजय ने सोचा और तय किया कि उस जमीन का अपना हिस्सा भैया से अब मांग लेगा। उनके पास बहुत है ही और इसके पास सब खत्म हो गया है, तो ये सही समय है अपनी हक की गुहार लगाने का।

भैया से बात की विज्जू ने तो वे साफ मुकर गए। तर्क किए कि उस जमीन को बेचना तो छोटी सी बात थी, मेन बात तो यह थी कि उनकी मेहनत थी जिसकी वजह से आज ये मिल्कियत खड़ी हो पाई। तर्क नहीं कुतर्क था ये, विजय की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। इतने सालों उन पैसों को भोगने के बाद वो अपने ही हो जाते हैं। बड़ा कठिन हो जाता है उन पैसों पर से अपना मोह जाने देना। पैसों का चरित्र कुछ ऐसा ही है, नकारात्मकता बहुत जल्दी आ जाती है। रुआब और रुतबा तो बढ़ता है लेकिन घमंड और लालच भी बढ़ जाता है। पैसों के शुद्धिकरण के लिए बड़ा दान धर्म करना पड़ता है, तब पछता है पैसा। भैया छोटे भाई को उसके हक का छोड़ो उसकी जरूरत का नहीं दे पा रहे थे तो दान धर्म कहाँ से करते? कहाँ से चले थे अज्जू भैया, कहाँ पहुँच गए? और कहाँ से चला था रिश्ता, कहाँ पहुँच गए?

विजय ने खूब गुहार लगाई अपने नाते रिश्तेदारों के पास जाकर। अपने हक का गान बखान किया, लेकिन भैया के खिलाफ कौन खड़ा होता। समरत को नहीं दोष गोसाई, पैसे वालों की कहां कभी कोई गलती होती है। विजय को अपना हक नहीं मिलना उतना नहीं चुभ रहा था जितना उस भरोसे का टूटना जो उसने भैया पे दिखाया था। जान लुटाता था वो बड़े भैया पे। कोई अभी भी कह दे कि ये सब झूठ है, अभी भी बड़े भैया आएंगे सांता बन के उसको सरप्राइज गिफ्ट देने, पर वो नहीं आए। विजय के इतने साल जीवन का अहम हिस्सा झूठा साबित हो गया। अब वो किसी पे भी भरोसा कैसे करेगा, और दूसरों पर तो जाने दीजिए, खुद पर भी भरोसा कैसे करेगा। सब कुछ

आज विजय बेघर है, दिन भर बैठा रोता रहता है, रातों को सो नहीं पाता। इधर गरीबी की मार और उधर विश्वास का खंजर, शूल सी चुभन हिस्सा बन गई है जीवन का। कलयुग की ये घटना कितनों के ही साथ हुई है। संवेदनशील विजय कई तरीकों से अपने आप को संभालने का प्रयास करता रहा। प्रयास करते रहने की एक विशेषता है, मुश्किलों से जूझने के लिए हिम्मत मिलती रहती है। प्रयासों की खुराक सुबह दोपहर शाम लेना शुरू कर दिया उसने दवाई की तरह, कहीं ज्ञान की बात सुनता तो कहीं ध्यान की कोई क्रिया करता। ऐसे ही एक ज्ञान में ये समझ आया कि पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब बचा रहा होगा बड़े भैया से, जो इस जन्म में पूरा हो रहा है। इस ज्ञान ने उसे हौसला दिया और नतीजा भी तुरंत निकला। विजय का बेटा अंधेरे में रोशनी की किरण लेकर आया, अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा गया और सबसे महत्वपूर्ण, विजय के प्रति पूरा समर्पित। कलयुगी भाई गया तो सतयुगी बेटा आ गया। कुछ जाता है तो कुछ आता भी है, अभी रात है तो कल सवेरा होगा ही। जीवन के इस हिसाब किताब को समझने के बाद आज विजय शांत है। एक रिश्ते के सामने जीवन का ज्ञान पा जाना उसे भगवान का दिया उत्तम न्याय लगा। आज विजय भैया के लिए नरम हो चुका है। कल तक ये सोचने वाला विजय कि भाई हो तो ऐसा ना हो कि जगह सोच रहा है

भाई हो तो ऐसा ये की तो भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे श्याम महेश्वरी, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज है जाने माने पार्श्व गायक भूपेंद्र सिंह की याद का दिन और आज के चित्रपट संगीत कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं चुनिंदा गाने भूपी जी की आवाज में।

हसन कमाल के बोल थे, फिल्म का नाम था एतबार, आशा भोसले और भूपिंदर की आवाजें थीं। अब आहिस्ता आहिस्ता और सितारा फिल्मों के गाने।

0: भूपिंदर सिंह की आवाज थी, फिल्म का नाम था सत्या। 21 जुलाई, गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई, पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुन।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: हो तो

0: बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

0: मैटिनी शो कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज मैटिनी शो में हमारे साथ एक बहुत जरूरी मेहमान हैं, शुभजीत मुखर्जी। बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: आपकी जो टी शर्ट है उस पर लिखा है जल है तो कल है। अब चूंकि हम रेडियो में बैठे हैं तो मुझे एक दृश्य खींचना होगा ना कि लोगों को पता चले। और आप पानी की दुनिया में काम कर रहे हैं, पर्यावरण की दुनिया में काम कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि ये जो बारिश के दिन हैं इनमें सबसे जरूरी गतिविधि क्या है?
1: देखिए, बारिश भगवान का आशीर्वाद होता है।
0: क्या प्यारी बात बोली आपने।
1: चाहे आप कुछ भी दुनिया का एक्टिविटी हो, कोई भी रोटी कपड़ा मकान से भी पहले पानी आता है। आप बिना रोटी के थोड़े समय तक रह सकते हैं, बिना कपड़े के तो आराम से रह सकते हैं, बिना मकान के रह सकते हैं, बिना पानी के 4 घंटा नहीं रह सकते। तो इसलिए कोई घर में आता है, दुश्मन भी हो, पानी हम जरूर पूछते हैं।
0: बिल्कुल,
1: खाने के बारे में नहीं बात करते हैं। तो सबसे पहले पानी है। जो भी गतिविधियां हैं दुनिया में, जो भी हम काम कर रहे हैं, बहुत जरूरी है कि पानी को एक विशेषता दिया जाए, पानी के बारे में चर्चा हो और हर इंसान को पता हो कि पानी प्रथम है, पहला टॉपिक शुड बी वाटर। तो इसलिए इस पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जो लाइफ लॉन्ग काम कर रहा था, मैं ये रियलाइज किया हूँ कि हर चीज पानी से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि पानी नहीं था इसलिए मेरा काम ठीक से नहीं हो रहा था। और जहाँ जहाँ पानी है वहाँ हर काम अच्छे से होता है। हर इंडस्ट्री, हर फैक्ट्री, हर सर्विसेज पानी के बिना नहीं होगा। टेक्नोलॉजी की बात कीजिए आप, खेती की बात कीजिए, किसी भी इंडस्ट्री की बात कीजिए, उसको कहते हैं वाटर फुटप्रिंट। बिना पानी का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो इसलिए पानी को लेकर मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें बहुत अच्छा लग रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। एंड बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने जल जीवन मिशन शुरू किया है। उनका जो सोच है जल संचय जन भागीदारी, इससे लोगों को ये चीज़ समझ में आया है कि नहीं, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, लोग इससे जुड़ रहे हैं और अपने अपने तरीके से, अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी के ऊपर काम कर रहे हैं। ताकि आज तक लोगों को लगता था कि गलतियाँ किसी और

0: की है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हमारी खुद की जिम्मेदारी है जो हमें निभाना ही पड़ेगा।
1: वाह, बहुत ही जरूरी बात आपने बोली है, जो जनता की भागीदारी की बात बोली। मुझे बताइए कि ये जो फील्ड है, ये जो मुहिम है, ये आपने कब शुरू की, इसका कारण क्या था और इसकी उपलब्धियां क्या हैं?
0: ये कब शुरू की थी बोलूँगा तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। मेरा मेन पैशन था कि पेड़ लगाऊंगा,
1: अच्छा,
0: एंड 2010 से मैं बहुत पेड़ लगाया, एंड गिनते गिनते एक बार पहुंच गए कि 80,000 पेड़ लग गए
1: क्या
0: पाँच
1: बात है
0: सालों में।
1: जी।
0: लेकिन 5 सालों में 2010 से शुरू किया था 2015 तक 80,000 पेड़, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है कि
1: जी
0: कोई बोले कि वाकई यहाँ तो लोग करोड़ों पेड़ लगा रहे हैं, बट उस 80,000 में से 40,000 पेड़ ऐसे ही मर गए। मैं जब गिनना शुरू किया पता चला पेड़ में, क्योंकि पानी नहीं मिला उसको, या तो कभी सूखा पड़ जाता है या ज़्यादा पानी आ जाता है, पेड़ मर जा रहे हैं। अब एक पेड़ में ज़्यादा पानी गिरेगा तो भी मर जाएगा, कम पानी गिरेगा तो भी मर जाएगा। तो मैंने ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं पेड़ लगाना चाहता हूँ तो हमें पानी का पहले बंदोबस्त करना ही पड़ेगा,
1: जी,
0: चाहे एक किसान हो, जो भी पेड़ रिलेटेड काम करता हो, चाहे वो एक चावल ग्रो कर रहा हो या शुगर ग्रो कर रहा हो या फल ग्रो कर रहा हो, कुछ भी, पानी बहुत ज़रूरी है। चाहे हम जैसे लोग पर्यावरण प्रेमी लोग जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं, आज जैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेन है एक पेड़ माँ के नाम, तो तब मेरे सोच में आया कि हमें पेड़ लगाने से काम नहीं होगा, हमें पानी लगाना पड़ेगा।
1: वाह,
0: तो ट्री प्लांटेशन मत कीजिए, मैं लोगों को बोलता हूँ, आप वाटर प्लांटेशन कीजिए। आप ये सोचिए कि पानी कैसे होगा, क्योंकि बारिश के समय हर जगह हरा भरा हो जाता है अपने आप, क्योंकि पानी रहता है। वाटर इज ब्लेसिंग्स, एंड हमारा ही एक पृथ्वी ऐसा जगह है जहाँ पानी है, इसलिए हम हैं यहाँ पे। आज अगर चांद पे पानी होता तो मैं गारंटी देता हूँ कि आज फिर अभी समय हम लोग चांद पे बैठ के बात कर रहे होते, पृथ्वी में नहीं बैठे होते। तो पानी यही है, और हमें यहीं पे पानी का संरक्षण, सबसे ज्यादा परम संरक्षण पानी का ही संरक्षण है इस समय।
1: तो ये तो तय हुआ कि आपने कैसे शुरू किया,
0: जी
1: कब शुरू किया और उपलब्धियां क्या हैं इसकी?
0: उपलब्धियां तो हो गई है, मेरी उपलब्धि नहीं है, लोगों की उपलब्धि है। शुरुआत 2015 से हुआ, जब मैंने एक सोच निकाला कि पानी व्यर्थ बहुत जाता है,
1: जी,
0: चाहे शहर हो या गांव हो, हम सब नहाते हैं। एंड मौका मिला बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का, मौका मिला बहुत साइंटिस्ट से बात करने का, थैंक यू IITs, एंड काफ़ी रिसर्चर्स थे। तो ये पता चला कि घरों में जो पानी होता है, किसी को बोलूँ पीने का पानी को आप पेड़ में डालिए तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि पीने का ही पानी नहीं है तो पेड़ को कैसे देंगे, क्योंकि यही बात अक्सर होती थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तब माइंड में आया कि नहाने का पानी तो व्यर्थ जा रहा है, और घर में जितने भी पानी का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 40% पानी नहाने में चला जाता है एंड 30% पानी फ्लशिंग में चला जाता है, टॉयलेट्स में। टॉयलेट का पानी रीयूज करने के लिए बहुत मेहनत है, बहुत खर्चा है, बट नहाने का पानी एक ऐसा पानी है जिसको हम आराम से फिल्टर करके रीयूज कर सकते हैं, चाहे आपको फ्लशिंग में यूज़ करना हो या पेड़ पौधे में देना हो या टॉयलेट धोना हो या बहुत सारे, इसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं नॉन ड्रिंकिंग पर्पस। तो इस चीज़ को लेकर मैंने एक जल तारा इन्वेंट किया, डिज़ाइन किया, एंड थैंक यू उसमें एक पेटेंट भी मिला मुझे। एंड पता चला कि पेटेंट करना बेटर है, नहीं तो कोई दूसरा उसको कॉपी करेगा और उसका पैसा लगा देगा। तो मैंने ऐसा एक डिज़ाइन बनाया है कि आप कोई कॉपी नहीं कर सकता, और ये फ्री फॉर ऑल है।
1: अच्छा,
0: हर इंसान अपना नहाने का पानी उसमें डाइवर्ट कीजिए, उसमें फिल्टर कीजिए और तुरंत इस्तेमाल कीजिए, उसको नॉन स्टॉप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप नहा रहे हैं तो मतलब आपके पास एक्स्ट्रा पानी है। हर इंसान को एवरेज कम से कम 30 लीटर पानी चाहिए, और कोई अगर शावर से नहा रहा हो तो डबल हो जाता है, 80 लीटर से 100 लीटर पानी इस्तेमाल हो जाता है। तो इसीलिए मैं लोगों को बताना लगा कि आप ये कार्य करना शुरू कीजिए। मैजिक ड्रम इसको इनिशियली कहते थे, फिर धीरे धीरे इसका नाम पड़ गया जल तारा, क्योंकि हम ये घर का पानी इसमें डाइवर्ट करने लगे एंड नॉन स्टॉप ये पानी इस्तेमाल करने लगे। लोगों को बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। किरण बेदी जी हैं जो बहुत ही वेल नोन फिगर हैं, तो उनको ये आइडिया अच्छा लगा था, उन्होंने देखा था। एंड कई सालों बाद जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमें जल संचय करना है, जन भागीदारी ज़रूरी है, जल जीवन मिशन जब शुरू हुआ, तो उन्होंने, किरण बेदी मैडम ने, इस कॉन्सेप्ट को जल शक्ति मंत्रालय को ट्वीट करके बताया
1: जी।
0: ये देखिए, ये मुखर्जी हैं, ये बहुत बढ़िया एक आविष्कार किए हुए हैं, आप लोग ये लोगों तक पहुंचाइए। वो एक दिन है, और जब प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में बताया, मुझे जल शक्ति मंत्रालय बुलाया गया, उन्होंने ये सिस्टम देखा, उन्होंने इस बारे में बहुत सारे पोस्टर्स और उन्होंने चारों तरफ लोगों को बताना शुरू किया कि ऐसा करो, क्योंकि सोच यही है कि एक अगर हम चाहते हैं कि आज अगर देखा जाए तो 150 करोड़ आबादी में मान के चलता हूँ हमारे देश का, हर इंसान को जोड़ना हो तो 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। एक है कोई भी कार्य ईजी होना चाहिए, आसान होना चाहिए लोगों के लिए। दूसरा, कार्य सस्ता होना चाहिए। मैं बोलूँगा लाखों रुपए खर्चा होगा लोगों को पसंद नहीं आएगा। एंड तीसरा, क्विक होना चाहिए। मैं ऐसा कुछ काम बोलूँगा कि 2 महीना चले काम ही चल रहा है, बढ़िया बिल्डिंग बन रहा है, फैक्ट्री बन रहा है, कुछ ऐसा इक्विपमेंट बन रहा है, तो लोग इसमें लोग जुड़ेंगे नहीं। एंड उसी समय स्वच्छ भारत अभियान, तो उससे भी एक प्रेरणा मिला कि जब करोड़ों लोग जुड़ सकते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी एक ऐसा काम करूंगा जिसमें हर इंसान अपने हिस्से का पानी बचाना शुरू कर दे। तो इसीलिए ये गैजेट टेक्निक बनाया गया, जल तारा, जिसमें लोग जुड़ने लगे, अपने तरीके से खुद ही इसको इंस्टॉल करने लगे। एंड देखा जाए तो इसमें कोई भी खर्चा नहीं है किसी का। अच्छा। यही है कि जैसे मैं थोड़ा आलसी इंसान हूँ, मैं खुद तो काम करूँगा नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि कोई खड्डा बना दे तो कोई लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, पत्थर चुन के लाऊंगा नहीं, भाई कोई पत्थर चुन के ला दो, तो मटेरियल लेके आओ। एंड उसको इम्प्रोवाइज करते करते आज ऐसा एक डिवाइस बना दिए हैं कि आप खुद ही बना सकते हैं, नहीं तो आप किसी और से करवा लीजिए। एक अच्छा स्टैंडर्ड करना है तो 5,000 में काम हो जाता है, लेकिन जहाँ लाखों किसान आज हमसे जुड़े हुए हैं वो खुद ही कर रहे हैं, वो बस हमसे एडवाइस लेते हैं, मैं उनको सिखाता हूँ। हमने कॉल सेंटर शुरू किया है, RWH इंडिया हेल्पलाइन, जिसमें लोग ईमेल करते हैं, उनको फोटो वीडियो के साथ इतना सारा भेज देता हूँ कि आज मुझे बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है कि 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इन वीडियोज़ और फोटोज़ को देख चुके हैं, सोशल मीडिया में भी बहुत जगह डाले हैं, उन लोग भी इससे देखते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं, डेली 300 से 400 लोग हमें ईमेल कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं एंड कमेंट्स कर रहे हैं, जिसको हम लोग नॉन स्टॉप गाइड कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत यूजफुल हो गया है हम सब के लिए एंड सब लोग जुड़े हैं, यही हमारे लिए एक खुशकिस्मती की बात है।
1: जी, आपने हेल्पलाइन की बात की, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी हेल्पलाइन का नंबर या कॉन्टैक्ट का जरिया बताएं, ताकि जिन लोगों की जलतारा में दिलचस्पी है वो इस बारे में पूछताछ कर सकें और नजदीकी लोगों से जुड़ सकें। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन से आपकी इस मुहिम के साथ जुड़कर काम करना चाहे तो उसका क्या तरीका है? इन दोनों सवालों के जवाब दीजिए।
0: जी, पहला तो ये है RWH इंडिया हेल्पलाइन, जो एकदम ही फ्री सेवा है, जिसके लिए हम लोग कोई पैसा नहीं लेते। हम लोग 8 जन हैं जो जियोलॉजिस्ट हैं एंड जो सिविल इंजीनियर्स हैं, जियोलॉजिस्ट एंड सिविल इंजीनियर्स, वो भी अपने तरफ से देश का सेवा कर रहे हैं। एंड कोई भी हमें ईमेल करता है, हम लोग पहले समझते हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपके भौग जमीन का क्या सिचुएशन है, आपका टेरेन कैसा है, आपके यहाँ पानी कितना बरसता है, आपका ज़मीन का साइज कितना है, छत कितना है और पानी का उपयोग कितना है, यही सब चीज़ें हम लोग उनको बोलते हैं ईमेल कीजिए हमें। waterheroofindia@gmail.com एक मेल बनाया है जिसमें लोग ईमेल करते हैं, उनको हम लोग रिस्पॉन्ड देते हैं हमारे इंजीनियर्स बैठ के, और उनको पूरा डिज़ाइन डायग्राम के साथ सिखा देते हैं कि आप लोग ये स्टेप कीजिए और आपका काम हो जाएगा, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा। एडिशनली अगर आपके पास फंड्स हैं, चाहे 1,000 रुपये हो, 2,000 हो, 3,000 हो, क्योंकि हमारा कोई भी काम 2-3 हज़ार रुपये से ज़्यादा के खर्चे का नहीं है। क्योंकि पहले ज़माने में जब भी हम जल संचय की बात करते हैं या वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, हज़ारों के लाखों में बिल जाता था। अब जब आप कोई बात बोल रहा है कि ये तो 2 लाख खर्चा होगा, मैं बोलता हूँ 2 लाख छोड़ दो, 2,000 में हो जाएगा। कोई बोलता है 3 लाख खर्चा होगा, मैं बोलता हूँ भाई 3,000 में हो जाएगा। तो लोगों को फिर ये बात समझ में आने लगी। एंड जब लोगों को कॉन्सेप्ट में क्लियर करना शुरू किया कि जल संचय का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वाटर कंजर्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, लोगों को क्लैरिटी, जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया एंड लोग खुद ही करना शुरू कर दिए। पहला तो ये है। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट जो हमारे पूरे देश में एक कैंपेन चल रहा है, कई ऐसे न्यूज़ आए हमारे पास। न्यूज़ ये आए कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा देती है कि आप लोग जल संचय कीजिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कीजिए, लेकिन वो पैसा यूज़ नहीं हो पाता है, वो वापस चला जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा खर्चा करने के लिए रेडी है अंडर CSR, लेकिन वो फंड यूटिलाइज नहीं हो पाता है, वो वापस चला जाता है। बहुत NGOs हैं हमारे देश में जो इस सब्जेक्ट को लेकर काम करना चाहते हैं, वो वापस चला जाता है, उन लोग कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि स्किल नहीं है लोगों में। क्या करना है ये नहीं पता। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सब जानते हैं कि हमारे पास पानी की कमी है, या दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है पानी बहुत ज्यादा है हम लोग डूब जा रहे हैं, यही दो प्रॉब्लम है, बीच का कुछ नहीं।

0: और सबसे अजीब बात क्या है, वही सेम गांव में पानी की कमी होती है और सेम गांव बारिश में डूब जाता है। तो सेम जगह में आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखिए, जून महीने में यहाँ इस शहर में पानी खत्म हो चुका है, लोग टैंकर के ही पानी से जीवित हैं, इतने लोग अस्पताल पहुंच गए हैं, पानी नहीं है, अभी गांव छोड़ के जाना पड़ेगा, शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। और ठीक 15 दिन बाद आप 15 जुलाई में आ जाइए और आप पूछिए कि क्या हालत है, बोले कि यही सेम गांव सेम आदमी पानी में डूब चुका है, उसको एक नौकर ले आके बचा रहे हैं, अभी सारा घर भी डूब गया है। मतलब पानी की कमी नहीं है, पानी का मैनेजमेंट की गड़बड़ी है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसी को माइंड में रखते हुए हम लोगों ने जो RWH इंडिया हेल्पलाइन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्किल डेवलपमेंट जो इंडिया का जो कैंपेन चल रहा है, इससे प्रेरणा लेके हमारी कोशिश यह है कि हर इंसान को इसके ऊपर स्किल ट्रेनिंग दिया जाए। 7,400 लोगों को हमने ऑलरेडी ट्रेन किया है, हर गांव में हर शहर में, कोई भी सीखना चाहता हो कि जल संचय कैसे करें और जल संचय का सर्विस कैसे प्रोवाइड किया जाए, ताकि एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, क्लास 8th भी पढ़ा हो, क्लास 5th भी पढ़ा हो, उसको हम लोग सिखा रहे हैं कि आप जल संचय कैसे कर सकते हैं अपने गांव में, अपने शहर में। आप लोगों को जाइए, बात कीजिए और आप खुद करके आइए, लोगों को एक तो आप सेवा तो दे ही रहे हैं, आपको कमाने का भी अवसर मिलता है। तो स्किल डेवलपमेंट का जैसे सोच है कि हम लोग ऐसे स्किल्स डेवलप करें जो हमारे देश में ज़रूरत है। अब जहाँ हमारे देश में जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो हमें लगता है, वो पानी की बचत, पानी को लेकर संचय करना, पानी का कैसे मैनेजमेंट करना, इसमें अगर स्किल डेवलपमेंट और क्लासेस हो सकें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने भी मुझे एक जगह दिया है PWD के हेल्प से। हेल्थ डिपार्टमेंट ने मलाड वेस्ट मुंबई में 7 एकड़ का ज़मीन उन्होंने अलॉट किया है, एक हॉस्पिटल प्रमाइसेस हैं। देश भर से कम 300-400 लोग हर महीने आते हैं मुझसे मिलने, जल संचय के अलग अलग विधि समझने के लिए, एंड उसी में लोग ट्रेनिंग लेके जाते हैं और अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में जल संचय करने का सर्विस प्रोवाइड शुरू करते हैं, जिससे बहुत बड़ा कार्य हो रहा है।
1: 7,500 लोग तकरीबन आपसे
0: 7,400 लोग
1: जी, यानी 100 कम है उसमें। क्या इसमें वो लोग भी हैं जो ऐसे इलाकों से हैं जहां बहुत कम बारिश होती है, जैसे राजस्थान का इलाका है या कच्छ का इलाका है?
0: आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वही हैं ज्यादातर।
1: अच्छा,
0: मध्य प्रदेश, यूपी, थोड़ा बहुत बिहार के एरिया जहां फ्लड होता है, वो भी लोग आते हैं।
1: अच्छा, वो भी,
0: क्योंकि सेम ये मैं सोच लीजिए पैरासीटामोल दे रहा हूँ लोगों को। हर चीज मैं बोलता हूँ पैरासीटामोल ले लो, पानी की कमी है तो भी आपको जल संचय करना है, पानी ज्यादा है तो भी जल संचय करना है, फ्लड आया है तो भी जल संचय करना है। तो इसलिए दो बीमारी है लेकिन इलाज सेम है।
1: इलाज सेम है। हाँ। और वो इलाज, मतलब उसकी मुहिम आप तैयार करें।
0: सेंट्रल महाराष्ट्र एंड हमारे ईस्टर्न महाराष्ट्र से, राजस्थान, गुजरात एंड बड़े बड़े म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लोग आते हैं, दिल्ली जल बोर्ड के लोग आते हैं, जिनका पानी विषय के लेके जो डिपार्टमेंट्स हैं। क्योंकि एक मैंने रियलाइज किया है कि क्योंकि मैं 22 अलग अलग स्टेट्स में काम कर रहा हूँ इस समय, तो हर स्टेट का क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या जुगाड़ हो सकता है, क्या वर्कआउट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो सबका थोड़ा थोड़ा मैंने देखा है, काम किया है। तो लोग, कई लोग मिलने आते हैं समझने के लिए कहाँ क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम में किस आइडियाज को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किसमें क्या फायदा ज्यादा होगा, किसमें फायदा कम होगा, और कम पैसे में जो काम हो सकता है उसके ऊपर हमारा ऑलवेज फोकस रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं DIY, डू इट योरसेल्फ।
1: यही तो जन भागीदारी है।
0: बस, जन भागीदारी का मतलब ही है DIY। ये आज मैंने आपसे बात करते करते ये मेरे माइंड में आया है, जन भागीदारी मतलब DIY। हमारा एक DIY किट है जल संचय के ऊपर, जो मैं सबको देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ये हर चीज, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ ना, आप मुझे waterheroofindia@gmail.com पे मेल कीजिए तो उनको DIY किट मिल जाता है। उससे उन लोगों का 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और उसमें फिर मेरा मोबाइल नंबर दिया रहता है, हमारे इंजीनियर्स का, लोग फ़ोन करके बात कर सकते हैं, एंड एक इंजीनियर के पास 1,000 लोग होते हैं जिनको उन लोग सपोर्ट करते हैं, एंड वैसे वैसे हमारे इंजीनियर्स बढ़ते जा रहे हैं। और एक आपको खूबसूरत बात बोलूंगा, इस समय मेरे पास 8 इंजीनियर्स हैं अलग अलग भाषा में।
1: अच्छा,
0: क्योंकि ऐसा बहुत हुआ है कि सबको हिंदी नहीं आती है, सबको अंग्रेजी तो नहीं आती है, बहुत लोग हैं सिर्फ गुजराती बोलते हैं, कन्नडा, तेलुगु, मलयालम के लोग हम ढूंढ रहे हैं अभी, नहीं 7 सिस्टर्स से हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के लोग और जुड़े हमसे, एंड वर्क फ्रॉम होम भी हम लोगों ने शुरू कर दिया, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तो ऐसे लोकल लोग हैं, बंगाली तो मैं खुद बोल लेता हूँ, उसमें मैं ठीक ठाक समझ जाता हूँ, मेरी वाइफ इसमें जुड़ गई, वो मराठी में लोगों को समझाती है, तो एक अच्छा चल रहा है, एंड लोगों का एक संतुष्टि है, लोग खुश हो रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं।

0: डिस्कशन होता है एंड बहुत एक खूबसूरत तरीके से पूरा देश आगे बढ़ रहा है।
1: वाह, किस तरह के बड़े बदलाव इस पूरी मुहिम के जरिए सामने आए हैं?
0: देखिए, एक कहते हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। उसको मैं हिंदी में कैसे बता सकता हूँ? इसका हिंदी वर्ड एक कहावत है ऐसा कुछ कि अगर आप समय पे चीज का इलाज कर लें तो बड़ा समस्या बन के नहीं आता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही है।
0: तो कोशिश ये रहती है कि जैसे ही हमें लगे कि पानी की कमी है तो एक छोटा सा उपाय, जल तारा, एक बड़े समस्या को अंदर आने नहीं देता है। उसके पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं,
1: समय रहते ही उपाय कर लेना चाहिए।
0: समय रहते ही।
1: जी
0: बहुत सही बताया आपने। तो कोशिश ये रहती है, जैसे एक एक देखते हैं पूरा मोहल्ला डूब गया पानी में, अक्सर आता, पूरा गांव डूब गया। क्यों डूबता है ये हमने रिसर्च करना शुरू किया है।
1: पानी की निकासी ठीक नहीं है।
0: हाँ, क्योंकि हम लोग पूरे पानी को एक जगह जमा होने देते हैं। अब सोच लीजिए, हमारे सामने ही बहुत बड़ा टेबल रखा हुआ है, ये सोच लीजिए हमारा पूरा, कहते हैं मुंबई शहर के मान लेते हैं
1: जी,
0: हर शहर में आप देख के लाइए, एक ऊपर वाला जमीन होता है, एक निचली जमीन होती है। अब बारिश तो हर जगह सेम हो रहा है, ऊपर वाले जमीन पे बारिश हुआ है वो सीधा बह के नीचे वाला जो सबसे जो लो लाइन एरिया है वहां पहुंच जाता है, तो वहां पे वर्षा जल निकासी नहीं हो पाता है। तो जल संचय एक वो तरीका है कि हर आदमी अपना पानी अपने घर में, एक स्कूल का पानी स्कूल में, एक ऑफिस का पानी ऑफिस में, एक प्लेग्राउंड का पानी प्लेग्राउंड में, एक मंदिर का पानी मंदिर में, मतलब हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स, ये उससे मैंने प्रेरणा लिया है।
1: मतलब हर जगह अगर पानी का इस तरह से संचय होगा तो जल भराव नहीं होगा
0: बस
1: और बाढ़ की समस्या नहीं होगी।
0: बस, और वो जमीन में जाएगा जो हमें काम आएगा।
1: जी,
0: क्योंकि बहता हुआ पानी नदी में चला जाता है, समुन्द्र में चला जाता है। एंड बहुत बड़ी बात सोच ये है सर, मैं आप जो जो सुन रहे हैं आप समझिए, पहले हमें लगता था कि हम बहुत बड़े तालाब में पानी इकट्ठा करेंगे। हम लोग तालाब का पानी पीते थे, वो सूखने लग गया। क्यों? क्योंकि धूप बहुत तेज होता है। फिर हमने कुआं खोदा, लोग इतने हो गए कि कुआं सूखने लग गया। 50 फीट 100 फीट तक हम लोग कुआं खोदे हैं। उसके बाद हमने बोरवेल खोदा, बोरवेल हम लोग 200 300 400, कहीं कहीं तो मेरे पास फोन आता है 1800 2000 फीट नीचे तक बोरवेल से पाइप निकाल रहे हैं, बोर जो कहते हैं। अब वो भी सूखने लग गया, 70% से ज्यादा बोरवेल सूख चुका है। लेकिन हमें लगता था कि जाने दो बोरवेल को, जाने दो कुआं को, हम लोग तालाब बनाएंगे, हम लोग बांध बनाएंगे, हम लोग नदियों को रोकेंगे। वो अपने जगह ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से इवेपोरेशन रेट बढ़ गया है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, भापीकरण, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के जब ये कॉन्सेप्ट देखा गया था, मुंबई मॉडल अक्सर बात किया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट में, देखिए मुंबई मॉडल कितना कमाल है, इन्होंने बड़े बड़े तालाब बनाए हैं, तालाब में पानी कलेक्ट करते हैं और हम लोग पूरा साल भर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज लोग भूल गए थे कि वाष्पीकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के समय। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 27% वाष्पीकरण हो रहा है इस समय। तो ये वाष्पीकरण 2035 का एक प्रोग्राम इंडिया गवर्नमेंट लेके चल रही है कि उस समय जो सिचुएशन होगा हमें 10 साल पहले लगना पड़ेगा।
1: एक तिहाई पानी भाप बन के उड़ जा रहा है।
0: जी, इस समय मुंबई में जो पानी की संकट है, पुणे में पानी की संकट है, चेन्नई में पानी की जो संकट है, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन रेट, वाष्पीकरण।
1: गर्मी बढ़ गई है।
0: गर्मी बढ़ गई, हमें लगता था, पहले लगता था 12% पानी उड़ेगा।
1: जी,
0: अभी 23
1: ऊपर हो गया।
0: बिल्कुल, यही हमारा प्रॉब्लम है। तो इसलिए अब तालाब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, हमें पानी जमीन के अंदर पहुंचाना बहुत जरूरी है। जल संचय का तालाब भी एक तरीका है, लेकिन जल संचय, तालाब का पानी उड़ जा रहा है, पानी जो जमीन के अंदर जाएगा वो कभी एवेपोरेट नहीं होता, आप 100 साल बाद भी निकाल सकते हैं।
1: इसमें बॉटम लाइन ये है कि पानी का ये संचय हम सबको करना होगा। जो पानी की कमी का शोर मचाते हैं, जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जो पानी को वेस्ट करते हैं, सोसाइटीज, अस्पतालें, उसके अलावा तमाम बंगलोज, ऑफिसेज, प्रार्थना स्थल, हर एक जगह पर लोगों की जिम्मेदारी है कि वो पानी बचाएं, वरना आने वाले कल में दिक्कत होने वाली।
0: ये हर इंसान को अपने हिस्से का पानी, इसको मैं थोड़ा, आप जो बोल रहे इसमें बस एक शब्द जोड़ दिया हूँ,
1: जरूर
0: अपने हिस्से का पानी बचाइए बस, दूसरे का मत सोचिए, अपना कर लीजिए तो अपने आप हो जाएगा सब।
1: तो सब अपने अपने हिस्से का पानी बचाएं तो ये सारी मुहिम जुड़ के एक बड़ा बदलाव ले।
0: बिल्कुल, इसलिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं जल संचय जन भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: हम लोग क्या लगता है हर दूसरा आदमी करेगा, म्युनिसिपैलिटी काम करेगी, कलेक्टर साहब काम करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब का काम है, हमारा काम नहीं है, डीएम मैडम का काम है, ऐसा नहीं होता है। हम सब का, हमारा पानी हमारा घर, हमारा पानी हमारा स्कूल, हमारा पानी होता है जो भगवान ने हमें दिया है, इस जगह के लिए दिया है,
1: हमें बचाना है।

0: चलते चलते अपने कॉल सेंटर का नंबर और वो ईमेल आईडी दोबारा बता दीजिए, और ये कि कैसे लोग खुद को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल भी इससे जुड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत पेचीदा काम नहीं है।
1: बिल्कुल, 2 घंटा 3 घंटा मेहनत करना पड़ता है। किसी को भी इस बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए हो तो waterheroofindia@gmail.com पे मेल कीजिए, आपको इसमें ऑटोमेटेड रिस्पांस मिलेगा, नंबर्स मिलेंगे, उसको पढ़ लीजिए, फिर हमें फ़ोन कीजिए, हम आपको और भी इसमें डिटेल दे देंगे। एंड प्लस मैं दोबारा बोलूँगा, हमारा जो स्किल डेवलपमेंट कैंपेन चल रहा है पूरे देश में, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में भी इसको आप देख सकते हैं, आप खुद सीखिए, अपने गांव में अपने शहर में ये सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कीजिए, ताकि जिस हिसाब से 7,400 लोग इससे जुड़े हैं, और भी लोग इससे जुड़ जाएं और अपना घर भी इसमें चला पाएं। थैंक यू
0: सुभजीत जी, ये जो मैटिनी शो के तहत आपसे बातें हुई हैं, अभी मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें बाकी हैं, पर इस हफ्ते के लिए आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन इजाजत लेने से पहले हम चाहते हैं कि अपनी पसंद का एक गाना, बल्कि कहें कि अपनी पसंद के एक गाने की आप फरमाइश करें, हम उसको पूरा करेंगे।
1: एक गाना मुझे हमेशा बहुत प्यारा लगता है जो नेचर से रिलेटेड है
0: जी,
1: एंड मेरी मम्मी भी वो गाती थी, अभी उनका फेवरेट था, अभी तो वो नहीं है, बट मुझे भी बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा गा दूं आपके
0: जरूर,
1: सामने।
0: जरूर जरूर, स्वागत।
1: हरी हरी व सुंदरा पे नीला नीला ये गगन,
0: वाह वाह,
1: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तो बस ये गाना सुना दीजिए, बहुत दिन हो गए सुने हुए।
0: क्या बात है, बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज, भरत व्यास के बोल और सतीश भाटिया का संगीत।
1: अरे वाह,
0: सुनते हैं ये गाना।

0: बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और आगे की बातें करेंगे।
1: थैंक यू जी।
0: चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। तो अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते हम फिर मिल रहे हैं मैटिनी शो में और बातें करेंगे जल है तो कल है की। इक्कीस जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
6: हो तो

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। यादों की महफिल कार्यक्रम होगा कुछ ही पलों के बाद।
1: एयरोस्पेस ने बनाया है विक्रम एक का। यह प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ये पहली बार होगा जब किसी भारतीय निजी कंपनी ने देश में डिजाइन और तैयार किया गया ऑर्बिटल क्लास रॉकेट लॉन्च किया है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम एक मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ये चार चरणों वाला रॉकेट तेज और जरूरत के अनुसार उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तीन दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में तीन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई अहमदाबाद हाईस्पीड

0: रेल परियोजना को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और पहला खंड वर्ष 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पूरे केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी अशांति पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने प्रदर्शनकारियों की मौतों की त्वरित निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने इस रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आर्म फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में दो अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। पीवी सिंधु ने टोक्यो में खेले जा रहे जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गोकीताल पर आप विविध भारती के संग हैं। अगले कार्यक्रम के लिए कुछ पलों का इंतजार। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
4: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आइए सुनिए यादों की महफिल।
1: क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाएं।

अमर प्रेम फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना। दिन की इस भागदौड़ में दिन की 12:11 विविध भारती यादों की महफिल मस्ताना।

आराधना फिल्म का गाना था और अब द ट्रेन फिल्म का गीत आनंद बख्शी राहुल देव बर्मन। मोहम्मद रफी की आवाज।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: होठों पे सच्चा

0: है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नमक हराम फिल्म का गाना आपने सुना। फिल्म का नाम है धड़कन, किशोर कुमार की आवाज।

अजनबी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आपने सुना। आनंद बख्शी की बोल थी, आर डी बर्मन की तर्ज थी, राजेश खन्ना की याद, यादों की महफिल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम 1 का ये प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि रॉकेट तेज और मांग के अनुरूप प्रक्षेपण सुविधा उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री ने स्काईरूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, मेहनत और नए विचारों को दिखाता है। इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि भारत अपने रुख पर दृढ़ता के साथ कायम है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
1: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इस नेतृत्व को देखा है और ये तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान में आकाश तीर, आकाश मिसाइल प्रणाली और ब्रह्मोस सहित कई अन्य अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों का उपयोग किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रूपये से अधिक की लागत आएगी। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। ये कार्रवाई राज्य सरकार के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यूफी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यूफी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में 3रे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा। मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भी कल तक मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। India's first privately developed orbital rocket, Vikram 1, under Mission Agaman, has successfully reached orbit after completing its final burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The liftoff took place at 12:05 p.m. from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. The milestone makes India the third country in the world to achieve private orbital launch capability. Prime Minister Narendra Modi congratulated Skyroot Aerospace for the achievement. Mr. Modi spoke to Team Skyroot by phone and lauded the historic space feat. The Prime Minister also invited Team Vikram 1 to meet him.
3: Dhawan, Bharat, aur puri team, bahut bahut badhai. Do kaam kiye hai. Ek to aasman mein manaye paudhe gaad diye hai aur dusra zameen mein bhi us roots ko aapne majbooti di hai jo desh ke naujawanon ko आगे आने की प्रेरणा देगी और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
2: Named after Dr. Vikram Sarabhai, the father of the Indian space program, Vikram 1 is intended to provide cost-effective and flexible launch services for small satellites. Its successful orbital mission marks a significant milestone for India's private space sector, reflecting the growing role of private industry following the space sector reforms that opened launch activities to non-government companies. Defence Minister Rajnath Singh has said that for India, zero tolerance against terrorism is not merely a statement but a firm line of action. Speaking at the forces' first conclave in New Delhi today, Mr. Singh said, India will strike terrorists not only at its doorstep but if necessary by entering their hideouts. He added that the entire world witnessed this during Operation Sindoor and it was a remarkable example of technological warfare.
1: Operation Sindoor apne aap mein technological warfare ka
4: Operation Sindoor was in itself a fantastic example of technological warfare. In this operation, systems like the Akash missile system and advanced missile systems like BrahMos along with various latest equipment were used. This has proven that our armed forces understand the changes taking place and are also using them with confidence.
1: Aur use aatmavishwas

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में रचा नया इतिहास। देश के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 ने श्रीहरिकोटा से भरी सफल उड़ान। राज्य में मच्छर जनित और जल जनित बीमारियों के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी सिविल सर्जनों को युद्ध स्तर पर फॉगिंग और जांच के दिए निर्देश। राजकीय श्रावणी मेले में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए डीएसपी स्तर के 69 पुलिस पदाधिकारियों की देवघर और दुमका में की गई प्रतिनियुक्ति। साहिबगंज में खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है गंगा नदी। दियारा क्षेत्र के 108 गांवों में संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। और रांची के दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन में आज खेल मंत्री सुदिव्य कुमार की उपस्थिति में 135वें डूरंड कप हॉकी का हुआ अनावरण, निकाला गया भव्य रोड शो। और अब समाचार विस्तार से। भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने आज एक नया इतिहास रचा है। हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित देश के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 ने अपनी पहली परीक्षण उड़ान के तहत श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। मिशन आगमन के तहत यह बहुप्रतीक्षित प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह देश के युवाओं की प्रतिभा का ऐतिहासिक प्रमाण है। राज्य में मच्छर जनित और जल जनित रोगों के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने पूरे स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने रांची, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम के सिविल सर्जनों को युद्ध स्तर पर मलेरिया नियंत्रण अभियान चलाने के आदेश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में मलेरिया का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने मनोहरपुर और गोइलकेरा समेत 6 प्रखंडों को हॉटस्पॉट घोषित किया है। बड़ी संख्या में नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है। सिविल सर्जन डॉ. जुझार मांझी के निर्देश पर डॉक्टरों की विशेष टीमें प्रभावित दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर रक्त के नमूने ले रही है।
1: अब तक अपने जिला में उपायुक्त महोदय के मार्गदर्शन पर उदयम 2.0 को हम लोग ने संचालित किया और अब तक जो उदयम 2.0 के तहत हम लोग ने जो प्रयास किया मलेरिया को घर घर पहुंच के जांच करके चिन्हित करना, उसको उपचार करके रेडिकल ट्रीटमेंट देना और मलेरिया से मुक्त करना।
0: प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि श्री मरांडी को अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए और राजनीतिक बयानों में शालीनता बरतनी चाहिए।
2: जब जब राज्य में निवेश की बात होती है, जब जब राज्य में रोजगार की बात होती है, जब जब राज्य विकास के पथ पर अग्रसर होता है, तब तब बाबूलाल जी या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं, चाहे वो डीएमएफटी फंड का मामला हो या कौशल विकास का मामला हो। तो सिर्फ पत्र लिख करके बाबूलाल जी अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त होना क्यों चाहते हैं?
0: गौरतलब है कि कल नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कौशल विकास मिशन सोसाइटी में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि युवाओं के जीवन में 15 से 22 वर्ष की आयु व्यक्तित्व विकास और नेतृत्व की नींव रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। जमशेदपुर के एक स्कूल में आयोजित IIMUN कॉन्फ्रेंस में छात्र छात्राओं से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे मंच युवाओं को वैश्विक दृष्टिकोण, संवाद कौशल और लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने का सशक्त अवसर देते हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राजकीय श्रावणी मेले की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डीएसपी स्तर के 69 पुलिस पदाधिकारियों को देवघर, दुमका और रेल धनबाद में तैनात किया है। प्रतिनियुक्त अधिकारियों में झारखंड सशस्त्र पुलिस IRB, एसटीएफ और ATS के अधिकारी शामिल हैं, जो भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा की कमान संभालेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर में रक्षाबंधन के अवसर पर डाक विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान को जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय का समर्थन मिला है। सिंहभूम मंडल के डाक अधिकारियों की टीम ने विधायक से मुलाकात कर विशेष सेवाओं की जानकारी साझा की। सरयू राय ने डाक विभाग की इस पहल की सराहना की।
3: रक्षाबंधन के अवसर पर पोस्ट ऑफिस राखियां पहुंचाने का भी एक उपकरण बने, ये प्रयास हो रहा है। मगर यदि पोस्ट ऑफिस ने इस क्षेत्र में कदम रखा है तो बेहतर होगा कि हमारा एक बहुत ही पुराना जो संस्थान है और इस सेवा के काम में वर्षों से लगा हुआ है, तो हम उसको महत्व दें और उनसे हम राखी खरीदें तो ये हमारे स्वस्थ संस्थान है, इसकी भी ये सामाजिक पहल है वो कामयाब होगी।
0: साहिबगंज में गंगा नदी का जलस्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेजी से बढ़ रहा है, जिससे दियारा क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी घुसने लगा है। संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। अंचल अधिकारी बासुकीनाथ टुडू ने बताया कि तटीय क्षेत्रों के प्रभावित होने वाले 108 गांवों के नागरिकों के लिए सुरक्षित आश्रय स्थलों, राहत सामग्री और मवेशियों के चारे का प्रबंध किया जा रहा है।
4: गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, 2 दिन में 2.5 मीटर पानी का जलस्तर बढ़ा है। जितना प्रभावित इलाका है सभी को हम लोग सूचना दे सको कि पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखना पसंद करें। और जो प्रभावित इलाका है उन लोगों के लिए प्रत्येक साल के बाद आश्रय गृह का निर्माण किए हैं।
0: आकाशवाणी जमशेदपुर के नाटक अनुभाग की ओर से नाटक स्वर परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। केंद्र से प्राप्त किया हुआ पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन 10 अगस्त तक जमा करना अनिवार्य है। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के 12 जिलों के लिए अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से रांची, पलामू, हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम सहित कई इलाकों में रुक रुक कर अच्छी बारिश होने की संभावना है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि राज्य में मॉनसून फिलहाल सामान्य से कमजोर बना हुआ है, लेकिन इससे पलामू प्रमंडल और दक्षिण हिस्से में बारिश की स्थिति सुधरेगी। रांची के दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन में आज 135वें डोरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के प्रतिष्ठित ट्रॉफियों का भव्य शोकेस आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि खेल मंत्री सुदेव कुमार और विशिष्ट अतिथि मेजर जनरल सज्जन सिंह मान ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डूरंड कप, प्रेसिडेंट्स कप और शिमला ट्रॉफी का रांची के मोरहाबादी मैदान और फिरायलाल चौक सहित प्रमुख मार्गों पर भव्य रोड शो निकाला जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में रचा नया इतिहास। देश के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 ने श्रीहरिकोटा से भरी सफल उड़ान। राज्य में मच्छर जनित और जल जनित बीमारियों के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी सिविल सर्जनों को युद्ध स्तर पर फॉगिंग और जांच के दिए निर्देश। राजकीय श्रावणी मेले में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए डीएसपी स्तर के 69 पुलिस पदाधिकारियों की देवघर और दुमका में की गई प्रतिनियुक्ति। साहिबगंज में खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है गंगा नदी। दियारा क्षेत्र के 108 गांवों में संभावित बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन हुआ अलर्ट। और रांची के दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन में आज खेल मंत्री सुदिव्य कुमार की उपस्थिति में 135वें डोरंड कप ट्रॉफी का हुआ अनावरण, निकाला गया भव्य रोड शो। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

एक श्रोता बड़े अफसोस से कह रहे हैं, क्या बताएं यूनुस जी, किस्मत कुछ ऐसी रही कि श्रीमती जी के अलावा किसी को प्रेम पत्र नहीं लिख पाए। अब श्रीमती जी जब भी मायके जाती थीं तो लिख दिया करते थे, फिर मोबाइल आने पर यह सिलसिला भी खत्म हो गया। इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अब चिट्ठी पत्री का जमाना चला गया है और संदेश बॉक्स के साथ सांकेतिक इमोजी से ही लोग काम चला लेते हैं, और जो समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो उनकी भला से। ये बहुत महत्वपूर्ण बात एक श्रोता ने लिखी है। एक और श्रोता है, लिखते हैं कि चिट्ठी एक बार भी नहीं लिखी लेकिन पोस्ट ऑफिस से पार्सल बहुत सारे पोस्ट किए हैं रिसेंटली। एक श्रोता है जो लिख रहे हैं कि नॉर्मल चिट्ठी लिखे, पिछली बार कब लिखी थी ये तो याद नहीं है।

पर पिताजी का लिखा हुआ 1978 का अंतर्देशी मिला। आज पिताजी नहीं है पर यह पत्र मैंने संभाल कर लिखा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उन्होंने आखिरी पत्र जो है वो विविध भारती को लिखा था। बहुत बढ़िया बात। एक और श्रोता ने आखिरी पत्र जो है वो विविध भारती में लिखा था और उनकी इल्तिजा यह है कि मनचाही गीत कार्यक्रम में शामिल किया जाए। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि आजकल जमाना बदल गया, आज के माँ बाप तो बच्चों की सुन लेते हैं, हमारे जमाने के माँ बाप कुछ कहते सुनते नहीं थे, उससे पहले उनके हाथ बोलने लगते थे और हम कुछ बोल नहीं पाते थे। कुछ दिल ने कहा ये गाना बहुत सारे श्रोताओं के दिल तक उतरा है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अपने साथी को पहला खत लिखा जो पोस्ट नहीं किया, किसी के द्वारा भिजवाया। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट से एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा एक दोस्त उड़िया था, उसे एक हिंदी भाषी लड़की से प्यार हो गया था, वो मुझसे हिंदी में प्रेम पत्र लिखवाता था, वही पहला प्रेम पत्र था। भाई देखिए, वाया वाया प्रेम पत्र यानी किसी और के लिए लिखे गए प्रेम पत्र की बात है, ये भी बहुत ही दिलचस्प बात है। कुछ और कमेंट्स अगले गाने के बाद शामिल किए जाएंगे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आई थी वो इमोजी की और डिजिटल संवादों की थी, तो यहां बताइएगा कि क्या चिट्ठी पत्री की जगह जो व्हाट्सएप और डिजिटल संवाद ने ले ली है या जो इमोजी के जरिए संचार है, इमोजी के जरिए अपनी बात कहना है, इसके बारे में आपका क्या राय है, आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, क्या इमोजी सचमुच में आपके जज्बात को सामने वाले तक पहुंचा देते हैं या ये शॉर्टकट तरीका आपको पसंद नहीं। दूसरा, व्हाट्सएप संवादों से ज्यादा आनंद चिट्ठी में आता था या नहीं।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: हो तो

0: है
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
1: भाई हमने अपने श्रोताओं से ये पूछा था कि इमोजी के बारे में उनकी क्या राय है, तो बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि पत्र लिखते और पढ़ते वक्त जो भाव मन में आता है वो किसी इमोजी या व्हाट्सएप चैटिंग से नहीं आता, केवल खाना पूर्ति होती है। इसके अलावा एक और श्रोताएं लिखती हैं कि डाकिए का इंतजार करना और खत का लिफाफा खोलना, इसमें जो उत्सुकता थी वो किसी डिजिटल नोटिफिकेशन में नहीं हो सकती। इसके अलावा एक और श्रोता का कहना है कि व्हाट्सएप में वो फीलिंग नहीं आती है जो हम लेटर में लिखा करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता का कहना है कि चिट्ठी में जो लिखा जाता है उसमें संवेदनाएं होती हैं, विश्वास होता है, उम्मीद होती है, प्यार होता है। किसी की चिट्ठी जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उससे हम बातें कर रहे हैं, और चिट्ठी पढ़ने के बाद हमारे दिल और दिमाग में एक उथल पुथल आती है जो हमें बेचैन कर देती है, लेकिन व्हाट्सएप और इमोजी में ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं जिसमें हमने कुछ अभी पढ़ा था। इसके अलावा एक और श्रोता है लिख रहे हैं कि इमोजीज का आजकल बहुत अच्छा उपयोग हो गया है। कई बार कुछ भी लिखने के लिए इमोजीज से मन की बात अच्छे से जाहिर हो जाती है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो ब्लैंकली लिख दें तो उसका वो अर्थ ना निकले जो इमोजी के बाद होता है। तो एक श्रोता है जिन्होंने इमोजी का सपोर्ट किया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि हमें इमोजी नहीं पसंद है, फिर भी भेजते हैं जल्दी के लिए, वैसे लिखकर संदेश भेजना ज्यादा पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनकी सहेली हमारे कॉलेज के पते पर खत भेजती थी और हमारे खत को पढ़कर उन्हें सुनाती थी। ये बात 57-58 साल पहले की है। एक और श्रोता है जो लिखती है कि आपने ये जो पूछा है इमोजी का, तो इमोजी मुझे अच्छी नहीं लगती, ये फीलिंग बता पाते हैं, आजकल के बच्चों को बता पाते हैं, पर मुझे तो इमोजी से कोई फीलिंग नहीं आती। ये एक श्रोता की बात है। तो भाई बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह से अपने रिस्पॉन्सेज दिए हैं और इमोजी के बारे में अपनी बात कही है। देखिए ये जो कार्यक्रम है सुरीला सफर, इसके बहाने कितने सारे श्रोताओं के ख्यालात हमें पता चले, और लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं ना फेसबुक पर, लगातार ऊपर स्क्रॉल होते रहते हैं। और इसी पल एक श्रोता ने ये लिखा है कि कम ही हमें इमोजी की भाषा समझ में आती है, ना समझी से खुशी की जगह गुस्से वाली इमोजी भेजने से बहुत सारे मित्र हमसे नाराज भी हो गए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि कागज पर लिखी चिट्ठी तकिए के नीचे रखकर सो सकते हैं, पर मोबाइल तकिए के नीचे रखकर कैसे सोएं। चिट्ठी में हम अपने जज्बात उड़ेल देते थे, चिट्ठी में उसका चेहरा देखते थे, जो बात पत्रों में है वो मोबाइल के मैसेजेस में कहाँ है। कितनी प्यारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। अगर आपने अभी तक अपनी बात नहीं कही है, डिजिटल चिट्ठियां और फिजिकल चिट्ठियां यानी हाथ से लिखी हुई चिट्ठियां या व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए संदेश, इन दोनों में से आप किसे प्रेफर करते हैं, और दूसरी बात क्या इमोजी सचमुच में अपनी बात कहने का अच्छा जरिया है, ये दोनों बातें बताइएगा। अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं।

भाई ये गाना खत्म हो गया और इतने सारे मैसेजेस इस बीच धड़ाधड़ आए हैं, मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादातर मैसेजेस आपको पढ़ के सुनाऊं। चिट्ठियां दिल की बात शब्दों में पिरोने के लिए वक्त और सब्र मांगती हैं, जो एक गहरी आत्मीयता पैदा करता है। हाथ से लिखी चिट्ठी हमेशा के लिए एक निशानी बन जाती है जिसे सालों साल सहेज कर रखा जा सकता है। ये हमारे एक श्रोता की बात है। उसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि पहले चिट्ठी लिखना पढ़ना पर लिखवाने वाले के आंसू और पढ़ते समय भी उनकी रुलाई देखकर अपनी भी रुलाई आती थी। मैं नानी के साथ रहती थी, माँ दूर रहती थी और जब भी नानी अपनी बेटी को पत्र लिखवा रही होती थी तो आधी बात रोते रोते ही लिखी जाती थी और मैं रोते रोते लिखते चली जाती थी। इसके अलावा एक श्रोताएं जो लिखते हैं, प्रेम पत्र लिखने के बाद जब उसे पहुंचने का नंबर आता था तो रिश्वत भी खिलानी पड़ती थी, बच्चों को आइसक्रीम टॉफी बिस्किट

ये कहने का मतलब है आपका, मैं समझा। इसके अलावा एक श्रोता हैं जो ये कह रहे हैं कि आज की छोटी सी इबारत मैंने बहुत कुछ कह दिया है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि इमोजी डिजिटल भाव त्वरित प्रकट कर देते हैं। आजकल के लोगों के पास इतना समय कहाँ है सुनने बताने का, पर पत्र में तो पूरी बात लिखने और बताने का आनंद ही अलग था। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिख रहे हैं कि मैसेज के बीच बीच में इमोजीज यूज करने से वो ज्यादा उपयोगी हो जाता है। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि इमोजी और ऑटो टेक्स्ट दोनों खतरनाक हैं और कई बार अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती में वो हमेशा चिट्ठी लिखते हैं और उनकी शिकायत ये है कि आज तक उनकी चिट्ठी शामिल नहीं हुई है। एक श्रोता ने बहुत ही नॉस्टैल्जिक कर दिया, पहले चिट्ठियां एक तार वाले स्टैंड में घोप कर रखी जाती थी, नीचे लकड़ी का एक गोल सा टुकड़ा रहता था, सारी चिट्ठियां सुरक्षित रहती थी। आज भी हमारे पास 70 साल पुरानी चिट्ठियां संग्रहित हैं। 70 साल, क्या बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इमोजी तो हमें शुरू से समझ नहीं आया और कई बार गलत सलत इमोजी भिज जाते हैं। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पत्र केवल शब्दों का समूह नहीं, दिल की धड़कन आत्मा की प्रतिध्वनि है। जब हम कागज पर कलम चलाते हैं तो हमारी उंगलियों के साथ साथ हमारी भावनाएं भी बहती हैं। पत्र में ठहराव होता है, गहराई होती है, जो पढ़ने वाले के दिल को सीधे छूती है। और दूसरी ओर इमोजी आज के दौर का शॉर्टकट है। भाई, शॉर्टकट का जमाना है, ये हमारे तमाम श्रोता एक्सेप्ट कर रहे हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि पहले पत्र लिखने के लिए फूल का फोटो बनाना पड़ता था, चिट्ठियों में परफ्यूम तक डाले जाते थे, ये इमोजी में कहां हो सकता है। चिट्ठी छूकर जो निकटता महसूस होती है वो डिजिटल संदेशों से नहीं होती। एक और श्रोता, जज्बात सिर्फ खत से महसूस होते हैं, जब खत पढ़ना शुरू करते थे तो यूं लगता था सामने वाला हमारे सामने खड़े होकर कुछ कह रहा है। कितनी प्यारी बातें। चलिए ये तमाम बातें और उसके बाद ये गाना, आप फिल्म का नाम बताइए।

अदालत फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना, और एक श्रोता ने इसकी एक पंक्ति को कोट किया है, कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया, अब इस पे कयामत है कि हम कुछ नहीं कहते। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आज आपने यादों का पिटारा खोल रखा है जिसमें चिट्ठियों भरा प्यार है, कुछ प्रेम की बातें हैं, कुछ पुराने जज्बात हैं जो हमें सदा जवां रखते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा कि मैंने तो कभी पत्र नहीं लिखा, लेकिन मेरे बड़े पापा हैं वो वायलिन वादक हैं और उन्होंने लता मंगेशकर जी को एक पत्र लिखा था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि रंग बिरंगी इमोजी बहुत सुंदर दिखती हैं और वो आपके संदेशों को अट्रैक्टिव बनाती हैं, तो भाई एक पहलू ये भी है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि एक वक्त था जब लोगों के पास समय बहुत था और भावनाएं अपरंपार थीं, चिट्ठियां पोल भी खोलती हैं, अगर किसी की चिट्ठी किसी दूसरे के हाथ पड़ जाए या कोई पुरानी चिट्ठी किसी के हाथ लग जाए तो आपसी संबंध तक खराब हो सकते हैं, ये एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भागदौड़ आपाधापी में किसी के पास समय नहीं है कि वो बैठकर चिट्ठियां पढ़े, इसीलिए सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और इमोजी का सहारा लिया जा रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि आया एक जमाना था जब डाकिया घर पर आता था तो खुशी की लहर दौड़ जाती थी। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज के समय में अजीब लगेगा लेकिन मैं अभी भी दीपावली, न्यू ईयर, ईद और क्रिसमस के ग्रीटिंग कार्ड्स एनवेलप पोस्ट से स्टैंप लगाकर भेजता हूं और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। कितनी प्यारी बात है, ये पुरानी परंपरा को आपने आज तक कायम रखा हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। और तमाम श्रोता जब सुनेंगे तो जाहिर है कि उन्हें भी इससे प्रेरणा मिलेगी। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक जमाना था जब आई लव यू कहने से पहले लोग खत लिखते थे, उस खत में जल्दीबाजी नहीं होती थी, इंतजार, अपनापन और ढेर सारे एहसास होते थे। ये हमारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, तमाम कमेंट्स को शामिल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुख्य मुख्य कमेंट्स को मैं शामिल करता चला जा रहा हूं और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता जा रहा हूं। अब जरा सोचिए कि दिल की बात कहने की जो झिझक है उसे साहिर लुधियानवी ने इस गाने में किस तरह से पिरोया है। फिल्म का नाम आप बताइएगा और साथ में ये कि क्या कभी आपको भी ऐसा लगा कि आज मुझे कुछ कहना है और फिर लगा छोड़ो अब क्या कहना है, यानी आप संकोच संकोच में रह गए।

कितना प्यारा गाना है और कितना सही एक श्रोता ने लिखा है कि किशोरदा का ये गाना जितनी बार सुनो वही किशोरदा के साथ सुधा मल्होत्रा का नाम भी लिखना चाहिए। किशोरदा और सुधा मल्होत्रा का ये गाना जितनी बार सुनो दिल नहीं भरता है। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि मुझे कुछ कहना था पर सोचते सोचते कई बरस लग गए और वो किसी और की हो गई। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने कहा है कि इस गाने के संगीतकार हेमंत कुमार हैं। और एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि क्या ये फिल्म कहीं देखने मिल सकती है, अब ये तो खोज कर बताना पड़ेगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पढ़ाई के दौरान जब अपने किसी खास दोस्त से कुछ बात कहने का दिल में उमड़ घुमड़ होता था, भाई इन्हीं के शब्द हैं कि आज दिल की बात जरूर कहेंगे लेकिन एन वक्त पर मन कहता चलो कभी दूसरी बार, मेरे साथ ऐसा ही होता रहा है। ये एक श्रोता की बात। और उसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स धड़ाधड़, ये जो मोबाइल की कंप्यूटर की स्क्रीन है ये स्क्रॉल होती चली जा रही है। श्रोता लिख रहे हैं कि हमने कई लोगों के खत भी पढ़कर सुनाए और कुछ लोगों को खत भी लिखे और उन्हें समझाया भी और बातें सुनकर रोए भी वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मैं बचपन से विविध भारती सुनती हूं, मेरी माँ और मेरी दोनों बहनें विविध भारती की फैन हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि आपने पूछ ही लिया है तो आज बता देते हैं, 40 साल पहले की बात है, मेरी दुकान पोस्ट ऑफिस के सामने थी, आज भी है, ससुराल से श्रीमती जी का पत्र आता था, पोस्टमैन मुझे इशारा कर बुलाकर दे देते थे क्योंकि पिताजी जब सामने बैठे होते थे तो शर्माती थी। ठीक है भाई, ये एक बात का खुलासा हुआ। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिनकी बात, एक श्रोता ये लिखते हैं कि विविध भारती ने अब ये मौका दिया है कि हम चिट्ठियों के जरिए अपनी फरमाइशें भेजें तो हम भेज रहे हैं। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि इमोजी के जरिए हम तो अपनी फीलिंग नहीं बता पाते पर हाँ बच्चे जरूर जानते हैं कौन सी इमोजी किस तरह की है और बताते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई इमोजी भेजनी हो और कोई गड़बड़ इमोजी आपने भेज दी हो क्योंकि आपको उसका मतलब ही नहीं पता हो और उसके बाद किसी ने आपको आपकी गलती का एहसास दिलाया और उसके बाद आप बहुत हंसे हो? ये किस फिल्म का गाना है ये आपको बताना है। और तब तक ये जो डिजिटल संदेश है ना, इनमें कई बार ये होता है कि किसी को भेजा जाने वाला संदेश किसी और को भेज दिया जाए। इस तरह का गड़बड़ झाला भी आपने किया है तो बताइए।

0: पूछो ना यार क्या हुआ।
1: जमाने को दिखाना है फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के इतने सारे कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता ये लिखते हैं कि एक बार चश्मा लगाया नहीं था तो पता नहीं चला, कुछ का कुछ इमोजी बीच गया, बाद में समझ में आया। भाई ये चश्मा लगाना कितना जरूरी है ये इस कमेंट के जरिए पता चल गया। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि कभी कुछ का कुछ बिक जाता है तो गिल्टी फील होता है। और इसके अलावा एक और श्रोता उन्होंने भी बिल्कुल यही बात लिखी है। और तो बहुत सारे श्रोताओं ने ये कहा है कि भाई आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और बहुत सारी बातें कहने का मौका आप सभी ने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। फिर मिलेंगे, सुनते रहिए विविध भारती, क्योंकि विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। और दिन की इस भागदौड़ में आपको जहां कहीं भी रहना है विविध भारती के संग रहना है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम, बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती

0: ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
1: कंग्रेचुलेशन इन स्पेस फॉर फैसिलिटेटिंग
2: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
1: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी
0: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
3: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में दो दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
4: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा है।
0: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
4: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
0: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
4: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के

0: किसानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अक्षित वैद्यान।
1: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब

0: हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: पर आप विविध भारती के संघ हैं सदा।

हम रही फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। आज है जानी मानी गायिका मुबारक बेगम की याद का दिन।

मुबारक बेगम कृष्णा बोस सुमन कल्याणपुर की आवाजों में जुआरी फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाये सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
5: हो तो

0: है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते हैं ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
1: देवदास फिल्म का गीत मुबारक बेगम की आवाज, गीत साहिर लुधियानवी का, संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने आज एक नया इतिहास रच दिया है। हैदराबाद के स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित देश के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 ने अपनी पहली परीक्षण उड़ान के तहत श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। मिशन आगमन के तहत यह बहुप्रतीक्षित प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम-1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काईरूट टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह देश के युवाओं की प्रतिभा का ऐतिहासिक प्रमाण है।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: राज्य में मच्छर जनित और जल जनित रोगों के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने पूरे स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने रांची, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम के सिविल सर्जनों को युद्ध स्तर पर मलेरिया नियंत्रण अभियान चलाने के आदेश दिए। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में मलेरिया का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने मनोहरपुर और गोइलकेरा समेत 6 प्रखंडों को हॉटस्पॉट घोषित किया है। बड़ी संख्या में नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी के निर्देश पर डॉक्टरों की विशेष टीमें प्रभावित दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर रक्त नमूने ले रही हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। यह पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज रांची में प्रेस वार्ता कर जेपीएससी पीटी 14 परीक्षा परिणाम में अनियमितताओं का आरोप लगाया। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कट ऑफ अंक सार्वजनिक करने, उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराने और आयोग के कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने की मांग की। उन्होंने 22 जुलाई को जेपीएससी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन की घोषणा की।
2: 17, 18, 19 तारीख को पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है। 20 तारीख को सोशल मीडिया के कैंपेन के माध्यम से हम लोग सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे पूरे प्रदेश के छात्र। 21 तारीख को शाम में सभी जगह मसाल जुलूस का आयोजन किया जाएगा और 22 तारीख को जयपाल सिंह स्टेडियम से सुबह 10 बजे छात्रों का एक रैली चलकर जेपीएससी कार्यालय जाएगा और उनसे सवाल जवाब और हिसाब और किताब मांगेगा।
0: झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राजकीय

0: श्रावणी मेले की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डीएसपी स्तर के 69 पुलिस पदाधिकारियों को देवघर, दुमका और रेल धनबाद में तैनात किया है। प्रतिनियुक्त अधिकारियों में झारखंड सशस्त्र पुलिस, आईआरबी, एसटीएफ और एटीएस के अधिकारी शामिल हैं, जो भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा की कमान संभालेंगे। रांची के दीपाटोली मिलिट्री स्टेशन में आज 135वें डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की प्रतिष्ठित ट्रॉफियों का भव्य शोकेस आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि खेल मंत्री सुदिव्य कुमार और विशिष्ट अतिथि मेजर जनरल सज्जन सिंह मान ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खेल निदेशक छवि रंजन ने बताया कि रांची में पहली बार डुरंड कप का आयोजन हो रहा है।
1: पहली बार रांची इसकी मेजबानी कर रहा है, ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है रांची शहर के लिए और पूरे झारखंड के लिए। हम चाहते हैं डुरंड कप एक माध्यम बने जिसके माध्यम से हमारे कुछ अच्छे प्लेयर झारखंड से निकले नाम है और युवा जो खिलाड़ी है उनके बीच में एफएम के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी, दूरदर्शन के माध्यम से भी उनके बीच में मैसेज गए। तो बिरसा मुंडा स्टेडियम हम लोग काउंटर्स बनाए हुए हैं, 21 जुलाई से वहां पर टिकट मिलने शुरू हो जाए। आपको काउंटर पे आके टिकट खरीदने पड़ेंगे, टिकट निःशुल्क रहेगा, उसमें एक रुपया नहीं लगता।
0: इस अवसर पर डुरंड कप, प्रेसिडेंट्स कप और शिमला ट्रॉफी का रांची के मोरहाबादी मैदान और फिरायलाल चौक सहित प्रमुख मार्गों पर भव्य रोड शो निकाला जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
2: मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
3: मुझे ईद कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज जो पहला गाना है वो आप सभी की फरमाइश पर वरुण जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे, छबड़ा जिला 12 राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो, राजस्थान जोधपुर से अशोक प्रेमलता और सुमित बाणिया, और ये चिट्ठी है पंचगवहाण उबारखेड़ से साहिबराव वेड़कर, अमोल मिस्त्री और आनंद निहां। इसके अलावा उल्हासनगर से पुरुषोत्तम और ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर, और पतरोड़ा गंगानगर राजस्थान से मंगल जनागल राही, रोशनी जनागल, अंकुर और डॉक्टर सुनील जनागल। आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम की पहली पेशकश है मुकेश की आवाज में पूर्णिमा फिल्म का गाना गुलजार के बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म ज्वेल थीफ से है लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र के बोल हैं, सचिन देव बर्मन का संगीत और आप सभी की फरमाइश है। श्री गंगानगर से निकी राम बांसीवाल, जॉनी बांसीवाल और धनराज बांसीवाल, हावड़ा नाजिरगंज नेपाली पारा से हमारे कुछ श्रोता हैं, दीपक, स्वीटी, उषा, ज्योति, किरण, दिर्शा और रितेश लिंबू और इनका पूरा परिवार ये हावड़ा से। इसके अलावा घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, वंदना नगर इंदौर से ललिता नारायण खर्चे, संजना परी खर्चे, गणेश खर्चे, दीपिका, स्वाति और प्रयाग चौधरी और ये फरमाइश है रेखा, पूजा, नंदिनी, बबीता, शोभा रघुवंशी, स्वाति, इन सब की इंदौर से, राजस्थान जोधपुर से इन श्रोताओं का नाम पहले हो चुका है। तो सुनिए ज्वेल की फिल्म का ये गाना।

विविध भारती से आप सुन रही हैं मनचाही गीत कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में श्रोता हमें लिखते हैं तमाम देश भर से चिट्ठियां, और इन चिट्ठियों के जरिए हम ये जान पाते हैं कि कहां कहां श्रोता हमें सुन रहे हैं और कौन कौन से गानों की फरमाइश करना चाहते हैं। ये पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता और रिमझिम गुप्ता की चिट्ठी, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती जासमीन और प्रयागराज, पाहरा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंदूर, चंद्रकांत, प्रीति और छाया, छत्तीसगढ़ बेमित्रा से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, रुद्र कुमार सारथी, वीरेंद्र कांत सारथी और ब्रजकांत सारथी। और इसके अलावा ये फरमाइश जालना से डॉक्टर नामदेव भूतेकर, अशोक भूतेकर, गणेश और कार्तिक भूतेकर। बहुत ही सुंदर लेखनी में श्रोताओं की ये चिट्ठियां। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना, शर्मीली फिल्म का गीत नीरज के बोल।

मुंजाहिद कार्यक्रम की अगली पेशकश जो है वो उसकी फरमाइश आप सभी ने भेजी है। बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, राजाराम नगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन, सलोजी महाजन और चीकू, ये चिट्ठी आई है। खोखरिया बनाड रोड सूर्य नगरी जोधपुर से जबर सिंह फूल वाले, रुद्राक्ष मानू, दिनेश सोढ़ा, देवेंद्र सिंह की और राजेश जैन, अरुणा जैन, दीपक जैन, गौतम, बिट्टू, मट्टू, सारिका, बनिता, मनोज जैन और समता जैन ने हमें लुधियाना के मोहल्लापुर दंबा मंडी से चिट्ठी लिखी है। वारंगा फाटा से वैष्णवी मोरे, अश्विन मोरे, कुंडलीक और पांडुरंग मोरे की चिट्ठी है और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा की चिट्ठी। सितमगढ़ फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और कीजिएगा सितमगढ़ फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल आरडी बर्मन की तर्ज।

और अब कार्यक्रम का अगला गाना जो धरती फिल्म से है, फरमाइश करने वाले श्रोता हैं सुकोडा रोडा कोला से गजानन कुंभार, पद्मावती, विशाल, ज्योति और इनका पूरा परिवार। इसके अलावा बड़वाहा से अयांश रावल, पुष्पेंद्र और इंदिरा रावल, चांदूर बिस्वा से राम भाऊ, लक्ष्मण भाऊ, भारत, शत्रुघ्न नारायण, पंच गवहाण तेलहारा से साहेब राव, अमोल खालिक और इनके साथी, शेगांव से मोहम्मद अनीस मुहाल, मोहम्मद दानिश और मोहम्मद रिजवान। आप सभी की फरमाइश पर ये गाना। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें। हस्त जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन की तर्ज है।

0: इसी के साथ अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम खत्म होता है।
1: मनचाहे गीत।
2: मन चाहेगी।

0: हेलो हेलो नानी।
1: हाँ गुड़िया।
0: अरे हाँ हाँ, मैं गुड़िया ही बोल रही हूँ। मुझे पता था आपका फोन आएगा।
1: हाँ अच्छा अच्छा जल्दी बता, वो आया कि नहीं?
0: अरे रुकिए, मैं खिड़की के पास ही जा रही हूँ, खिड़की तो खोलने दीजिए। बोलिए नानी, आपकी टाइम की सेंस बड़ी परफेक्ट है।
1: नानी किसकी हूँ?
0: आपका फोन आया, मैंने खिड़की खोली और मैं नीचे देख रही हूँ कि भूरे भी अपने ठिकाने पहुँच गया है।
1: अरे गुड़िया, तो खिड़की पर आ भी गई फिर भी सामने वाले फ्लाईओवर का शोर नहीं सुनाई दे रहा।
0: ओ फो नानी, आप भूल गई लगता है, लॉकडाउन चल रहा है भाई, पूरा सन्नाटा पसरा है, शोर कैसे आएगा।
1: अरे बेटा, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि भूरे का डिनर हुआ कि नहीं।
0: आप भी ना नानी, डिनर तो हम करेंगे थोड़ी देर में। उफ, ये मैं क्या बोले जा रही हूँ, वैसे आप ठीक ही कह रही हैं, भूरे भी तो डिनर ही करेगा ना रात में, अब भले दूध भात खाए या रोटी।
1: आज क्या मिल रहा है उसे, क्या लाया बेरा, दूध भात की ब्रेड?
0: आप उसे बेरा क्यों कह रही हैं? अरे वो तो उजला फरिश्ता है, रोज शाम अपने साथ भूरे के लिए पानी और खाना लाता है।
1: देखो गुड़िया, खाना जो बनाए वो खानसामा और जो खाना परोसे वो बेरा ही हुआ ना। अच्छा ये बता, तू उसे उजला फरिश्ता क्यों कह रही है?
0: अरे नानी, वो इसलिए कि या तो वो व्हाइट टी शर्ट पहन के आता है या उसकी टी शर्ट में थोड़ा बहुत व्हाइट कलर होता जरूर है, और काम काम तो वो एंजल जैसा ही करता है, तो हुआ ना उजला फरिश्ता।
1: बड़ी खोज खबर रखती है रे तू उसकी, हैं?
0: हाँ और पता है दादी क्या कहती है, वो कपड़े उजले पहनता है, उसका मन भी उजला है, तभी तो हर रोज भूरे के लिए खाना लेकर आता है। पता है नानी, बारिश हो तो भी आता है, और दादी ने ही उसे ये नाम दिया है उजला फरिश्ता, इनोसेंट एनिमल्स की हेल्प करने वाला एक एंजल।
1: अच्छा अच्छा अच्छा मेरी बातों की दादी, अब ये बता आया कि नहीं तेरा उजला फरिश्ता?
0: अभी तक तो नहीं आया नानी, पता है नीचे भूरे भी इंतजार में बैठा है।
2: अरे गुड़िया बेटा, गुड़िया आजो बेटा, तुम लोग सब लोग खाना खाने के लिए तैयार हो गया, खाना टाइम हो गया।
0: ओके ओके मम्मा। अच्छा नानी, नीचे भूरा खाने की वेट कर रहा है और यहाँ हमारे डिनर की भी कॉल आ गई, तो आपको बाकी रिपोर्टिंग में खाना खाने के बाद दूंगी। ओके बाय।
1: बाय बेटा।
2: सब लोग आ गए।
0: वाओ रायता, माय फेवरेट। मम्मी और ये इतने बड़े डोंगे में आपने क्या ढक के रखा है? मैं देख लूं खोल के?
2: हाँ हाँ देखो देखो।
0: उफ, ये क्या, ये तो चावल दिख रहे हैं
2: जी,
0: और कैरेट, कैप्सिकम भी, ओ नो बीट रूट, और वो भी इतने चिपके चिपके से। मम्मी ये बिरयानी है या खिचड़ी, वो भी बीट रूट वाली, या कौन खाएगा?
2: गुड़िया लॉकडाउन में खाना मिल रहा है, शुक्र मनाओ।
3: वाह, ये चावल तो मेरे हिसाब से बने हैं, चबाने की जरूरत नहीं है।
4: लाइए भाई, हम भी तो चखले थोड़ा सा।
0: मम्मी आप कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी?
2: जिसने बनाया है ना उन्हीं से पूछो तुम।
0: ओ नो, दैट मींस आज कुकिंग फिर पापा ने की है?
2: यस।
3: जिससे जो आता है वही तो करेगा, तेरे बाप से झाड़ू पोछा नहीं लगता, न ये कपड़े धो पाता है न बर्तन, अब तेरी माँ

0: कितना खटेगी। बेचारा खाना बना देता है, वरना मर्दों को सिर्फ हुक्म देने की आदत होती है। हाँ
1: अम्मा, एक तुम ही हो मेरी पार्टी में बस। हाँ। ये गुड़िया तो विरोधी पार्टी में चली गई लगती है, इसे तो सिर्फ गलतियां निकालना आता है।
2: क्या पापा, अरे आप बस करिए ना गुड़िया बेटा, लाओ मैं तुम्हारे लिए पराठा बना लेती हूँ, आ बेटा।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, विरोधियों और असंतुष्टों को अपनी तरफ करने का अच्छा पैतरा है।
2: जी हाँ वो तो है।
1: खाओ खाओ, पराठे खाओ, वजन बढ़ाओ, हमें क्या है। बाद में मत कहने की पापा सूर्य नमस्कार नहीं हो रहा है।
2: तो पापा शुरू बस करिए, है नहीं तो एक दिन खा लेने से कुछ नहीं होता।
1: अच्छा सच में?
2: हाँ
1: तो एक हमारे लिए भी बना दो।
2: अम्मा अम्मा देख लीजिए, अब आप देख रही है ना।
0: हाँ।
2: अपने लाडले से अपना खुद का बनाया खाया नहीं जा रहा है खाना, और आप उन्हीं की साइड ले।
0: अरे बहू, हम सब एक ही साइड में हैं, तू फिकर मत कर। अरे गुड़िया, ए गुड़िया तू ये बता, तेरी नानी क्या कह रही थी रे?
3: अरे दादी पता है उनको भूरे की इतनी फिकर होती है, इतनी फिकर होती है ना, कि रोज शाम को जब तक उसके खाने की पूरी रिपोर्ट नहीं ले लेती उन्हें चैन ही नहीं पड़ता।
0: अच्छा तो तू उन्हें पूरी खबर देते है?
3: और नहीं तो क्या, भूरे की स्टोरी है ही इतनी वंडरफुल।
0: अच्छा कैसे? लेकिन
3: आपको पता तो है सारी कहानी नानी।
0: अरे पर मैं भूल जाती हूँ ना रे, तू अपने नानी को जैसे प्यार से सुनाती है ना, वैसे ही जरा प्यार से मुझे भी सुनाना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है रे।
3: अच्छा तो सुनिए, वो हमारी लाइफ में मेरे कमरे की खिड़की से आया।
0: खिड़की से आया? कमरे की खिड़की से? अरे हम 12वीं मंजिल पर रहते हैं, खिड़की से कैसे बुलाया?
3: ओहो दादी आपको कहानी सुननी है ना।
0: हाँ हाँ सुना सुना सुना।
3: हाँ तो खिड़की के नीचे, ठीक नीचे वो जो फ्लाईओवर है ना,
0: हाँ
3: वहाँ वो रोज शाम को आता है। दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, रात को कहाँ सोता है ये भी नहीं पता।
0: अरे तो तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की?
3: ओहो दादी लॉकडाउन में नीचे उतरना अलाउड नहीं है, तो फाइंड आउट कैसे करूँगी? हम तो बस खिड़की से ही देखकर खुश हो लेते हैं।
0: अरे इसमें खुश होने की क्या बात है?
2: अम्मा अम्मा आपको कहानी सुनना है ना, तो बस सुनिए जो कह रही है गुड़िया।
0: हाँ हम तो सुन ही रहे हैं बहू, सुन रहे हैं।
3: हाँ तो शाम को जब डॉगी फ्लाई ओवर पर पहुँच जाता है ना, तो थोड़ी देर में एक पर्सन आता है, वही आपका उजला फरिश्ता।
0: हाँ।
3: और भूरे को कुछ खाने को देता है
0: रोज,
3: और नहीं तो क्या।
0: अच्छा
3: हम तो डेली देखते हैं और इसी की रिपोर्टिंग तो नानी को करते हैं।
1: अम्मा इस कुत्ते को पहली दफा गुड़िया और इसकी माँ नहीं देखा था, अब देखा क्या था, मदद की शुरुआत भी इसी ने की थी। अम्मा
3: हाँ रहता हमसे दूर है, लेकिन है तो हमारे फैमिली मेंबर जैसा ही।
0: हाँ हाँ कुछ तो बताया था तुम लोगों ने, अब याद नहीं।
1: गुड़िया याद करो यार, वो रात कैसी थी है?
2: हाँ।
1: हम घंटों खिड़की से देखते रहे, लैंप पोस्ट के आसपास वो कभी इधर उधर चलता, कभी बैठ जाता, कभी खड़ा हो जाता, खड़ा रहता तो न जाने कितनी देर तक एक ही जगह पर खड़ा रहता। लॉकडाउन शुरू हुए अभी, क्यों अभी 3-4 दिन हुए थे।
2: हाँ, बस इसी समय की तो बात है।
1: दहशत फैली हुई थी, ट्रैफिक बहुत कम था, फिर भी कोई स्कूटर वाला निकलता तो कुत्ता उसकी ओर लपकने लगता। अरे साफ लग रहा था कि वो किसी का सहारा ढूंढ रहा है।
2: हाँ ये बात तो है, लेकिन कितने डरावने दिन थे। दुकान बंद, दफ्तर बंद, लोगों का आना जाना बंद, और मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि भाई मेरा किचन कैसे चलेगा। और हाँ देखिए आप भी तो जानते ही हैं, हम लोग कभी राशन तो जमा करके हमने रखा ही नहीं था, तो चिंता लगी।
3: ओ मम्मा भूरे की बात बताइए ना।
2: हाँ हाँ अब खिड़की से देखते देखते अम्मा कई घंटे बीत गए। एक तो ऐसी ये सुनसान जगह, पैदल कोई आता ही जाता नहीं, और दोनों तरफ इतने बड़े दानवादार टावर, और बीच में इतना चौड़ा 4 लेन वाला फ्लाईओवर, इतने बड़े महानगर के इस फ्लाईओवर के दोनों तरफ के टावरों में अम्मा 1000-2000 फ्लैट तो होंगे, पर इनके ठीक नाक के नीचे सूखी नदी जैसा फ्लाईओवर, जहां न आदम चाट। और पहले तो दिन भर बरसाती नदी की तरह ट्रैफिक से भरा रहता था, पर लॉकडाउन में तो जैसे भूतों का डेरा बन गया है। हमें तो लग रहा था कि ये बेचारा पिद्दू सा तो है, इतनी अकेली जगह पे भटक कर पहुंच गया, और अब उसे यही नहीं पता चल रहा था क्यों जी कि कहाँ जाए, कैसे करे और कैसे बस्ती में पहुंचे।
0: ए बहू तू भी क्या क्या बोले जा रही है।
2: हाँ अम्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप जरा सोचिए, सोचिए जरा सा, ये 30-30 मंजिला पर

0: पर्वत खड़े हैं धरती की छाती पर इनके अंदर की दुनिया कोई और ही है। इन्हें जमीन नहीं दिखाई देती, बस काम से काम रखते हैं इसमें रहने वाले। अम्मा
1: बहू, हम भी तो ऐसे ही टावर में रहते हैं ना।
0: हाँ तो अम्मा, हम भी तो उनके ही जैसे हैं ना, हम भी तो सिमटे रहते हैं।
1: हाँ।
0: पर उस दिन, हाँ अम्मा, उस दिन न जाने कैसे हमारी भी नजर नीचे झुक गई, वरना दोनों तरफ के टावर में लोग ही लोग हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिखाई पड़ा, बस हमें दिख गया ये बेचारा।
2: अरे हो सकता है और भी लोगों ने देखा हो, पर हिम्मत ना पड़ी हो कुछ करने की। अब तुम्हें याद है ना, हम भी हाँ। तो घंटों देखते रह गए थे उसको।
0: हाँ वो तो है, लेकिन हमें भी तो नहीं समझ में आ रहा था ना कि क्या करें, कैसे करें, कैसे इस पिल्ले को पुचकारे, बचाए और कैसे लेके आए। और याद है ना यहाँ से कैसे हमने ब्रेड का टुकड़ा फेंका था।
2: हाँ।
0: लेकिन वहाँ कैसे पहुँचता, इतनी दूर था।
2: तब अम्मा हमारी इस गुड़िया ने ही आइडिया दिया। हाँ।
1: क्या, घर लाने का?
2: अरे नहीं अम्मा, घर लाए होते तो मालूम नहीं चलता क्या। अरे जाकर उसे कुछ देने का, और इसने मुझे अकेले जाने भी नहीं दिया, क्यों याद है ना तुम्हें?
0: हाँ, हाँ, हाँ,
2: गुड़िया उस रात क्या हुआ था याद है?
3: पापा, पापा, पापा!
2: अरे क्या है बेटा, क्या हो गया?
3: पापा जल्दी इधर आइए, जल्दी आइए तो।
2: अरे क्या है बताओ
3: पापा,
2: तो
3: पापा देखिए ना, वो नीचे बेचारा कितना टायर्ड और हंगरी लग रहा है। आई थिंक ही इज लॉस्ट।
2: हाँ भूखा और परेशान है, लगता कहीं से भटक के आ गया।
3: यहाँ से देखते रहने से कुछ नहीं होगा, वी मस्ट डू समथिंग।
2: अरे हम क्या कर सकते हैं भाई?
3: पापा क्या हम उस बेचारे पपी को कुछ खाने को दे आए, प्लीज पापा?
2: इस समय लॉकडाउन में?
3: प्लीज पापा।
2: बेटा कर्फ्यू लगा हुआ है, रात का टाइम है, नहीं जा नहीं सकते।
3: अरे पापा
0: ठीक कह रहे हैं,
3: कुछ नहीं होगा मामा, कुछ नहीं होगा। अब देखिए तो पता नहीं कितने दिन से भूखा है, बेचारा मर जाएगा।
2: देखते हैं, भूखा तो है, सोचने दो।
0: हाँ।
2: अच्छा एक काम करते हैं, मैं चला जाता हूँ। हाँ, कुछ हाँ, दे आऊंगा ठीक है। तुम एक काम करो, कुछ ब्रेड व्रेड पड़े हो तो दे दो कुछ।
0: हाँ हाँ मैं बिल्कुल देती हूँ। मैं ऐसा करते हैं कि पानी भी ले जाइए और ये बिस्किट भी ले जाइए, है ना।
2: हाँ।
0: और लेकिन रुके रुके रुके, ऐसा करती हूँ मैं रोटी बना के लाती हूँ फटाफट। है लीजिए ये सामान, हमने सब थैले में रख दिया ठीक है। ये देखिए पानी है ना, और रोटी, दोनों चीजें हैं, और ये सामान रख दिया है, उसको पानी वानी पिला दीजिएगा। और मास्क कहाँ है आपका?
2: अरे हाँ लगा लिया है।
0: सैनिटाइजर रखिए भाई।
2: अरे रखा है भाई।
3: अरे रुकिए रुकिए, अरे मुझे भी तो जाना है, मुझे उसे पास से देखना है।
0: भाई तुम वहाँ क्या करोगे?
2: अरे कह रही है तो जाने दो ना यार,
0: कमाल है आप तो।
2: तुम डरोगी तो नहीं ना?
3: नहीं नहीं पापा बिल्कुल नहीं।
2: हाँ चल चल चल,
0: मतलब डरोगी नहीं, ये क्या है
3: मम्मा, प्लीज।
2: चलो चलो चलो, लिफ्ट बुलाओ और तुम दरवाजा बंद कर लेना अंदर।
3: हाँ हाँ पापा आइए।
4: कृपया दरवाजा बंद।
2: अच्छा ठीक है, दरवाजा ठीक से बंद करना।
0: ठीक है ठीक है, ध्यान रखना अपना।
4: कृपया दरवाजा बंद कीजिए।
0: अम्मा
1: हम्म,
0: ये लीजिए, आप ऐसा करिए दवा ले लीजिए सोने के पहले वाली, और ये हल्दी वाला दूध भी पी लीजिए।
1: बहू क्या बात है, बड़ी हड़बड़ी में दिख रही है, बाहर ये आवाजें कैसी आ रही थी बहू?
0: अरे वो बाप बेटी नीचे गए ना अम्मा। अरे अम्मा आप दूध पी के सो जाइए
1: इतनी रात को। लेकिन क्या हुआ, सब ठीक तो है ना बहू?
0: अरे अम्मा आप फिक्र मत कीजिए, दूध पीजिए और सो जाइए, वो लोग आ जाएंगे।
1: पता नहीं यहाँ क्या क्या चलता रहता है।
0: मैं सोचती हूँ खिड़की के पास जाकर देखती हूँ, पता नहीं पहुंचे कि नहीं वो लोग। हाँ तो पेड़ बीच में आ रहा है, लगता है अभी पहुंचे नहीं। क्या करूँ, बड़ी चिंता। मैं सोचती फोन कर लेती हूँ। हेलो, अरे तो फोन ही नहीं उठा। हेलो हेलो गुड़िया।
3: हेलो हाँ मम्मा,
0: तुम लोग अभी तक पहुंचे ही नहीं।
3: अरे मम्मा उड़कर थोड़ी ना पहुंच जाएंगे, पैदल चल रहे हैं भाई। चा? और पता है मेन गेट पर सिक्योरिटी वाले बाहर ही नहीं जाने दे रहे थे।
0: क्यों भला?
3: कितना समझाना पड़ा उन्हें, और आज बाहर हवा भी चल रही है।
0: हवा?
3: और सड़क पर बहुत सारे डॉग्स हैं मम्मी, सब इधर से उधर दौड़ रहे हैं। अच्छा आप फोन रखिए, आप खिड़की पर ही है ना?
0: हाँ हाँ मैं यही हूँ।
3: हाँ तो हम पहुंचेंगे तो आपको दिखे जाएंगे, आप बस वेट करिए।
0: अच्छा
1: बहू बहू आ गए वो लोग क्या?
5: अरे अम्मा आप यहाँ आ गई, अम्मा आप फिक्र क्यों कर रही हैं, वो लोग आ जाएंगे, आप आराम कीजिए।
1: अरे आराम कहाँ से होगा बहू, इस कोरोना का ऐसा डर बैठ गया है कि सपने भी बुरे बुरे आते हैं। इतना डर तो आजादी मिलने के दिनों में भी नहीं लगा था।
5: आजादी? अम्मा आजादी मिलने में डर क्यों भला लगा, और मतलब आप तो उधर से आई भी नहीं थी फिर।
1: आजादी मिलने का नहीं, हाँ? जो मारकाट मची थी उस वक्त उसका डर, हम कहीं से उजड़ कर नहीं आए थे।
5: ओ,
1: पर आतंक ऐसा था कि अब हम क्या कहें।
5: अम्मा आपकी उम्र क्या थी उस समय?
1: अरे वही 5-6 साल की रही होंगी। हम बच्चों को घर में बंद कर दिया गया था, सबको डर था कि लड़कियों को उठा ले जाते हैं, पर आज का वक्त ये तो बहुत ही डरावना है। किसी को हम छू नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, सैर करने तक हम नहीं जा सकते।
5: अरे अम्मा वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको क्या, आप तो पहले भी कहीं सैर वैर करने नहीं जाती थी भाई।
1: पर डर का साया तो 2400 घंटे है ना, और ऊपर से ये मुआ टीवी मरीजों की गिनती, मरने वालों की गिनती ऐसे बताता रहता है जैसे मौत का खेल चल रहा हो। इतने बीमार पड़ गए, इतने मारे गए।
5: अरे अम्मा अम्मा अम्मा अम्मा आप घबराइए मत, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा शांत रहिए।
1: हाँ।
5: मैं खिड़की से देखती हूँ कि
1: हाँ,
5: वो लोग पहुँचे कि नहीं पहुँचे, है ना?
1: हाँ हाँ देख देख,
5: ठीक है,
1: आ जाए तो जरा मुझे बता देना।
5: गुड़िया गुड़िया पहुंच गए तुम लोग? हाँ हाँ मैं खिड़की की तरफ ही आ रही हूँ। हाँ लो मैं आगे खिड़की पर, अब रुको, हेलो, अरे फोन मत बंद करना। हाँ हाँ हाँ मैं देख रही हूँ। अरे पर आवाज तो बेटा फोन पे ही सुनाई देगी ना। अरे अम्मा आप, हाँ लो दादी भी तेरी यहीं आ गई। अम्मा देख रही हैं, ये लोग नीचे ही खड़े हैं, पहुंच गए उस बेजुबान प्राणी के पास।
1: हाँ बहू एक मिनट, मुझे भी तो आगे आने देना, खिड़की के पास आने दे जरा।
5: हाँ अम्मा ये हम कुर्सी यहाँ रख देते हैं, आप यहीं बैठिए, आइए आइए बैठिए। मैं फोन को भी स्पीकर पर ऑन कर देती हूँ ताकि अम्मा आप लोग को भी ना इन लोगों की आवाज सुनाई दे, सब बातें पता चल जाए। गुड़िया गुड़िया सुन, पहले उसे पानी पिला।
3: हाँ मम्मा। मम्मा आप देख रहे हो?
5: हाँ?
3: हम जो कटोरा लाए थे ना, हाँ? मैंने उसमें पानी डाल दिया। मम्मी देखो ना कैसे पूंछ हिला रहा है और डर भी रहा है। आ गया आ गया, पानी के कटोरे के पास आ गया वो।
1: अरे लग रहा है रोटी भी खिला रहे हैं।
5: अब पर अम्मा रोटी सूंघ के तो पीछे हट गया।
1: अरे डर रहा होगा ना शायद।
3: मम्मा इसे ना बहुत प्यास लगी है, आप देख रहे हो कितने तेज तेज पानी पी रहा है।
5: हाँ, पता नहीं कब से प्यासा था। और गुड़िया मेरा तो मन कर रहा है कि उसे पुचकारूं, प्यार करूं, छोना सा तो है।
2: पुचकारने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है मैडम, तुम लोग आसमान में टंगे हो।
3: आसमान नहीं स्वर्ग में बैठे हैं।
1: बड़ा स्वर्ग स्वर्ग में बैठे हैं। अरे कैदी है कैदी माचिस की डिबिया में। हाँ।
2: खुद को खुशकिस्मत समझो अम्मा, लाखों करोड़ों में मिलती है ये माचिस की डिबिया।
5: भाई कमाल है, इतनी दूर खड़े हैं फिर भी चैन नहीं है, बस बहस करा लो इनसे जब चाहो तब।
2: बहस नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बयान कर रहा हूँ।
5: अच्छा पहले आप उस जो बेजुबान प्राणी के लिए गए ना उसकी सेवा करिए, और जरा फिर ये बताइए इतनी देर कहाँ भटक रहे थे आप दोनों? 15 मिनट का रास्ता, पूरे 2 घंटे लगाए आप लोगों ने।
2: जमीन आसमान का फर्क यही होता है मैडम, समझे आप? मतलब हम समझा दें आपको जमीन आसमान का मतलब, यहां जहां हम खड़े हैं वहां पहुंचने के 2 बड़े मोड़ हैं
5: जी।
2: जब हम चलने लगे तो पहले सुनसान रास्ता आया, डरावना, अंधेरा, तेज हवा चल रही थी, कागजों प्लास्टिक और तमाम चीजों का कचरा उड़ने लगा, गलियों से कुत्ते निकलकर भौंकने लगे, छीना झपटी करने लगे, अजीब सा अंधड़ चलने लगा, कूड़े कचरे की बारिश होने लगी, रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था।
5: क्या कह रहे हैं आप, हमें तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ, न हवा न बारिश।
2: कह तो रहा हूं जमीन पर हालात कुछ और ही होते हैं।
5: अरे क्या ऐसा है बोले जा रहे हैं, आप गुड़िया को फोन दीजिए।
1: अरे बहू क्यों गुस्सा कर रही हो?
5: अरे अम्मा आप रुकिए, गुड़िया गुड़िया ये पापा तुम्हारे क्या कहे जा रहे हैं?
3: हाँ मम्मा सच में बहुत डरावना एक्सपीरियंस था।
5: हाँ?
3: सुनिए तो, फिर पहला मोड़ आया तो वहाँ बहुत लोग थे, लोग क्या थे, प्रोसेशन जैसा ही था, एक जुलूस। लोग, बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सिर पर गठरियां उठाकर चले जा रहे थे, पैदल, साइकिलों पे, साइकिल रिक्शा पे, किसी भी तरह बस चले जा रहे थे। रदर दे वर रनिंग, यू नो, रनिंग अवे फ्रॉम सिटीज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट ममा, टू देयर नेटिव प्लेसेस। ममा, दे वर एस्केपिंग, माइग्रेटिंग।
5: अरे ये सब तो टीवी पर आता है, प्रवासी मजदूर अपने घर को लौट रहे हैं और क्या।
3: हाँ, टीवी जैसा ही पर एकदम रियल, लाइव, जिंदा। एक बच्चा सिर पर बैग उठाकर चला जा रहा था।
5: अच्छा,
3: मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने रिप्लाई ही नहीं दिया, भाग गया। पता है मम्मी, एक अंकल थे बूढ़े से, नंगे पैर ममा।
5: अच्छा,
3: और उनके पैरों में चोट लगी थी। पता है ममा कितना ब्लड आ रहा था, और पापा को इतना वरिड मैंने कभी नहीं देखा मम्मी।
5: अच्छा,
3: जितने वो उस सीन को देखकर हुए। एंड यू नो
5: क्या,
3: यू नो पापा ने क्या किया?
5: क्या?
3: पापा ने अपने स्लीपर्स उन अंकल को दे दिए ममा।
5: अच्छा,
3: अब देख सकते हो पापा उसके बाद नंगे पैर चल रहे हैं।
5: हैं? हाँ हाँ, हैरान, सच में नंगे पैर ही हैं। अरे अम्मा, अम्मा देखिए तो जरा सा, इन्होंने तो
6: हुआ?
5: अरे अम्मा ये देखिए तो, इन्होंने स्लीपर अपनी दे दी किसी को।
6: अरे
5: हाँ, इनके पैर दुख रहे होंगे गुड़िया।
6: कोई बात नहीं, कोई बात।
5: अरे गुड़िया, गुड़िया पापा को फोन दो। हेलो, हेलो।
2: हाँ हाँ, बोलो क्या हुआ।
5: अरे आप नंगे पैर हैं, सड़क चुभ रही होगी आपको।
2: नहीं नहीं, आज तो जमीन को फील कर पा रहा हूँ। जानती हो, जिंदगी को इस तरह कभी नहीं देखा। जिंदा बच्चा रहने की इच्छा का परम रूप, चरम रूप, जिजीविषा शायद इसी को कहते होंगे। ये लोग इस अंधेरे वक्त में दिखे, इन्हें एहसास हो गया कि इन्हें कोई नहीं बचाएगा, न साहूकार, न सेठ, ना सरकार, ना अमीर, ना गरीब। खुद ही खुद को बचाना होगा, अपने ही पैरों पर भरोसा करना होगा। ये लोग न जाने कब से चल रहे हैं, और इन लोगों को न जाने कब तक चलते रहना है।
5: ये कौन लोग हैं?
2: यही तो विडंबना है। ये लोग हमारे ही शहरों में थे, हमारे शहर इनके ही बनाए हुए थे, ये शहर इनके चलाए ही चल रहे थे, पर ये आज तक कहीं दिखाई नहीं दिए। हमारे लिए इनका अस्तित्व ही नहीं था। ये हमारी ही तरह हाड़ मांस के जिंदा इंसान है।
5: हाँ, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो लगता है आपने कोई सपना देख लिया है, और वो भी जागते हुए।
2: ये हमारे जैसे लोगों के लिए सपना ही है, कल्पना से भी परे, पर हकीकत। जमीन पर उतरकर ही इसे जाना जा सकता है। अरे जानती हो, हमारा डर तो दाल रोटी के साथ सब्जी न मिलने का डर है।
5: हाँ।
2: काम वाली नहीं आएगी तो उसके बगैर काम कैसे चलेगा, इसका डर है। पर पता है
5: क्या?
2: इनका डर भूखों मर जाने का डर है। इन्हें यही डर है कि जिंदा बचेंगे कि नहीं। इन लोगों ने इसे भोगा है, मैंने नहीं भोगा, सिर्फ करीब से देखा है, और तहल गया हूं, अंदर तक तहल गया हूं।
3: सच पापा, बड़ी वियर्ड रात थी वो। ओह माय गॉड, आज भी याद करके गूज़बम्स हो जाते हैं।
1: क्या गूज हो जाते हैं? क्या बक रही है?
2: अरे अम्मा, रोंगटे खड़े होने को अंग्रेजी में गूज बम्प कहते हैं। अरे अम्मा, तुम इसे कभी कभी अपनी भाषा भी समझाया करो यार।
1: हाँ हाँ
3: पापा, लेकिन उस रात पप्पी को जो पानी पिलाने का एक्सपीरियंस था ना, वो मेरी लाइफ का दी बेस्ट एक्सपीरियंस था।
1: हाँ, तभी तो तुमने ढिंढोरा पीट दिया, हाय हाय अनाथ कुत्ता है, मर जाएगा।
3: अरे नहीं दादी, मैंने तो बस सोशल मीडिया पर शेयर किया था, मुझे डर लग रहा था कि हम इतनी दूर रोज रोज थोड़ी ना जाएंगे उसे खाना खिलाने।
1: हाँ, तो इसीलिए तो आ गया ना तुम्हारी मदद करने के लिए वो उजला फरिश्ता।
3: सच्ची? और तब से देखो वो पपी, अरे जिसे आप भूरे कहती हैं।
1: हाँ।
3: दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, लेकिन रोज शाम को फ्लाईओवर पर आ जाता है, ठीक हमारी खिड़की के नीचे।
1: हाँ।
3: और आपको पता है एक लेन जो खाली रहती है ना, वहीं पर, और वो पर्सन वहीं आकर जॉगिंग करता है, पहले भूरे को खा

0: खाना खिलाता है, फिर अपना मोबाइल चेक करता है, फिर 10 चक्कर यहाँ से वहाँ लगाता है। और पता है ये भूरे लाल उसके आगे पीछे नाचते कूदते रहते हैं। पता है दादी, बारिश हो जाए ना तो भी इन दोनों की रूटीन नहीं टूटती।
1: अरे अम्मा, जब से ये भूरे को इन्होंने क्या देख लिया, उसकी सेवा क्या करने लगी, बस सोते जागते बस भूरे की कहानी, भूरे की कहानी। दादी को सुनाएंगी, फिर नानी को सुनाएंगी। भाई
2: अरे तुमको याद नहीं उस दिन पेरेंट्स मीटिंग के बाद जब तुम हाँ। वापस आई तो तुम्हारे साथ सहेलियां भी आई थी तुम्हारी।
1: बिल्कुल,
2: उनको उनको दिखाने बैठ गए, उनको बताने लगी, उनको ले गई अपने साथ कि चलो हाँ। हमारे साथ हमारे भूरे को देखो।
1: और वो तो उसके संग संग उजले फरिश्ते को भी देखो। भाई ठीक है, बेजुबान प्राणी की सेवा तो हम सबको करनी ही चाहिए।
2: हाँ बिल्कुल सही बात है, प्राणी की सेवा करना परम धर्म है। और ये जो इस समय कोरोना का समय चल रहा है, इसमें ये सारी चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये बेजुबान जानवर आखिर हमारे ही तो भरोसे हैं, तो ये करना बहुत जरूरी
1: है। बस बस बस शुरू हो गया ये, इनको मौका मिला गुड़िया और तुमने मौका दिया और पापा शुरू हो गए। अच्छा सब लोग बस करो और गुड़िया चलो आओ, सब पराठे खा लो, आ जाओ आ जाओ।
0: क्या मम्मी पापा आप भी ना, अरे भूरे तो हमारा हीरो है, आप लोग भी ना। हाँ। ओ नो, देखो ना बातों में तो मैं भूल ही गई, आज भी आ गया होगा अब तक और नानी भी मेरा वेट कर रही होंगी। अरे मुझे उन्हें रिपोर्ट देनी है ना भाई, मैं तो जा रही हूँ खिड़की पर। हेलो हेलो नानी।
3: गुड़िया,
0: अरे आप जाग रही हैं?
3: हाँ बेटा, तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ।
0: इज इट? क्या बात है,
3: जल्दी जल्दी बता, क्या वो आया, क्या क्या कर रहा?
0: हाँ हाँ नानी, अब सुनिए तो इत्मीनान से, मैं आपको पूरी रिपोर्टिंग दूंगी, पूरी गुड़िया रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम खिड़की, आप बस सुनते जाइए। हाँ तो नानी, मैं देख रही हूँ कि उजला फरिश्ता आ चुका है, उसने अपने बैग से कुछ निकाला। अब वो रोटी है या ब्रेड ये तो पता नहीं चल रहा है यहाँ से, लेकिन भूरे लाल भी जल्दी जल्दी खा रहे हैं इतना दिख रहा है। अब खाना खत्म, भूरे लाल का और भूरे की मस्ती शुरू। उजला फरिश्ता अब तेजी से सैर कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, और ये भूरे लाल कभी उसके आगे कभी उसके पीछे उछल कूद कर रहे हैं। नानी आप बस सुनती चलिए। और ये मैं क्या देख रही हूँ, ओहो भूरे ने उछल कर फरिश्ते की पैंट पकड़ ली और पैंट छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए उजला फरिश्ता। ओह मैं कह सकती हूँ नानी कि भूरे बड़ा खुश है, और नानी भूरे खुश है तो मैं खुश हूँ, और मैं खुश हूँ तो नानी आप खुश हैं, है कि नहीं?
3: बिल्कुल खुश।
0: तो नानी आज की रिपोर्टिंग के बाद अब तो आपको नींद आएगी ना?
3: हाँ बेटा जरूर आएगी।
0: तो ठीक है, आज आप सो जाइए आराम से इत्मीनान से, मैं कल शाम को आपको फिर कॉल करके रिपोर्ट करूंगी। ओके गुड नाइट नानी, बाय बाय।
2: गुड नाइट गुड़िया, बंद करो बेटा फोन अपना, इधर आओ, देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। तुम्हें खिचड़ी टाइप बिरयानी अच्छी नहीं लगी थी ना?
0: हाँ।
2: तो जानती हूँ मैंने क्या किया?
0: क्या बताया पापा?
2: दूध लाया।
0: हाँ?
2: दूध तो मिल रहा है लॉकडाउन में,
4: लेकिन मुझे दूध अच्छा नहीं
0: लगता।
2: मालूम है मुझे, इसीलिए मैंने उसका छेना बनाया।
0: क्या बात है।
2: और छेने के बाद उसके संदेश बनाए।
0: इज इट
2: बंगाली संदेश?
0: ओ वाओ पापा, मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
2: तो मीठे मीठे संदेश खाओ, और हाँ अपनी मम्मी को भी खिला देना, हमेशा कहती ना कि यही खाते रहते हैं हमेशा।
0: वाओ यू आर ऑसम, यू आर ग्रेट।

अभी आप सुन रहे औरधे अनूप सेठी का लिखा नाटक जमीन आसमान। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र सहित परिचय इस प्रकार था: माँ रेणु चतुर्वेदी, गुड़िया आकांक्षा सिंह, दादी ममता सिंह, नानी अनुश्री पाठक और पापा अमरकांत दुबे। संगीत संयोजन और तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी, निर्देशक अमरकांत दुबे।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने आज एक नया इतिहास रच दिया है। हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित देश के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 ने अपनी पहली परीक्षण उड़ान के तहत श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। मिशन आगमन के तहत यह बहुप्रतीक्षित प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। राज्य में मच्छर जनित और जल जनित रोगों के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने पूरे स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने रांची, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम के सिविल सर्जनों को युद्ध स्तर पर मलेरिया नियंत्रण अभियान चलाने के आदेश दिए। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। यह पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। चतरा जिले के टंडवा प्रखंड के सिसई गांव निवासी वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार को वर्ष 2026 का IEEE यंग इंजीनियर अवार्ड प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें कोयम्बटूर में आयोजित 39वें राष्ट्रीय धातुकर्म एवं पदार्थ अभियंता सम्मेलन में इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट अनुसंधान और नवाचार के लिए दिया गया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के कानून व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर आज गिरिडीह में राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सिंडिकेट और दलालों का प्रभाव बढ़ा है तथा कोयला सहित अन्य खनिजों के अवैध कारोबार पर सरकार प्रभावी रोक लगाने में विफल रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज रांची में प्रेस वार्ता कर JPSC PT 14 परीक्षा परिणाम में अनियमितताओं का आरोप लगाया। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने 22 जुलाई को JPSC कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन की घोषणा की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: शारदा वाला कैरेक्टर तो लिया ही है, जो वो एक गांव की लड़की है जो बिक रही है, और उसके साथ मैंने एक कैरेक्टर लिया है जो पास्ट की लड़की है, बुद्ध पीरियड की लड़की है, उससे पहले की लड़की है, जो तब की है जब भी बिकती थी महिलाएं, स्त्री। तो वो उसकी आत्मा इससे मिलती है, पास्ट और प्रेजेंट को मैंने दोनों
4: को मिलाया है।
3: और वो कहती है मैं तब तक मुक्त नहीं होंगी जब तक तू मुक्त नहीं होगी, तू अपनी मुक्ति देख। तो वो उसको वो प्रेरणा देती रहती है। तो इस तरह का सिनेमा बनाने का सौभाग्य मिला मुझे और काफी इंटरनेशनल इसको अप्रिसिएशन भी मिला फिल्म को,
4: काफी चर्चा हुई इन फिल्मों की। और इसलिए मैं आपसे ये भी जानना चाहती थी कि मिस्टर कबाड़ी और द वीकली बाजार जैसी ऑफ बीट फिल्मों का आपने निर्देशन किया, तो क्या अनुभव रही ये फिल्में बनाने के?
3: हार्ट द वीकली बाजार का तो अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि सारे कलाकार बहुत मन से काम कर रहे थे। दिव्या दत्ता थी, अर्चना पूरन सिंह थी, यशपाल शर्मा, मुकेश तिवारी, ये सब लोग थे, और म्यूजिक भी बहुत अच्छा था। अशोक चक्रधर ने गीत लिखे थे, अली गनी जो है पद्मश्री हैं अभी, उन्होंने संगीत दिया था, तो वो तो बहुत ही अच्छा रहा। मिस्टर कबाड़ी जो थी वो कॉमेडी फिल्म थी जी। लेकिन एक गरीब आदमी जब अमीर हो जाता है तो उसकी क्या त्रासदी होती है। गरीब जब तक रहता है तो कोई दुख नहीं है, अमीर होते ही सारे दुख शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को उन अमीरों में शामिल देखना चाहता है, और जो अमीर है वो अपनी क्लास कॉन्शियस है, इलीट क्लास वालों में रहना चाहता है, वो क्लब में जाना चाहता है, और वो लोग उसको मुंह नहीं लगाते, पैसा है। लेकिन उसमें भी ये कहने की कोशिश की है कि मतलब आप जिस क्लास से हैं, पैसा आ जाए तो उसको सुविधा के लिए होता है पैसा, और उससे कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं, आप जहां हैं वहां बहुत खुश हैं।
4: सबसे बड़ा संदेश,
3: सबसे बड़ा जी।
4: तो ये बड़ा अच्छा आपने कंट्रास्ट इस तरह का उस फिल्म में लिया था। तो मुख्यधारा की मसाला फिल्मों से अलग ही फिल्में थी, दशकों तक कहाँ तक पहुंची होंगी ये फिल्में, आप क्या सोचती एक निर्देशक होने के नाते?
3: अब तो ओटीटी आ गया है और ओटीटी पे है तो काफी लोगों ने देखा उसको, लेकिन चूंकि हमारे पास बहुत बड़े वाले स्टार नहीं थे इसलिए जब सिनेमा में आई तो उतना नहीं हो पाया, छोटे बजट की फिल्म थी। आजकल क्या है कि आपको फिल्म के प्रमोशन के लिए 10-15 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है छोटी से छोटी फिल्म का, तब लोगों तक पहुंचता है। हमारे पास तो उतना था नहीं, प्रोड्यूसर के पास उतना नहीं था। पहली फिल्म NFDC की थी, उनके पास भी उतना तो प्रमोशन के लिए नहीं था। लेकिन अब जब OTT पे आई है तो अब वो बहुत लाखों लोगों ने देखी है,
4: जन जन तक
3: पहुंची, जन जन तक पहुंची है OTT की मेहरबानी से।
4: लेकिन इसमें कलाकार तो बहुत अच्छे थे और
3: नहीं, कलाकार अच्छे हो, फिल्म भी अच्छी हो, लेकिन लोगों को पता कैसे चले कि एक अच्छी फिल्म आ रही है, उसके लिए आपको प्रमोशन की जरूरत होती है। प्रमोशन के लिए पैसा लगता है, करोड़ों करोड़ों रुपए लगते हैं,
4: एक मार्केटिंग बहुत,
3: मार्केटिंग के लिए जी जी।
4: तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि सीमा जी को किस तरह का सिनेमा पसंद है तो क्या कहेंगी आप? आपको व्यक्तिगत तौर पर किस तरह का सिनेमा पसंद है?
3: मुझे अलग अलग तरह का, मूड के हिसाब से। मैं वेस्टर्न सिनेमा देखती हूँ बहुत, और मुझे कभी रोमांटिक फिल्में पसंद आती हैं, कभी मुझे बहुत गंभीर फिल्में देखने का दिल होता है। ऑल टाइम हिट जो फिल्में हैं जैसे डॉक्टर जिवागो और बहुत सारी ऐसी फिल्में, थ्रिलर हैं, हर तरह का सिनेमा मैं देखती हूँ, लेकिन शर्त है कि वो क्लासिक और अच्छा होना चाहिए। और फिर आपके मूड पे भी है, कभी कभी बचपन याद करने के लिए राजेश खन्ना जी का फिल्म देखने का मन करता है कि वो फिल्में, वो याद, वो दौर है ना
4: जी।
3: बाकी मुझे सत्यजीत रे का सिनेमा, ऋतिक घटक का सिनेमा, इंडियन में अपना ऋषिकेश मुखर्जी, ये इन लोगों का देख के आपको मन को सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। और बहुत सहज इनका फिल्म मेकिंग रही है, बहुत सहज रहा है, कोई बहुत ऐसा नहीं है कि ऐसे शॉट ले रहे हैं, वैसे शॉट ले रहे हैं,
4: लेकिन लाउड सिनेमा नहीं,
3: बिल्कुल नहीं है। और आप और हमारे इर्द गिर्द की कहानी, हमारे आसपास ही किरदार, आपको लगता है कि हाँ ये वो हैं हमारे अपने, ऐसा सिनेमा जिसे आज रियलिस्टिक सिनेमा बोलते हैं वो मुझे पसंद है।
4: चलिए तो आपकी पसंद का एक गीत सुनते हैं, फिर जरूर आगे बढ़ाते हैं।
3: कल्याण जी आनंद जी का फिल्म मेरे हमसफर का, किसी राह पे किसी मोड़ पे,
4: आइए सुनते हैं, बहुत ही सुंदर।

0: सीमा जी, बात चल रही है आज आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर, आपकी पसंद की फिल्मों पर। एक स्त्री होने के नाते आपने कहा कि बहुत संघर्ष किया आपने, इस तरह का कोई प्रोजेक्ट कभी मन में आया, इस तरह का लेखन, इस तरह की कहानी?
1: ज्यादातर तो मैंने स्त्री प्रधान ही फिल्म या सीरियल्स जो भी हैं बनाई हैं, जैसे अभी हार्ट तो वो ही थी, और अभी जो मैं बना रही हूँ पतंग मसाला, वो भी एक लड़की की कहानी है, वो भी स्त्री प्रधान ही है। और सीरियल्स जो बनाए हैं वो भी स्त्री के इर्द गिर्द ही ज्यादातर घूमते थे। अभी जो अवंतिका जो सीरियल बनाई है, वो चूंकि इतिहास है तो आप उज्जैन का इतिहास लिया है मैंने, जब कृष्ण आए उज्जैन सांदीपनी आश्रम में पढ़ने, तब से लेके विक्रमादित्य तक, तो उसमें स्त्री कैरेक्टर बहुत सारे। एक मैं अभी एक प्रोजेक्ट लिख रही हूँ, वो है वामा नाम रखा है उसका, स्त्री को कहते हैं वामा
0: जी, जी।
1: तो मैंने वैदिक काल की जितनी विदुषी महिलाएं थीं उन पे बना रही हूँ मैं, अपाला और ना भारती और मंडन मिश्र की जो पत्नी थी, तो उस तरह की जो कि वैदिक पीरियड में हमारी स्त्रियों कितनी ज्ञानी, लोपा मुद्रा और ये सब, तो उन पे बनाने का सोच रही हूँ मैं।
0: जी, तो कहाँ तक पहुँचा आपका ये प्रोजेक्ट जिस पर आप बनाने की सोच रही हैं? और
1: लेखन तक है अभी, और होपफुली इस फिल्म के बाद जो मैं अक्टूबर में शूट कर रही हूँ पतंग मसाला, उसके बाद वो शुरू कर देंगे।
0: क्या लगता है आपको, इस तरह का जब आप लेखन करती हैं तो आपको एक आत्मसम्मान, एक आत्मसुख, मतलब एक सुकून मिलता है?
1: देखिए, स्त्री होने के नाते, मतलब स्त्री की संवेदना जो है उसको केरने में मुझे लगता है कि मैं काफी करीब हो जाती हूँ स्त्री के, तो मुझे फिर उसको पढ़ना और गढ़ना, उस कैरेक्टर को, आसान हो जाता है, क्योंकि मैं भी एक स्त्री हूँ और स्त्री के सारे संघर्ष मैंने देखे हैं। मेरी माताजी, मेरी मौसी, मेरे जो महिला दोस्त हैं उनकी जीवन को मैंने देखा है, तो उसे उतारने में बहुत आसान लगता है मुझे उसकी संवेदनाएं। और कई पुरुषों लेखकों ने, जैसे प्रेमचंद हैं, वो पुरुष होके भी उन्होंने स्त्री का इतना सुंदर, रेणु, टॉलस्टॉय ना, दोस्तोवस्की, गोरकी, इन्होंने बहुत

0: खूबसूरती से स्त्री का सबसे ज्यादा आपके शरद चंद्र, उन्होंने तो स्त्री का ऐसा लगता है कि उनके अंदर कोई स्त्री बैठ के लिख रही है।
1: जिस तरह से उन्होंने लिखा, लगता ही नहीं कहीं कि एक पुरुष ये बात लिख रहा है। स्त्री की पीड़ा, स्त्री के संघर्ष को, स्त्री के जज्बातों को, स्त्री की फीलिंग्स को जिस गहराई में जाकर इन लेखकों ने लिखा, तो आप एक स्त्री होकर जब वो लिख रही है तो जाहिर है कि आप उस गहराई तक पहुंच पाती हैं जहां स्त्री को पहुंचना चाहिए।
0: जी, कोशिश करती हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकती कि उस गहराई में मैं पहुंच गई है मेरी लेखनी, लेकिन कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितने संसार में स्त्रियां हैं सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबकी अपनी अपनी संवेदनाएं हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, अलग अलग समस्याएं, ढेर सारी समस्याएं, तो उनको कहने में मैं इतनी तो कॉशस रहती हूँ, सचेत रहती हूँ कि उसकी गरिमा को रखते हुए, स्त्री की गरिमा को रखते हुए, मैं इसमें एक बात और कहना चाहूंगी कि स्त्री के पक्ष में हूं मैं, लेकिन मैं पुरुष के विपक्ष में नहीं हूं, मैं उसके विरोध में नहीं हूं, क्योंकि संसार दोनों से चलता है, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि स्त्री अच्छी है तो पुरुष खराब है, ऐसा नहीं है। देखिए, पावर गेम है ये। पुरुष के हाथ में जब पुरुष सत्ता थी या है तो वो उसका दुरुपयोग भी कर देता था, लेकिन वही हम देखते हैं कि बहुत सारे निर्देशक, मैं अपनी कला से संबंधित ही लोगों की बात चर्चा करूंगी, और लेखक इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने कभी अत्याचार नहीं किया स्त्री पे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: मेरी माता का मैंने जो सम्मान देखा है मेरे पिता की नजरों में, उन्होंने तुमने ही बोला माँ, जबकि उनसे बहुत छोटी थी, लेकिन वो कम्मो जी बोलते थे, वो
1: जी।
0: कमल नाम था, कमल शबनम उनका तखल्लुस था, तो वो हमेशा कम्मो जी आप ये कर दीजिए, आप जनाब। तो हमने तो वो लोग देखे हैं जो स्त्री को इतना सम्मान देते थे।
1: आज एक लंबी बातचीत आपसे हम कर रहे हैं, लेकिन अब एक गीत हो जाए आपकी पसंद का।
0: जी

0: हयात की लेखिकाएं भी स्त्री विमर्श पर लगातार चर्चाएं करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उससे एक अलग दिशा की ओर जा रही हैं। जब हम बात करते हैं स्त्री विमर्श पर, तो वही आपने कहा कि वो पुरुष विरोधी होकर जब लिखा जाता है तो स्त्री विमर्श फिर स्त्री विमर्श नहीं रह जाता।
1: नहीं, देखिए, आप है ना, संसार में चलाने के लिए ईश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को बनाया। आप ये कहें कि पुरुष खराब है इसलिए हम शादी नहीं करेंगे, हम अकेले ही रहेंगे, तो हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें दोनों की जरूरत है। जैसे वो बड़ा क्लीशे सा शब्द है ना कि भाई गाड़ी के दोनों पहिए हैं,
0: बिल्कुल,
1: आप उनके बिना नहीं चल सकते। और अब पुरुषों को भी थोड़ा सा अपने आप को बदलने की बहुत जरूरत है कि अब स्त्री को नए परिपेक्ष में देखें, वो एक नए ढंग से देखें उसके सम्मान को, उसके काम के सम्मान को। मुझे जो स्वतंत्रता है ना, वो शब्द स्वच्छंदता नहीं बनना चाहिए
0: जी।
1: स्त्री का या पुरुष की स्वतंत्रता जो है वो अभी थोड़ा सा, मैं इस पे बोलना चाहूंगी कि स्त्री अभी जो स्वतंत्रता के नाम पे उच्छृंखलता जो हो रही है ना, वो स्त्री को और गुलाम कर रही है।
0: जी जी, बिल्कुल सही कहा। और स्वच्छंदता शब्द तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों पर ये सही नहीं बैठता
1: जी,
0: है,
1: दोनों के लिए गलत है। तो स्वतंत्रता के नाम पे आप कहें कि मैं ये खा लूं और मैं वो पी लूं, नशा कर लूं, उसमें स्वतंत्रता है, तो हम तो और गुलाम हो रहे हैं ना। ये स्वतंत्रता नहीं है। स्त्री की स्वतंत्रता आर्थिक होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए
0: जी,
1: है ना। ये दो स्वतंत्रता, वो अपना प्रोफेशन खुद चुने, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो, और अपना कोई भी चीज चुनने के लिए वो फ्री हो, ये होना
0: वहां
1: चाहिए,
0: उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए
1: जी।
0: अपने निर्णयों को लेना सीखेगी, जिंदगी को किस ओर ले जाना है सही तरीके से। तो आपने इतनी फिल्में देखी हैं, आप फिल्मों की मुरीद हैं, सिनेमा लिखती हैं, सिनेमा को डायरेक्ट करती हैं। आज जो वर्तमान सिनेमा की हम बात कर रहे हैं, महिलाओं को जिस रूप में दर्शाया जा रहा है, आप उसे कहां तक सहमत है? जो स्थिति फिल्मों में स्त्री की दिखाई जा रही है, स्त्री खुद क्या इसकी जिम्मेदार है, या वहाँ कहीं ना कहीं मजबूरी या प्रोफेशन आ रही है?
1: देखिए, समाज में मुझे क्या लगता है कि जब

0: से शराब स्टेटस सिंबल बन गई है, तब से हास होने लगा है।
1: जी
0: अब हर फिल्म में आप दिखा रहे हैं कि स्त्री मद्यपान कर रही है या ये कर रही है वो कर रही है, तो ये कौन सी चीज बोलना चाह रहे हैं आपके, मतलब ये सामान्य होनी चाहिए ये चीज? इसके तो मैं खिलाफ हूं। आप मुझे शायद पुराने समय का, पुराने विचारों का आप वो कर दें, लेकिन कोई भी चीज, औषधि भी अगर आपको मानसिक रूप से गुलाम बना रही है तो भी गलत है ना? तो किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह की ये चीजें, उसको ग्लोरीफाई करके, उसको बहुत ज्यादा आप हाईलाइट करके और अपनी हीरोइनों से आप, क्योंकि आम आदमी, एक किस्सा सुनाती हूं मैं। हम लोग दिल्ली गए थे शादी के बाद, मैं और पुरी साहब। तो अब पुरी साहब तो आर्ट फिल्में और इस तरह की फिल्में थी, हम लोगों के पास कोई इतना पैसा तो था नहीं। तो मेरे एक वहां पर मित्र हैं, उन्होंने कहा कि हम एक एड पूरी साहब से बनवा देते तो तुम लोगों का आना जाना फ्री हो जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा। एड में बहुत पैसा मिलता है, जो पूरी एक फिल्म में जो एक साल तक बनती है उतना एक दिन की शूटिंग में एड में मिल जाता है। तो मैंने कहा हाँ हाँ बड़ी अच्छी बात है ये, तो पूरी साहब करेंगे? पूरी साहब बोले हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। मैंने कहा काय का एड है? बोले सिगरेट का। तो पूरी साहब बोले, उससे पहले ही मैंने कहा नहीं पूरी साहब सिगरेट का ऐड नहीं करेंगे। पूरी साहब ने मुझसे पूछा कि क्यों नहीं करूंगा, मेरे कहने से पी लेंगे क्या लोग? मैंने कहा पूरी साहब अगर आपके कहने से नहीं पिएंगे, ये आप तर्क दे रहे हैं, तो ये आपको इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? आप जिस भी फील्ड में हैं, आप कला फील्ड में हैं, आपको लोग देखते हैं और इनको भी पता है कि आप कहेंगे तो 1,000 लोग देखेंगे, 2 लोग तो पिएंगे, है ना? अब हमारे जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो अगर इस तरह के ऐड करते हैं और कहते हैं कि हम कोई समाज सुधारक नहीं हैं, समाज सुधारक आप हो या ना हो, आप सेलिब्रिटी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो बच्चा जो है 15 साल का से लेके 5 साल का बच्चा भी आपके उस पे डांस करता है और आपको सुनता है,
1: जी
0: आपको हीरो मानता है वो या हीरोइन मानता है, आप जो करेंगे वो उसका अनुसरण करेंगे। तो आप अगर इस तरह के ऐड करेंगे, विज्ञापन करेंगे, आपको तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, लेकिन करोड़ों लोगों की जिंदगियां जो हैं आपने स्टेक पे लगा दी हैं।
1: बिल्कुल
0: तो पूरी साहब ने नहीं किया फिर वो ऐड। तो हम उस तरह के लोग हैं जो सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर हम कुछ कह रहे हैं और हमारी बात 10 लोग भी सुन रहे हैं तो हमें बहुत सोच समझ के करनी और कहनी चाहिए।
1: जी, आपकी कथनी और करनी में अगर अंतर है तो फिर आपकी सामाजिक जिम्मेदारी कहीं नहीं बनती।
0: जी
1: जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक कलाकार क्या कह रहा है, क्या विज्ञापन दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है, उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि
0: बिल्कुल
1: वो समाज में क्या फैला रहा है। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा, और आपकी पसंद का ये गीत सुन लिया जाए।
0: जी, मेरी पसंद का

0: सीमा जी, आपसे अगर मैं ये जानना चाहूं कि आपको कौन से कलाकार पसंद हैं इस इंडस्ट्री में, जो आपने बतौर एक्टर या एक गहराई के तौर पर पसंद किए, तो कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आप पसंद करती हैं?
1: दिलीप साहब, मोतीलाल जी, बलराज साहनी, फिर उसके बाद जो बचपन में हमारे हीरो हुआ करते थे वो राजेश खन्ना
0: जी,
1: और देव साहब, धर्म जी, इस तरह के जो कलाकार हैं उन्होंने अलग अलग तरह का सिनेमा किया। अब आप देखिए, धर्म जी बिल्कुल घोर कमर्शियल फिल्मों में थे, लेकिन उन्होंने अनुपमा की, सत्यकाम उन्होंने प्रोड्यूस की, है ना, और कितनी फिल्में हैं जो उन्होंने
0: शुरुआती, बहुत सारी फिल्में हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जितेंद्र को जब हम देखते हैं तो गुलजार साहब
1: जंपिंग जैक के नाम से जाने जाते थे,
0: लेकिन गुलजार साहब की फिल्मों में उनका एक अलग रूप देखने को मिला। और अगर नायिकाओं की बात करें तो कौन सी नायिकाएं आपको पसंद?
1: नायिकाओं में मुझे वो बिचारी अपने सौंदर्य की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे कोई कभी जिक्र नहीं करता है, जबकि वो कलाकार बहुत अच्छी थी अगर आप उनकी सिनेमा उठाएं, लेकिन उनके साथ एक दुर्भाग्य रहा कि वो बहुत हसीन थी।
0: मधुबाला
1: उनकी सुंदरता पर चर्चा होती है, लेकिन आप जरा मुगले आजम उठा के देखें, आप मिस्टर एंड मिसेस 55 उठा के देखें, आपको वो रेंज मिलेगी, कहाँ कॉमेडी कहाँ सीरियस। वो कलाकार बहुत अच्छी थी, तो मधुबाला मुझे बहुत पसंद थी। नरगिस बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, मीना जी बहुत अच्छी परफॉर्मर थी, वो उनका एक स्टाइल था, और शबाना बहुत अच्छी परफॉर्मर है अभी के उसमें, करीना अच्छी परफॉर्मर है। बस ये है कि ये लोग स्क्रिप्ट अच्छी चुन लें तो ज्यादा अच्छा हो।
0: शशि कपूर के लिए भी हम यही पढ़ते थे कि वो इतने हैंडसम थे कि उनकी एक्टिंग पर तो बात होती थी लेकिन की खूबसूरती के दीवाने ज्यादा थे।
1: जी जी,
0: तो कई बार आपकी अति सुंदरता भी जो है आपके लिए, आपकी कला के लिए,
1: जैसे अभी ऐश्वर्या राय कितनी खूबसूरत है लेकिन वो परफॉर्मर बहुत अच्छी है। परफॉर्मर अच्छी है, मैंने उनकी कई ऐसी फिल्में देखी हैं, परफॉर्मर बहुत अच्छी है वो, लेकिन अब जिक्र ही नहीं होता है। आप उनकी सुंदरता में बात करते हैं कि उसमें खूबसूरत लगी ये करी वो सब, जबकि देखिए ना, मीना जी भी कम खूबसूरत थी क्या उनकी।

0: अपनी अलग तरह की खूबसूरती थी, नरगिस जी की अपनी खूबसूरती थी
1: बहुत सुंदर,
0: जी
1: आंखें बोलती थी उनकी,
0: जी
1: उनके होंठ बोलते थे जिस तरह से उनका।
0: परफॉर्मर मुमताज भी अच्छी थी। कुछ कलाकार डायरेक्टर के एक्टर होते हैं, आपने देखा होगा कुछ एक्टर्स जो हैं कुछ फिल्मों में बहुत खराब काम करते हैं और कुछ फिल्मों में ब्रिलियंट होते हैं, वो निर्देशक के कलाकार होते हैं। निर्देशक अगर आप देखिए ना, आप शक्ति सामंत की फिल्म कर रहे हैं, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म कर रहे हैं, फिर आप किसी और की फिल्म कर रहे हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस में बहुत अंतर आ जाता है।
1: जी बिल्कुल, कि आपको निर्देशक ने किस रूप में पर्दे पर उतारा है, आप
0: निर्देशक कितना स्ट्रांग
1: स्ट्रांग
0: है
1: था।
0: अपने काम में।
1: बतौर निर्देशक अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको कौन सा ऐसा कलाकार पसंद है जिसने आपके निर्देशन में बहुत ही अच्छा काम किया आपकी नजर में?
0: मेरे निर्देशन में तो मेरे परिवार के ही दो लोग तो काम कर ही रहे हैं, अन्नू भाई और रंजीत भाई ने भी मेरी सीरियल में काम किया था एक्टिंग, जबकि वो एक्टर नहीं है। तो पुरी साहब आसान थे उनके साथ काम करना, अन्नू भैया के साथ काम करना थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि कई बार वो बड़े भाई भी बन जाते
1: हाँ
0: बाकी तो मैंने अभी तक जितने लोगों के साथ काम किया है, चाहे सुरेश ओबेरॉय हो चाहे दिव्या हो, सब का बहुत अच्छा सहयोग मिला,
1: दिव्या भी एक बहुत अच्छी कलाकार
0: बहुत
1: हैं,
0: अच्छे।
1: और जी
0: हाँ
1: बहुत ही संचिता कलाकार हैं।
0: जी, और मेहनती बहुत है, अपने काम पे फोकस है उसका और मेहनत करती है, चीजों को बार बार पूछना सवालों को कि ये कैसे है, ये कैरेक्टर क्या है, ये क्या है, क्योंकि हर को गांव का नहीं मालूम होता ना, गांव के क्या है वो आप निर्देशक या राइटर से ही पूछते हैं,
1: जी
0: वो
1: जी
0: गांव में तो नहीं रहे हुए होते हैं। तो वो उस तरह से ना उन लोगों का अपना जो होमवर्क है वो करने में पूरा टाइम बार बार फोन करके पूछना कि ये कर लूं क्या, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब एक कैरेक्टर गांव का होता है तो उनके जो मैनरिज्म है ना, उनके हाव भाव, जैसे गांव का कोई एक कंधे उचका के ना नहीं कहेगा, ये बहुत ही शहरी जेस्चर है, तो वो ख्याल रखना वो
1: बहुत
0: निर्देशक का
1: जरूरी
0: भी
1: है।
0: जरूरी है। कलाकार अगर उसमें गच्चा खा जाए, थोड़ा कमजोर हो जाए, तो निर्देशक का वो बनता है। लेकिन ये ऐसे कलाकार हैं जो होमवर्क जिसे बोलते हैं ना, कि फिर गांव का जो कैरेक्टर है वो कैसे उसके हाव भाव होंगे, कैसे हाथ उठा के बात करेगा, कैसे क्या करेगा, ये लोग होमवर्क बहुत करते हैं, इसलिए ये इतने अच्छे।
1: स्टैब्लिश कलाकार,
0: जी
1: एक
0: जी
1: अच्छे और परिपक्व कलाकार
0: जी
1: हैं, जहां किसी भी फिल्म में इन कलाकारों ने कभी आपको बोर नहीं किया, जैसे हम एक सामान्य शब्दों में कहें कि
0: जी
1: जिसे कहते हैं कि निरुत्साह नहीं किया, हमें कभी निराशा नहीं हुई इन्हें देखकर
0: जी
1: कि ये क्या एक्टिंग करती
0: कमजोर
1: हैं,
0: नहीं पड़े ये
1: कमजोर
0: अपने
1: नहीं
0: अपने
1: पड़े,
0: किरदार में।
1: क्योंकि अपने काम को इतना मजबूती के साथ इन्होंने किया है।
0: जी
1: चलिए एक आपकी पसंद का गीत सुनते हैं और फिर एक सवाल आपसे पूछते हैं।
0: मदन मोहन जी का संगीत में एक गाना मुझे बहुत पसंद था, दुल्हन एक रात की, में लता जी ने गाया, सपनों में अगर मेरे तुम आओ तो मैं सो जाऊं।
1: बहुत सुंदर गाना है,
0: जी
1: चलिए तो सुनते हैं यही गीत।
0: जी

0: बहुत सुंदर गीत सीमा जी आपने हमें सुनवाया, और इसे पता चलता है कि क्लासिक जो है संगीत आपको पसंद है और जो रूह को सुकून दे रहा है।
1: जी
0: आपकी 2025 में एक आत्मकथा आई किताब के रूप में, उसके बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे। मैं आप ही से सुनना चाहती हूँ उस किताब के बारे में, उस आत्मकथा के बारे में। बहुत ही सुंदर उसका शीर्षक है,
1: यूं गुजरी है
0: अब
1: अब तलक।
0: तलक।
1: जी, तो किताब का ख्याल मुझे ऐसे आया था कई साल पहले। क्या हुआ था कि पुरी साहब से बिछड़ने के बाद आई लॉस्ट माई चाइल्ड, तो उसमें मेरे भाई, मेरी माता जी, वो सब इतने दुखी थे कि मेरे दुखी होने का मुझे समय नहीं मिला, ना अवसर मिल रहा था, क्योंकि सबको रोता देख के अगर मैं भी रो रही होती तो उनको संभालता कौन।
0: जी
1: तो इसलिए मैंने एक फसाड, एक ना एक आवरण सा ओढ़ रखा था कि कोई बात नहीं, ये जीवन है, ये भी समय निकल जाएगा, और ऐसे करके। लेकिन मेरे अंदर ना एक दावानल चलता रहता था, आपको एक कोना चाहिए जहां आप रो सकें, जहां आप कथार्सिस जिसे हम लोग बोलते हैं, ये एक रेचन हो जाए, अंदर से जो गुबार है वो निकल जाए। तो मुझे, मैं सबके बीच में घिरी हुई थी, सारे मेरे दुख से दुखी थे, उनको मैं अपना दुख दिखा के दुखी नहीं होना चाहती थी। तो मैंने कहा कि कलम ही एक ऐसा मेरा साथी है जो मैं अकेले में जिसको लिख सकती हूँ, और अपने उद्गार पेपर पे ना उसकी स्याही जो है मेरे आंसुओं की तरह उसे निकालूं।
0: जी,
1: तो मैंने अपने बच्चे को एक खत लिखा जो चला गया कि भाई तुम, मेरी कोख इतनी खराब थी कि तुम नहीं रह सके उसमें। तो फिर उससे मैंने कई सवाल पूछे कि तुम क्यों नहीं आना चाहे, मैंने तो तुम्हारे लिए बड़े सपने देखे थे, मैंने तो तुम्हारे लिए सारा कुछ वो करके रखा था कि दुनिया में ऐसे तुम्हें वो करूंगी, ऐसे तुम्हारी तरबियत पालन पोषण करूंगी, कैसे भी अभाव होंगे, कैसे भी कुछ होगा, संघर्ष करूंगी, लेकिन तुम्हें मैं सारे वो सपने जो तुम देखोगे उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो वो सब मैंने खत लिखा उसको, फिर भी सवाल जब वो नहीं हुए तो मैंने बच्चे की तरफ से माँ को एक खत लिखा कि मैं क्यों नहीं आया।
0: जी,
1: तो ये जब लिखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये आत्मा को बड़ी मेरे कथार्सिस हो गया, एक दर्द जो है निकल गया। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना जो जिंदगी में झंझावात झेले हैं, जिंदगी में जो अनुभव अच्छे बुरे खट्टे मीठे थिएटर कंपनी के बाबूजी की, जो लोगों ने जाना नहीं है, लोग ये जानते पारसी थिएटर हुआ करता था, नाटक मंडलियां हुआ करती थी, लेकिन उनकी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, उनकी स्त्रियां क्या थी, वहां पे स्त्रियों की क्या दशा थी, जो स्टेज पे समाज से उपेक्षित थी, स्टेज पे कमाती थी, लेकिन फिर भी वो पुरुष के सत्ता के अधीन थी वो। तो वो सब मैंने उतारने के लिए मन बनाया, और ऐसे मैंने कहा ये सिर्फ सारी चीजें कहानियों में नहीं आ सकती, क्योंकि इतनी सारी कहानियां कहाँ लिखूंगी मैं, अपनी आत्मकथा ही लिख दूं, उसमें तो सारे वो कैरेक्टर हैं, वही बिब्बी हैं, वही बुग्गी हैं, और वही चंदा हैं, और वही शरीफ भाई हैं, और वो जो नाटक कंपनी के चरित्र हैं सारे हैं, वो उनको उतारा जो थे हमारी नाटक कंपनी में, क्या मेरी माँ थी उनका संघर्ष, क्या मेरे फादर थे उनका संघर्ष, हमारा संघर्ष के इतने अमीर माता पिता की संतान होके आज देखिए जब हमारा थिएटर कंपनी जो हमें इतना पैसा और खाना देती थी, उसके बाद जब सिनेमा आया तो थिएटर कंपनियां बंद हो गई, भुखमरी आ गई,
0: जी
1: है ना,
0: बिल्कुल
1: सारी थिएटर कंपनियां बंद हो गई। एक जमाने में जिस फिल्मों ने, सिनेमा ने हमारी रोजी रोटी छीनी, आज वो सिनेमा हमें रोजी रोटी दे रहा है। तो ये पूरा जो ग्राफ है जिंदगी का, ये मैंने उसमें लिया, और लोगों को शैली भी बहुत पसंद आई, कहने का स्टाइल पसंद आया,
0: काफी चर्चित रही ये किताब और 2025 की सबसे चर्चित किताबों में से एक किताब रही ये यूं गुजरी अब तलक। और उसमें मुझे लगता है कि हमने
1: साहित्य
0: आपको
1: तक ने तो उसको 2025 की टॉप 10
0: में
1: बुक में लिया,
0: शामिल किया, और काफी लोगों ने आपको उस वक्त जाना पहचाना, आपके दर्द को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। तो सीमा जी आगे भी आप यूं लिखती रहे, ये शुभकामनाएं हम आपको देते ही हैं। चलिए एक और गाना हो जाए आपकी पसंद का।
1: जी।

0: आगे की नए प्रोजेक्ट्स आपके क्या क्या हैं, बस ये जानना चाहते हैं।
1: जी वो फिल्म बना रही हूँ, दो सीरियल का है वो कर रही हूँ, एक दो महिलाओं पे डॉक्यूमेंट्रीज हैं। जी एक जगह है जहाँ पर गांव से महिलाएं जो हैं वो नदी के पार करके जाती हैं, कुछ भी नमक भी खरीदना हो तो उनको नदी पार करनी पड़ती है, और नदी कैसे पार करनी पड़ती है, टायर ट्यूब होते हैं ना उसमें बैठ के और अपनी चप्पलों को चप्पू बना के वो नदी पार करती हैं।
0: अरे
1: तो वो मैं बना रही हूँ, अभी पानी थोड़ा सा नदी में कम है तो इस वजह से थोड़ा अब मैं सर्दियों में जाके, तो ये सारी चीजें मैं चाहती हूँ कि मैं जितना भी काम करूँ, मेरी जो महिलाएं हैं, मैं चूंकि स्त्री हूँ तो मैं स्त्रियों पे ही काम करना चाहती हूँ।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इस लाइन में आने वाली स्त्रियों को आप क्या कहना चाहती हैं, युवा स्त्रियों को जो इस लाइन में आना चाहती हैं बतौर राइटर, बतौर निर्देशक, बतौर एक्टर?
1: देखिए कोई भी विधा, जैसे अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, एक कोई पत्रकार हैं वो एक्टिंग में चले गए तो लोग उनको डिफेंड करने लगे कि भाई लोग सीखते सीखते सीखेंगे। मैं इसके खिलाफ हूँ। एक तो जो कलाकार आता है, जो जैसे अभी एनएसडी से ट्रेंड एक एक्टर आ रहा है
0: जी,
1: ठीक है, आपने उसकी रोजी रोटी छीन रहे पहली बार, जिसने इसी को पढ़ा है, जो यही कर रहा है, और फिर जब करोड़ों रुपए एक फिल्म में लगते हैं तो वहां पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई रोटी बनाना है कि धीरे धीरे सीखेंगे।
0: हाँ,
1: नहीं,
0: तो सीखने की प्रक्रिया भी चल रही है।
1: हाँ, ये प्रक्रिया नहीं है, करोड़ों रुपए आप पे लगते हैं तो प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगी कि देखिए दो तरह से आप सिनेमा की तरफ आकर्षित होते हैं, ग्लैमर और पैसा। तो जब ये दो चीजों से आकर्षित होकर आप आते हैं तो सक्सेस मिलने के चांसेस जो हैं आपको 5% होंगे। लेकिन आप कलाकार हैं, आप पढ़ते हैं, आपने सिनेमा पढ़ा होता है, थिएटर पढ़ा होता है, आपने लिटरेचर पढ़ा होता है, म्यूजिक पढ़ा होता है, ये सारी चीजें जब आपने की होती हैं, थिएटर किया होता है और टेक्निक जानते हैं, मतलब ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। जैसे एक डॉक्टर बिना MBBS किए डॉक्टर, हम उससे इलाज नहीं करवाएंगे, एक इंजीनियर से बिल्डिंग नहीं बनवाएंगे जब तक कि वो नहीं है, इसी तरह कलाकार को, कला क्षेत्र को आप ऐसे मत सोचिए कि कोई भी आके कर ले, उसके लिए आपको ट्रेंड होना बहुत जरूरी है, पढ़ाई पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप कुछ बनेंगे।
0: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी आपने एक संदेश युवा आने वाली लड़कियों को खास तौर से दिया है, जो केवल शारीरिक सौंदर्य के बल पर आना चाहती हैं और दूसरी चीजों को मद्देनजर नहीं रखते हुए काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि किसी भी लाइन में जाने से पहले आपको वहां के लिए पढ़ना और गुनना बहुत जरूरी है खुद को। तो बॉम्बे टॉकीज में आज सीमा जी आपने विविध भारती के लिए अपना अमूल्य वक्त निकाला है, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: नहीं, विविध भारती तो जिंदगी में जब हम बच्चे थे तब से जुड़ा हुआ है हमसे, और जहां से जाएंगे तो विविध भारती सुनते हुए ही जाएंगे, कोई ना कोई गाना चलता ही रहेगा।
0: जी तो चलिए एक और गाना जान लेते हैं इस कार्यक्रम का।
1: जी एक गाना मजरू साहब का है, मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से, LP का म्यूजिक है, ना जा अब कहीं ना जा,
0: दिल के सिवा,
1: दिल के सिवा।
0: क्या बात है।
1: ना जा

0: बॉम्बे टॉकीज में आज दोस्तों हमारे साथ थी जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर। और अब बॉम्बे टॉकीज में आज इतना ही। मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत, नमस्कार।
1: ये था जानी मानी लेखिका, निर्देशिका और निर्माता सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र ने आज एक नया इतिहास रच दिया है। हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित देश के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 ने अपनी पहली परीक्षण उड़ान के तहत श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। मिशन आगमन के तहत यह बहुप्रतीक्षित प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। गिरिडीह परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य में सिंडिकेट और दलालों का शासन चल रहा है और विकास कार्य अवरुद्ध है। चतरा जिले के टंडवा प्रखंड के सिसई गांव निवासी वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार को वर्ष 2026 का IEEE यंग इंजीनियर अवार्ड प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें कोयम्बटूर में आयोजित 39वें राष्ट्रीय धातुकर्म एवं पदार्थ अभियंता सम्मेलन में इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट अनुसंधान और नवाचार के लिए दिया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज रांची में प्रेस वार्ता कर जेपीएससी पीटी 14 परीक्षा परिणाम में अनियमितताओं का आरोप लगाया। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने 22 जुलाई को जेपीएससी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन की घोषणा की। लोहरदगा जिले के किस्को थाना क्षेत्र में सांप के काटने से एक महिला की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार तिसिया गांव निवासी 32 वर्षीय पूनम उरांव को बीती रात सोते समय जहरीले सांप ने काट लिया। परिजन उन्हें तत्काल सदर अस्पताल लोहरदगा लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र में आज एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार बुलियाडीह स्थित शीतला मंदिर के समीप अज्ञात अपराधियों ने जगन्नाथ गोप पर हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: वो लफ्ज क्या कहें जो जुबां तक ना आए, सब राज बयां करती है तेरी नजर। मैं खो गई हूं जैसे किसी गहरे समंदर में, जब से मुझ पर ठहरी है तेरी नजर।

वो चेहरा मानो प्रकृति की सबसे कोमल और रमणीय रचना हो, जहां हर रेखा में सौंदर्य की मधुर छाया बसी हुई है। कपोलों पर झलकती हल्की लाली संध्या की अंतिम आभासी प्रतीत होती है, और उसकी गहरी भावपूर्ण आंखें किसी अनंत कथा का मौन आमंत्रण देती हुई मन को बांध लेती हैं। अधरों पर सजी मृदुल मुस्कान ऐसे खिलती है जैसे किसी नव प्रभात में कली पहली बार मुस्कुराई हो, जिसमें ना कोई आडंबर है ना बनावट, केवल निष्कलुष आकर्षण। उसके चेहरे का एक समग्र सौंदर्य किसी एक अंग में नहीं, बल्कि उस अद्भुत समन्वय में है, जहां प्रत्येक भाव और प्रत्येक आभा मिलकर एक ऐसी मोहक छवि रचते हैं जो केवल देखी नहीं, बल्कि गहराई से अनुभूति की जाती है।

बंद पलकों से तुझे पढ़ लेना हुनर हो जैसे, बिन नजर के भी तेरा मिलना असर हो जैसे, तेरी आहट ही मेरे दिल में उतर जाती है, हुई खामोश दुआ रूह का सफर हो जैसे। यूं तो आंखों की जरूरत ही नहीं पड़ती, रूह से रूह का मिलना ही नजर हो जैसे।

0: पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छाया गीत में। तेरी नजर से ही पहली वो मुलाकात हुई, दिल को खामोश दी एक मीठी सी बात हुई, एक पल ठहरी जो आंखें हैं तेरी आंखों पे, जिंदगी जैसे वहीं से नई शुरुआत हुई। हम तो वाकिफ भी ना थे इस अजब एहसास से, एक नजर क्या मिली रूह में बरसात हुई, तेरी पलकों की झपक में कोई जादू था, हर खुशी जैसे मेरे नाम की सौगात हुई। कभी किसी की नजर शरारत से मुस्कुराती है तो लगता है जैसे उसमें कोई राज छुपा हो, एक ऐसा राज जिसे कहना तो वो चाहते हैं मगर कह नहीं पाते, और कभी वही नजर इतनी गहरी हो जाती है कि उसमें डूब जाने का मन करता है बिना ये सोचे कि लौट पाएंगे या नहीं।
1: जरा नजरों से कह दो जी।

मोहब्बत अगर लफ्जों में बयां होती तो शायद इतनी खूबसूरत होती नहीं। असल जादू तो बस इसी में है कि उनकी नजर चुपचाप उनके दिल को छू लेती है, बिना आवाज, बिना इजाजत, और फिर सब कुछ अपना सा महसूस होता है। अगर वही नजर खफा हो जाए तो जज्बात दम तोड़ देते हैं।

दिल की नजर से तेरा ही नूर दिखता है, हर एक ख्वाब में बस तेरा सुरूर दिखता है। तेरी खामोशी भी जैसे कोई गजल कहे, हर लफ्ज में छुपा हुआ एक गुरूर दिखता है। जब से तेरी चाहत ने छुआ है रूह को, हर दर्द में अब एक सुकून दिखता है। तेरी आंखों की गहराई में डूबकर देखा, वहीं कहीं मेरा मुकद्दर लिखता है। अब दिल की नजर को और कुछ भाता नहीं, हर तरफ बस तेरा ही हुजूर दिखता है।

0: नजर, निगाहें, आंखें बस जज्बात बयां करती हैं और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जोड़ देती हैं। निगाहें वो कह देती हैं जो जुबान नहीं कह पाती, और निगाहें निगाहों की बातों को कह देती हैं। आज के कार्यक्रम छाया गीत में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे थे 103 मेगाहर्ट्ज पर। सायंकालीन सभा में आप सबों का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानकारी लेते हैं अपनी सभा में प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की।

खेती बारी का समय होगा शाम 6:02 पर। किसानों को संबोधित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर। शाम 6:55 पर हम शामिल होंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में, जहां ठीक शाम 7:00 आप सुनेगा प्रादेशिक समाचार। शाम 7:10 पर जिले में आजकल गीत गजलों का कार्यक्रम स्वरांजलि आप सुन सकेंगे शाम 7:15 से। शाम 7:45 पर आप सुनिएगा विज्ञान जगत की बातें।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से आप सुनिएगा रात्रि 8 बजे। समाचार संध्या रात 8:45 पर, न्यूज़ 9 रात 9 बजे, उर्दू में खबरें रात 9:15 पर।

रात्रि 9:30 पर हम शामिल होंगे विविध भारती के कार्यक्रम में। फिल्मी संगीत का कार्यक्रम रजनीकांत आप सुन सकेंगे रात्रि 10:00।

युवानी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त आराध्या माही। आशा करते हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे और हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आपके मनोरंजन का ख्याल रखते हुए फिल्मी गीतों को भी सुनाएंगे। तो आइए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज की हमारी चर्चा का पहला विषय है आवश्यकता के अनुसार करें मोबाइल का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। पढ़ाई, ऑनलाइन क्लास, बैंकिंग, समाचार, मनोरंजन और परिवार से जुड़े रहने जैसे अनेक कार्य मोबाइल की सहायता से आसानी से हो जाते हैं।

लेकिन हर अच्छी चीज़ का गलत उपयोग नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए मोबाइल का उपयोग आवश्यकता के अनुसार और सीमित समय तक ही करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, विशेष रूप से युवाओं के लिए यह विषय बेहद महत्वपूर्ण है। आज कई युवा घंटों सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम, वीडियो शॉर्ट्स और बेवजह इंटरनेट चलाने में अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। धीरे धीरे यह आदत लत बन जाती है, जिससे पढ़ाई, करियर और स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, अत्यधिक मोबाइल इस्तेमाल करने से आंखों की रोशनी कमज़ोर हो सकती है, सिर दर्द, गर्दन और पीठ में दर्द, नींद की कमी तथा मानसिक तनाव जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा लगातार मोबाइल चलाने से ध्यान भटकता है, याददाश्त पर असर पड़ता है और पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। दोस्तों, कई युवा वास्तविक दुनिया से दूर होकर केवल आभासी दुनिया में जीने लगते हैं, जिससे रिश्तों में भी दूरी आने लगती है। दोस्तों, मोबाइल का सबसे अच्छा उपयोग तब है जब हम इससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करें। आज मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन कोर्स, बुक, ई बुक, शैक्षणिक वीडियो, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और नई नई तकनीकी सीखने को मिलती है। यदि हम इसका सही उपयोग करें तो यह मोबाइल हमारी सफलता का साधन बन सकती है। दोस्तों, हमें कुछ अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, जैसे कि बिना किसी ज़रूरत के बार बार मोबाइल ना देखें, पढ़ाई या काम के समय मोबाइल को साइलेंट या दूर रखें, भोजन करते समय और परिवार के साथ बैठते समय मोबाइल का प्रयोग न करें, सोने से कम से कम घंटा पहले मोबाइल फ़ोन का उपयोग बंद कर दें, प्रतिदिन कुछ समय खेल, व्यायाम, पुस्तक पढ़ने और परिवार के साथ बातचीत करने के लिए अवश्य निकालें। दोस्तों, युवाओं को भी यह समझना चाहिए कि मोबाइल एक साधन है, जीवन नहीं। यदि हम मोबाइल को नियंत्रण करेंगे तो यह हमारे विकास में सहायक बनेगी, लेकिन यदि मोबाइल हमें नियंत्रण करने लगे तो यह हमारे स्वास्थ्य, समय और भविष्य तीनों को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन ज़रूरी है कि मोबाइल का उपयोग केवल हम आवश्यकता के अनुसार ही करें, सही उद्देश्य के लिए और सीमित समय तक करें। अपने समय का दुरुपयोग न करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। दोस्तों, अभी हम बातें कर रहे थे आवश्यकता अनुसार मोबाइल का प्रयोग करने पर। दोस्तों, इस चर्चा के बाद आइए सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, इस गाने के बाद आइए सुनते हैं वार्ता। विषय है अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र सरकार के कार्यक्रम। वार्ताकार हैं सतीश कुमार दुबे।
1: मैं सतीश कुमार दुबे, प्रधानाध्यापक ब्राह्मण प्लस टू उच्च विद्यालय मेदिनीनगर, आप सभी को विद्यालय स्तर पर प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के विषय में जानकारी देना चाहता हूँ। श्रोताओं, सरकार द्वारा प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रखने में सहायता देना है। इन योजनाओं के लिए आवेदन मुख्यतः ई कल्याण झारखंड पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। अब देखिए, प्री मैट्रिक जो छात्रवृत्ति है किसके लिए है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9 और 10 में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों के लिए है, झारखंड के जो अस्थायी निवासी हैं। इसमें वैसे छात्र जो SC ST हैं तथा SC ST के छात्र पात्र हैं, इसमें छात्रवृत्ति मिलती है, शैक्षणिक सहायता मिलती है। अब आइए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं और 12वीं ITI डिप्लोमा स्नातक जो UG में हैं, UG कोर्स स्नातकोत्तर PG में हैं तथा अन्य मान्यता प्राप्त व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए है। यह भी प्री मैट्रिक्स की तरह SC ST एवं BC OBC वर्ग के पात्र विद्यार्थियों के लिए है। इसमें क्या लाभ दिया जाता है, ट्यूशन फीस के प्रतिपूर्ति की जाती है जो उनका नियमानुसार है। छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग अलग सहायता जहाँ लागू है वहाँ दी जाती है। अब इसका पात्र कौन है, कौन कैंडिडेट को मिलेगा, जो झारखंड के अस्थायी निवासी हो, मान्यता प्राप्त विद्यालय कॉलेज में नामांकित हो, उनके पास वैध जाति प्रमाण पत्र निर्गत हो, आय प्रमाण पत्र हो, आधार संख्या तथा आधार से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए। इसके अलावा भी जो आवश्यक दस्तावेज है इसको मुख्य रूप से पुनः एक बार जानना चाहिए छात्रों को, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार का 2 फोटो, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पिछली परीक्षा की अंक तालिका, बोनाफाइड या नामांकन प्रमाण पत्र। बोनाफाइड आपको विद्यालय महाविद्यालय से मिलेगा जहां आप पढ़ रहे हैं, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और ईमेल। आवेदन की क्या प्रक्रिया है, आवेदन की प्रक्रिया है आप सबसे पहले ई कल्याण झारखंड पोर्टल के वेबसाइट पर जाइए, रजिस्ट्रेशन वहां कीजिए और लॉगिन करके छात्रवृत्ति योजना चुनिए। फिर एक फॉर्मेट आवेदन का खुलेगा, आवेदन पत्र भरें, आवश्यक दस्तावेज को अपलोड कीजिए, आवेदन को फिर सबमिट करिए। संस्थान एवं जिला स्तर पर सत्यापन के बाद जहां पढ़ रहे हैं, जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं उस संस्थान और जिस जिला में आप हैं उसके सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति DBT के माध्यम से डायरेक्ट आपके बैंक में भेज दी जाती है। इस प्रकार से छात्र जो है से प्री मैट्रिक्स कक्षा 1 से 10 के छात्र एवं पोस्ट मैट्रिक्स 11वीं से 12वीं एवं उसके ऊपर के छात्र लाभ ले सकेंगे या लेते भी हैं। अब दूसरी योजना जो है उसके विषय में हम जानकारी देना चाहेंगे, जो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जिसे PMJBK भी कहा जाता है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है। इसके अंतर्गत आवासीय विद्यालय, कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, स्वास्थ्य केंद्र, कौशल केंद्र और पेयजल जैसी सामुदायिक सुविधाएं बनाई जाती हैं। इन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? PMJKV प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? विकास का लक्ष्य है। यह योजना पिछड़े हुए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के बुनियादी ढांचों में सुधार करके उन्हें देश के बाकी जो हिस्से हैं उनके बराबर लाने का प्रयास करती है यह योजना। इसका क्षेत्रों के पहचान कैसे किया जाता है भाई? अभी वर्तमान में जनगणना चल रहा है। इसके पहले जनगणना का कार्यक्रम 2011 में चला था। उसके आंकड़े के आधार पर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों की पहचान की गई है और अभी जनगणना के बाद जो और उस प्रकार के रिपोर्ट आएंगे उसके आधार पर भी लागू किए जाने का इसमें प्रावधान है। ये तो हुई PMJKV के विषय में। अब आपको हम बताते चले कि इसमें एक और योजना जो है जो युवाओं के लिए लाभप्रद है, जो कौशल विकास कार्यक्रम है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह युवाओं के लिए बहुत ही कारगर योजना और भारत सरकार के कार्यक्रम है। युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए और उनके कला कौशल को निखारने के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई यह महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देना है। प्रमाण पत्र दिया जाता है, आर्थिक सहायता दी जाती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है। भारत में प्रमुख कौशल विकास योजनाएं जो है, जो आपको पहले भी हम बताए, जो इसमें एक योजना इसी के अंतर्गत आता है, PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, भारत की सबसे बड़ी प्रमाणक योजना है। इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई थी। इसके तहत युवाओं को मुख्य रूप से लघु उद्योग, कौशल प्रशिक्षण, AI से संबंधित और जानकारी दी जाती है और आर्थिक पुरस्कार भी दिए जाते हैं। PM दक्षता योजना इसी सीरीज में ये भी है। यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग और सफाई कर्मचारियों के लिए है। प्रशिक्षण के दौरान मुफ्त ट्रेनिंग और हर महीने 1500 रुपये तक स्टाइपेंड भी दिया जाता है। कई उद्देश्य हैं इसका। मिस

0: मिशन अलग है, राज्य स्तरीय मिशन भी है इसका। राष्ट्रीय योजना के अलावा लगभग सभी राज्य अपने स्तर पर कौशल विकास मिशन, जैसे झारखंड सरकार के लिए क्या है, झारखंड कौशल विकास मिशन, उत्तर प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, बिहार सरकार के लिए बिहार कौशल विकास मिशन। अलग अलग राज्य अपने अपने स्तर से कौशल विकास मिशन चलाते हैं और युवाओं को प्रशिक्षित करते हैं और उन्हें रोजगार हेतु दक्ष बनाते हैं। इस कार्यक्रम का जो लाभ जो हम बताए, इसके अलावा छात्रों या युवाओं के क्या लाभ हो सकता है? इसमें प्रशिक्षण के लिए कोई राशि नहीं दी जाती है, छात्रों से या युवाओं से कोई राशि ली नहीं जाती है, मतलब मुफ्त प्रशिक्षण इनको दिया जाता है। सभी नामांकित युवाओं को बिना किसी शुल्क के पेशेवर ट्रेनिंग दी जाती है, रोजगार और प्लेसमेंट भी दिए जाते हैं। अगर जो लोग इसमें नामांकित होते हैं, जो युवा नामांकित होते हैं, उनको ट्रेनिंग पूरा करने के बाद और परीक्षा पास करने के बाद सरकार द्वारा नौकरी दिलाने में सहायता की जाती है। प्रमाण पत्र की क्या महत्व है? इसका जो प्रमाण पत्र है वह कोर्स पूरा होने पर एक मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो कहीं भी या किसी भी जो वैकेंसी होते हैं या सरकार के द्वारा वांछित कार्यक्रम होते हैं वहाँ इन्हें मान्यता दिया जाता है। यह पूरे देश में मान्य होता है। यदि आपको और जानकारी इसके लिए चाहिए तो इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं। हम समझते हैं कि इन सारी बातों से आपको बहुत लाभ मिला होगा। आप छात्रवृत्ति के माध्यम से आप आगे बढ़ सकेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वार्ता विषय था अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र सरकार के कार्यक्रम। वार्ताकार थे सतीश कुमार दुबे।

0: दोस्तों, इस वार्ता के बाद आइए अब हम बातें करते हैं नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। दोस्तों, हर वर्ष 18 जुलाई को पूरी दुनिया में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण अफ्रीका के महान नेता, मानवाधिकारों के रक्षक और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नेल्सन मंडेला जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को मानवता, समानता, न्याय, शांति और सेवा की भावना के लिए प्रेरित करना है। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उस समय वहां रंग भेद की नीति लागू थी, जिसमें काले और गोरे लोगों के साथ अलग अलग और असमान व्यवहार किया जाता था। मंडेला ने इस अन्याय के खिलाफ पूरी निष्ठा और साहस के साथ निष्कर्ष किया। अपने सिद्धांतों से समझौता न करने के कारण उन्होंने लगभग 27 वर्ष जेल में बिताए, लेकिन उन्होंने कभी हिंसा, घृणा या बदले की भावना को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने पूरे देश में एकता, भाईचारे और मेल मिलाप का संदेश दिया। वर्ष 1994 में दक्षिण अफ्रीका के से पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। यह साबित किया कि सच्चा नेता वही होता है जो लोगों को जोड़ता है, न कि उन्हें बांटता है। उनके महान कार्यों के लिए वर्ष 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2009 में निर्णय लिया गया कि हर वर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। इस दिन लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि वे कम से कम 75 मिनट समाज सेवा को दें। उन्होंने मानवता, न्याय और समान के लिए समर्पित करें। दोस्तों, आज के युवाओं के लिए नेल्सन मंडेला जी के जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, साहस और सकारात्मक सोच नहीं छोड़नी चाहिए। हमें जाति, धर्म, भाषा या रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी लोगों का सम्मान करना चाहिए, ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और समाज के विकास में योगदान देना चाहिए। उनके प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धांजलि होगी। दोस्तों, आज के समय में समाज में कई प्रकार के मतभेद और चुनौतियां हैं, तब नेल्सन मंडेला के विचार और भी अत्यधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। यदि युवा उनके आदर्शों को अपनाएं तो वो न केवल अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं, बल्कि एक बेहतर और शांति समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, इस अवसर पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि मानवता, समानता, प्रेम और सहानुता और सेवा के मार्ग पर चलेंगे तथा अपने छोटे छोटे अच्छे कार्यों के समाज में, देश में रहते हुए बेहतर बनाने की कोशिश भी करेंगे। दोस्तों, अभी हम बातें कर रहे थे नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। दोस्तों, अब कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव हो चला है, तो आइए सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही

0: एक नया इतिहास रच दिया है। हैदराबाद की स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित देश के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 ने अपनी पहली परीक्षण उड़ान के तहत श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। मिशन आगमन के तहत यह बहुप्रतीक्षित प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। कोडरमा में आज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। झुंझुनी तिलैया में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि योजना के लागू होने और जन जागरूकता से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर राज्य के सभी शहरी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए आज विशेष सहायता शिविर लगाया गया। इस दौरान अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने जमशेदपुर पश्चिमी और ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर इन्यूमरेशन फॉर्म संग्रहण और डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया का जायजा लिया। धनबाद जिले के बीसीसीएल की मुराइडी कोलियरी में लोकल सेल के लिए डीओ जारी नहीं होने के विरोध में आज असंगठित मजदूरों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए कुलियरी का कार्य भी प्रभावित रहा। मजदूरों का कहना है कि पिछले 3 महीनों से डीओ जारी नहीं होने के कारण कोयला लोडिंग का काम ठप है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित हुई है। जामताड़ा जिले की पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आज 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभु कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधियों के पास से 27 मोबाइल फोन और 39 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 लोगों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई गई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेती बारी।

0: अपने खेतों से घर वापस आए गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेतीबाड़ी में, और ग्रामीण भाइयों हमेशा की तरह आज आपके साथ हैं आपके भाई प्रदीप कुमार सिंह, आपको भी हमारा नमस्कार।
1: आपको भी हमारा नमस्कार संतोष भाई, और सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार।
0: जी हाँ, और आज हम लोग सर्वप्रथम बातें करेंगे बरसात में किस प्रकार हम पशुओं की देख रेख करें, कौन कौन सी बीमारियाँ उन्हें बरसात में होने की संभावनाएँ तेज हो जाती हैं और कैसे बचाया जाए।
1: आज हम लोग मुख्य रूप से जो हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनके लिए विशेष जानकारी है कि पशुओं में बरसात में कौन कौन सी सावधानी या कौन कौन से रोग उनको लग सकते हैं, उसके लिए आप सचेत रहें। किसान भाई, बरसात के मौसम में नमी, कीचड़ और मच्छरों के कारण पशुओं में गलघोंटू, जिसे हम सांस फूलना कहते हैं, लंगड़ा बुखार, खुरपका मुँह पौका, जिसको हम लोग FMD के नाम से भी जानते हैं, थनैला और पेट में कीड़े होने जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। और इन बीमारियों के जो लक्षण से ही हम जान पाते हैं कि कौन सा बीमारी हमारे पशु को हो रहा है। तो जहाँ तक गलघोंटू की बात है तो उसमें लक्षण है तेज बुखार, गले में सूजन, मुंह से लार टपकना और सांस लेते समय घुर घुर की आवाज़ आना। इससे बचाव के लिए मानसून शुरू होने से पहले पशु चिकित्सक की सलाह से गलघोंटू का टीका अवश्य लगवाएं।
0: जी हाँ किसान भाइयों, और बातें जहाँ तक आती है जब खुरपका और मुँहपका रोग की, तो इसके लक्षण आपको इस प्रकार दृष्टिगोचर होंगे। खुरों और मुंह में छाले हो जाना, लार टपकना, पशुओं का चारा छोड़ देना, मतलब पशु खाना पीना नहीं कर पाते, और दूध में भारी कमी, ये एक से मुख्य लक्षण है

0: मुख्य रूप से। और बचाव की बात जहाँ तक आती है ग्रहण बंधु, तो पशुओं के खुरों को लाल दवा यानी पोटेशियम पर मैग्नेट के घोल से आप धोएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और छुआछूत से बचाने के लिए बीमार पशुओं को आप अलग रखिए।
1: किसान भाई, थनैला, इसके लक्षण थनों में सूजन आना, कड़ापन होना और दूध का रंग बदल जाना या खून आना, इससे बचाव के लिए जो आपका पशुशाला है, जिसे गौशाला भी हम लोग कहते हैं, को हमेशा सूखा और साफ रखें। दूध निकालने के बाद थनों को एंटीसेप्टिक लोशन से साफ करें।
0: जी, और पेट के कीड़े और दस्त के भी लक्षण,
1: उसके लिए अगर पेट का कीड़ा और दस्त हो रहा है, उसका लक्षण जो है कि पशु का कमज़ोर होना, गोबर का पतला होना और बालों का चमकहीन होना,
0: जी,
1: चमक खो देता है। और इससे बचाव के लिए बरसात के मौसम से पहले और बाद में पशुओं को पेट के कीड़े की दवा, जिसे कृमिनाशक हम लोग बोलते हैं,
0: जरूर
1: पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य दें।
0: जी, और सावधानियां की बात जहां तक आती है किसान बंधु, तो पशुओं को ठहरा हुआ गंदा पानी पीने आप कभी नहीं दीजिए। ये बातें बार बार हम लोग आपसे करते हैं किसान भाई बहन। और बासी खाना, फफूंद लगा हुआ चारा बिल्कुल नहीं खिलाइए किसान भाई। मच्छरों और मक्खियों से बचाने के लिए पशुशाला में नीम की पत्तियों का धुआं आप करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा किसान बंधु। तो ये तो बातें हो गई पशुओं के खास खास रोग जो अभी लगने की
1: संभावना के समय में लगने की संभावना होती है।
0: जी,
1: अब हम लोग
0: लत्तर वर्गीय सब्जियां भी हमारे किसान भाई लोग बहुत बृहद पैमाने पर करते हैं, तो
1: लत्तर वर्गियों में
0: जी
1: जो सब्जियां हैं, खासकर जो बेल वाली हैं, उसमें लौकी, तुरई, करेला, कद्दू और खीरा की अच्छी पैदावार के लिए नियमित सिंचाई, उचित खाद एवं उर्वरक और बेलों को सहारा देना, जिसे हम लोग मचान विधि से सहारा देते हैं, और कीट नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है। किसान भाई, सबसे पहले भूमि की तैयारी और जो गोबर की जो खाद है, खेत की पहली जुताई के समय प्रति एकड़ लगभग 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद अवश्य मिलाएं। और अच्छी फसल के लिए मिट्टी जांच के अनुसार नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का संतुलित मात्रा में प्रयोग करें।
0: जी हाँ किसान भाई बहन, बातें जहाँ तक सिंचाई की आती है, तो इन सब्जियों को नमी की बहुत आवश्यकता होती है। फूल आने और फल बनते समय खेत में पर्याप्त नमी को आप बनाए रखिए। गर्मियों में हर 4 से 6 दिन के अंतराल पर और सर्दियों में 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई करिए। और खासकर बरसात के मौसम में तो आपका आवश्यकता नहीं पड़ती सिंचाई की, फिर भी देख रेख करते रहिए, सूखा होने पर आप सिंचाई करिए किसान भाई बहन। और सहारा देना और मचान विधि की जहाँ तक बात आती है, तो बेलों को ज़मीन पर फैलने के बजाय मचान यानी लकड़ी या तार के जाल आप बना लीजिए, उस पर आप चढ़ाइए। और इससे फल सड़ते बहुत कम हैं, उन पर सीधी धूप भी पड़ती है और कीड़ों का प्रकोप भी कम हो जाता है। खेत को हमेशा खर पतवार मुक्त रखिए किसान भाई। पहली फसल बुआई के 15 से 20 दिन बाद आप पहली जो निकाई गुड़ाई जो आप करिएगा वो 20 से दिन के आसपास आप करिए, और जड़ों को नुकसान ना पहुंचाते हुए आप करिए, इसलिए हल्की गुड़ाई ही करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कीट एवं रोग नियंत्रण की बात जहां तक आती है, तो माहू और सफ़ेद मक्खी, इससे ज़रूर फसलों को बचाइए। इनकी रोकथाम के लिए नीम के तेल का छिड़काव आप कर सकते हैं। फल मक्खी की बात अगर हम करें, तो यह लत्तर वर्गीय सब्जियों का मुख्य कीट है, इसके नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाइएगा तो काफ़ी बेहतर होगा। तो ये तो बातें हो गई लत्तर वर्गीय सब्जियाँ की, जिसे हमारे किसान भाई लोग बृहद पैमाने पर करते हैं, अभी खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, लत्तर वर्गीय सब्जियों की देख रेख भी हमारे किसान भाई कर रहे हैं,
1: तो इसका लाभ भी किसान भाई हमारे ले रहे हैं, जो लगाए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो प्रतिदिन निगरानी कर रहे हैं, वो इसका लाभ भी ले रहे हैं।
0: और हम तो बोलेंगे कि हमारे किसान भाई बहन जो सब्जियां की खेती करते हैं, वो ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करते हैं, जो कि सब्जियां झटपट तैयार हो जाती हैं
1: और बाज़ार में सही समय पर पहुंचने पर उचित मूल्य भी मिलता है।
0: जी, तो ये तो बातें हो गई सब्जियां की खेती की। और कार्यक्रम में अब आइए हमें सुनते हैं एक प्यारा सा
1: लोकगीत।

0: हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे शारदा सिन्हा के गाए लोकगीत।
1: इस लोकगीत के बाद आइए अब सुनते हैं भेंट वार्ता, गेंदा फूल की व्यावसायिक खेती। भेंट वार्ताकार हैं दिलीप कुमार पांडे।
2: की पलामू में जहां हमारी मुलाकात उद्यान विशेषज्ञ दिलीप कुमार पांडे से होती है, जिनसे हम बातें करेंगे गेंदा फूल की खेती पर। पांडे जी, आपको हमारा नमस्कार।
3: आपको नमस्कार और सुनने वाले श्रोता बंधुओं को भी मेरा नमस्कार।
2: सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि पलामू में गेंदा की खेती की क्या संभावनाएं हैं।
3: किसानों को अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उनको व्यावसायिक रूप से

0: फूलों की खेती या फल के क्षेत्र में जाना ही पड़ेगा। और इस तरीका से हम लोग देख सकते हैं कि जो पलामू की स्थिति है ये डिफरेंट जिलों से मिलती है और यहाँ धार्मिक स्थान की कमी नहीं है। इस सारी स्थिति को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि गेंदा फूल के खेती के लिए यहाँ पे अपार संभावनाएं हैं।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने, गेंदा की खेती की संभावनाएं अपार है ऐसा कि आपने बताया। तो इसके उन्नत प्रभेद क्या क्या हैं जो यहाँ पे किसान भाई लगा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दे दी।
0: देखिए गेंदा फूल के जहाँ तक हम लोग बात करेंगे, उन्नत प्रभेद के रूप में हम लोग देखेंगे तो हाइब्रिड F1 हाइब्रिड, जिसको कि हम लोग व्यवसायिक उत्पादन करना चाहते हैं तो भी F1 हाइब्रिड का बहुत आप देखेंगे मार्केट में आया हुआ है। इसके अलावा पुराने समय से अफ्रीकन और फ्रेंच गेंदा प्रसिद्ध है पहले से ही। फ्रेंच गेंदा देखेंगे कि वो कम हाइट का होता है, जबकि अफ्रीकन गेंदा की पौधे की ऊंचाई ज्यादा होती है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो पीला रंग का फूल होता है, मार्केट में फूल के लिए या ये सब सजावट के लिए उसका ज्यादा मांग होता है। लेकिन इसके साथ ही हम लोग देखेंगे जो फ्रेंच किस्म की गेंदा होती है, उनका रंग लाल होता है, उनका भी व्यवसायिक बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जो उनका सीड जो निकलता है, बीज निकलता है, बीज का बहुत सारे मेडिसिनल यूज होता है, तो उसमें प्रयोग होता है, मार्केट में उसकी बहुत डिमांड है। साथ ही देखेंगे उससे सुगंध वाले जो इंडस्ट्री में, सुगंध वाले इंडस्ट्री भी में उसकी अच्छी मांग है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि छोटे वाले फूल का कम डिमांड है, असल में मार्केट खोजना हमको पड़ेगा और मार्केट तक यहाँ के किसानों को अपनी पहुंच बनानी होगी।
1: आपने इतने सारे उन्नत प्रभेद के बारे में बताया जो हम यहाँ पे बहुत उपयोगी भी हैं और किसानों के बीच काफी लाभप्रद भी उनके लिए होगा, तो इसे लगाने की क्या विधि है ये भी आप बता दीजिए।
0: देखिए गेंदा लगाने के लिए किसान भाइयों को सबसे पहला जो ध्यान देना है मिट्टी पे, तो जहाँ तक मिट्टी हम लोग देखते हैं यहाँ पे अधिकांश जो ऊपरवार जमीन है वो बलुई दोमट और हम लोग कह सकते हैं उचित जल निकास वाली, जिसकी यहाँ पे कमी नहीं है खासकर इस क्षेत्र में। लेकिन जो हम लोग बोलते हैं कि पटवन की थोड़ी सी सुविधा किसान भाइयों को रखनी पड़ेगी, पटवन इसलिए कि बीच बीच में जब सूखा हो, जैसे गेंदा का फूल जब भी हम लोग लगाते हैं तो इसका 2 से 2.5 महीने बाद आप इसका फूल निकलना शुरू हो जाता है, तो बीच में यदि कभी भी पानी की कमी होती है तो हम लोग को पानी का व्यवस्था रखना पड़ता है खासकर इसके लिए। तो हम लोग जमीन का चुनाव कर लिए। दूसरा चीज नर्सरी इसको लगाने के लिए, तो नर्सरी लगाने की जब हम बात करेंगे तो इसके लिए कोई ज्यादा ऐसा नहीं है, जो किसान भाई जैसे सब्जी का बिचड़ा तैयार करते हैं उसी तरीका से गेंदा के लिए भी वो बिचड़ा तैयार कर सकते हैं, इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और किसान लोगों को देखना है जब 4 पत्ती का पौधा हो जाए तो अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, रोपाई के लिए तैयार है, हमको समझना है। इसमें हम लोग आगे चर्चा किए थे अफ्रीकन वैरायटी और फ्रेंच वैरायटी, तो फ्रेंच वैरायटी जहां तक हमको लगाने की बात है तो उसको जब हम लोग लगाएंगे तो लाइन से लाइन हम लोग 20 सेंटीमीटर रखेंगे और पौधा से पौधा की दूरी 15 सेंटीमीटर रखेंगे। लेकिन जब हम लोग अफ्रीकन वैरायटी में आएंगे जो ऊंचा पौधा होता है तो उसके लिए हम लोग लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर कर देंगे और पौधा से पौधा की दूरी 45 सेंटीमीटर कर देंगे। किसान भाइयों को यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि यदि हम लोग कम पौधे लगाते हैं तो उचित पैदावार नहीं होगी, जो हमको मिलना चाहिए खेत से वो मिलेगा नहीं, और बहुत ज्यादा दूर पे हम लगा रहे हैं तो उचित हमको इनकम नहीं हुआ, और यदि ज्यादा नजदीक हम लोग लगा लेते हैं तो इसमें गलन की एक आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, फूल गलना शुरू हो जाता है, एक तरीका का फंगल रोग हो जाता है, तो उचित दूरी इसमें बहुत ही जरूरी है
1: जी। उचित दूरी का ध्यान रखना चाहिए आपने बताया, और साथ ही आप बताइए कि सिंचाई कैसे की जाती है गेंदा के फूल की।
0: सिंचाई करने के लिए किसान भाइयों को खासकर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जो दूरी मैंने बताया उसके लिए किसान भाइयों को बरसात के दिनों में मेढ़ बनाकर के खेती करनी चाहिए। मेढ़ बनाकर के खेती करने से फायदा यह होगा कि यदि कम भी पानी होती है तो वो वहीं पे मेढ़ बनाने से मिट्टी में पानी संरक्षित हो जाती है, उनको कम देना पड़ेगा, और खासकर दूसरी समय में वो विदाउट जो मेढ़ के भी कर सकते हैं।
1: कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता क्या है ये भी हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे, इसके बारे में कुछ विस्तार से बता दीजिए।
0: उत्पादन क्षमता हम लोग पौधे के किस्म पे या किसान का कितना, एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि किसान भाई जब देखेंगे इसमें जो है, जैसे ही किसान लगाते हैं तो पौधा खेत में तो 25 दिन बाद उसमें ऊपर से कलिका आना, फूल की कली आना शुरू हो जाती है। लेकिन जब फूल की कली ऊपर आना शुरू होगी तो आप देखेंगे किसान भाई का अपना अनुभव होगा जो कर रहे होंगे कि इसकी बढ़वा रुक जाती है। उसी समय में किसान भाई को क्या करना है कि जो ऊपर वाला फूल का हिस्सा है उसको तुरंत

0: जो कली खिल रही है उसको तोड़ देना है। उसको तोड़ने से फायदा क्या होता है कि तब ये पौधा बढ़ना शुरू होता है और अगल बगल से ज्यादा कली निकलना शुरू होता है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा उनको ध्यान रखना है। और इस तरीका से करने से किसान भाई देखेंगे कि उनका एक हेक्टेयर में, जैसा हम लोग पाए हैं खेतों में अपने रिसर्च से, 150 से 200 क्विंटल तक फूल उत्पादन हो जाता है।
1: आपने हमारे किसान भाइयों को अच्छी जानकारी दी, साथ ही ये भी बताया कि फूलों की व्यावसायिक खेती कितनी जरूरी है यहाँ पलामू में भी। आपको हमारा
2: अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, गेंदा फूल की व्यावसायिक खेती। आइए अब सुनते हैं भेंट वार्ता बाजरा की खेती। विशेषज्ञ हैं प्रमोद कुमार।
3: हमारा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। किसान भाइयों, आज कार्यक्रम के अंतर्गत हम बातें करेंगे मोटे अनाजों की खेती की। मोटे अनाजों की खेती की पलामू में क्या संभावनाएं बनती हैं, खासकर बाजरा, ज्वार, रागी वगैरह की। इस पर विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार। महाशय का स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार।
4: नमस्कार।
3: सर्वप्रथम तो हमारे किसान भाइयों को मोटे अनाजों के बारे में जानकारी दी जाए।
4: किसान भाइयों, जान जाए कि झारखंड में जो है मोटे अनाज की आज काफी संभावनाएं हैं। पहले हमारे खाद्यान्न में, हमारे भोजन के डाइट में मोटे अनाज हुआ करते थे, आज वो गायब हो गए हैं और जिसके चलते हमारा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतने नुकसान हो रहे हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मोटे अनाज की खेती बहुत अच्छी मानी जाती थी और इसमें खास करके ज्वार की खेती के बारे में अपार संभावना है। धान, मक्का, मड़ुआ के बाद ज्वार का प्रमुख स्थान है। ज्वार मनुष्यों के लिए और खाने के लिए अनाज के रूप में और पशुओं के चारा के लिए बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं और की पैदावार जो है, और इसमें प्रोटीन की भी मात्रा, जो हम लोग देखते हैं कि गरीबों जो ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर है उसको प्रोटीन का सोर्स हमें नहीं मिल पाता है, तो ये इसमें प्रोटीन भी 12% के आसपास में रहते हैं, 10 से 12% रहते हैं और फैट वगैरह 3% वसा के रूप में रहते हैं और 70% कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। यानी कि हमारा जो ये अनाज है मोटे अनाज, और इसकी खासियत यह है कि पलामू, लातेहार और गरवा यहाँ के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यहाँ पर कम वर्षा होती है और इसकी वाटर रिक्वायरमेंट इन सारी फसलों की सबसे कम है। यानी कि आप अगर इस वर्ष की भी ले लें बात, तो हमारे धान की खेती अच्छी नहीं हो पा रही है और हर बार ये संभावना रहती है कि 2 वर्षों के बाद में ऐसी बारिश यहाँ कम होती है, रेन शेडो एरिया में आता है, असिंचित अवस्था में हम लोग जो है ज्वार की अगर खेती करते हैं तो हमारा इसका 450 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर में वर्षा में ये इसका पानी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो ये मुख्यतः टाँड़ की फसल, यानी कि हम लोग टाँड़ के फसलों

हम लोग जो है ज्वार की अगर खेती करते हैं तो हमारा इसका 450 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर में वर्षा में ये इसका पानी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। ये मुख्यतः टाँड़ की फसल, यानी कि हम लोग टाँड़ के फसलों में वर्षा में ये इसका पानी की रिक्वायरमेंट हो जाती है। ये मुख्यतः टाँड़ की फसल, यानी कि हम लोग टाँड़ के फसलों

0: ज्वार निश्चित तौर पे अनाज के रूप में और चारे के रूप में, चारे भी बहुत अच्छी फसल है जिसको कि चारे के रूप में किसान, और इस वर्ष की बात कर लें तो हमको जो है धान अगर नहीं हुआ तो चारा के रूप में भी नहीं है, माने मनुष्य के लिए भी आदमी के लिए भी खाद्यान्न की समस्या होती है और जानवरों के लिए भी समस्या होती है, क्योंकि जानवर और हमारे दो अभिन्न अंग है। तो इस तरह से हम लोग मोटे अनाज की खेती करते हैं, तो हम लोग चावल मक्का मड़ुआ के बाद ज्वार की ही करते हैं, और खास करके हम लोग रोटी जो खाते हैं तो इसकी रोटी थोड़ी मोटी होती है, रफेज होती है, फाइबर्स की मात्रा होती है। गड़बड़ क्या हो गया हमारे स्वास्थ्य सिस्टम में कि हम लोग आटे खाते हैं, गेहूं के आटा, और उसको भी बारीक खाते हैं, माने चलनी से चाल देते हैं, नतीजा क्या होता है, कंस्टिपेशन होता है। तो हम लोग अगर ज्वार की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोगों को जो है दाल और अरहर के रूप में दाल, कभी कभी हम लोग ज्वार के साथ अरहर के कॉम्बिनेशन, एक लाइन ज्वार और एक लाइन अरहर लगा के कर लेते हैं। तो हमारा ये तो निश्चित हो गया कि हमको जो है खाने के रूप में कोई खाने के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक अब बात हो गई हम लोग की, जो बात करें इसकी जो है बुआई का समय का, तो ये मध्य जून से मध्य जुलाई के बीच में, जिस तरह से टाँड वाली फसलों को हम लोग आता करते हैं, टाँड वाली भूमि में हम लोग इसकी खेती करते हैं।
1: अभी तो बहुत किसान भाई,
0: हाँ बहुत, अभी बहुत किसान भाई अभी भी हम लोग, चूंकि ये इसकी 110 से 95 दिन की भी है, 100 दिन की भी वेरायटी है, 110 दिन की भी है। अच्छा। तो आप ज्वार की खेती उसको करके आप कर सकते हैं। तो ये ज्वार की खेती हम लोग इस परिस्थितियों में भी कर सकते हैं। हम लोग देखें कि इसके लिए जो है बीज दर, तो बीज दर हम लोगों को जो है 12 से 15 केजी जो है प्रति हेक्टेयर जो है बीज दर हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और लाइन से लाइन 45 सेंटीमीटर और पौधों से पौधे 15 सेंटीमीटर। जिस तरह से हम लोग मक्का की खेती करते हैं उसी ढंग से इसकी भी ज्वार की खेती करते हैं। अगर हमें देखना पड़ता है कि हमें ज्यादा चारा लेना है तो कौन सा प्रभेदों का चयन करें, और हमें अनाज ज्यादा लेना है तो कौन सा प्रभेद को चयन करें, तो इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। तो पलामू प्रवेश में हम लोग देखते हैं कि अगर प्रभेदों की बात करें तो CSB20 प्रभेद है, और CSB17, ये दोनों प्रभेद बहुत ही अच्छे प्रभेद हैं। CSB20 की जो है हम लोग खासियत ये देखते हैं कि इसका जो है हमारे पास में 115 दिन की है, और CSB किसान भाई जो समझ रहे हैं 17 जो है वो 95 दिन का है, अगर हाँ तक परिपक्व हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तो अगर हमको कम दिन है, अवधि है, तो हम लोग 17 का प्रभेद का CSB17 का उपयोग करेंगे, अगर लग रहा है हमारे पास समय है तो CSB20 का करेंगे, लेकिन देखते हैं। और पलामू में इसको ज्वार को हम लोग जिनोर भी कहते हैं, तो किसान भाई घबराने की जरूरत नहीं है कि इसको जिनोर भी कहते हैं। तो जिनोर जैसे आप खेती करते हैं तो इसको जरूरत है इसकी खेती के रकबा को हम लोग बढ़ाएं टाण वाली भूमि में, तो इसकी जो है अगर हमें ज्यादा लेना है चारा लेना है तो इसकी हाइट भी ज्यादा होती है, यानी कि 2 मीटर के आसपास में इसकी हाइट होती है किसान भाई। और जो हम लोग लेते हैं CSB17, ये छोटे प्रभेद हैं, तो इसमें चारा जो है हमको, अगर हम लोग CSB20 लेते हैं तो इसमें चारा का मात्रा जो है हमको जो है 150 से ऊपर क्विंटल, 200 क्विंटल आएगा प्रति हेक्टेयर, और 17 में जो है 140 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जहां तक अनाज की बात करें हमने, तो 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है CSB20 प्रभेद के ज्वार को लगाएंगे तो उत्पादन देगा, और उसमें जो है हमारे पास में 25 क्विंटल के आसपास में उत्पादन देता है। तो हम लोग अनाज के साथ चारे और उसके साथ में हम लोग दोनों की संभावनाएं हमें बढ़ जाती है। तो किसान भाई इसको
1: इसके चारे भी तो स्वादिष्ट,
0: हाँ इसके चारे भी स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन हम लोग को किसान भाई थोड़ी सी हम लोग को सावधानी, चारे की जब चर्चा आपने कर दी तो बहुत अच्छा है कि हम सावधानियां में ऐसे बताते ही कि चारे को जब भी लगाए तो किसान भाई इसमें एक SCN का फॉर्मेशन होता है, पॉइजन का फॉर्मेशन होता है कम पानी की अवस्था में, लेकिन किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि 45 दिनों के पहले चारे को काट के ना खिलाएं। 45 दिनों के बाद जब फूल आ जाते हैं उसके बाद आप 50 दिनों के बाद खिलाते हैं तो इसमें कोई इस तरह की समस्या नहीं होती है। जी। अगर हमको चारा ज्यादा पैदा करना है, अनाज ज्यादा करना है, तो हम लोग बीज दर को बढ़ा देते हैं। अच्छा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो जिस तरह मक्के की खेती करते हैं और एक लाइन अगर अरहर लगाना है और एक लाइन ज्वार लगाना है तो हम लोग 75 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोग दोनों फसलों को लगा सकते

हमारे श्रोता सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम खेतीबारी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे किसान भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे, चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। और ग्रामीण बंधु हमेशा की तरह आज आपके साथ हैं आपके भाई प्रदीप कुमार सिंह, आपको भी हमारा नमस्कार।

0: किसान भाई बहन, हम आपको बताते चले किसान बंधु कि अभी जो आपको बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची झारखंड से जो परामर्श प्राप्त है वो इस प्रकार है कि मौसम नम एवं अपेक्षाकृत ठंडा बना रहेगा। लगातार वर्षा के कारण तापमान में हल्की नमी देखी जा सकती है। गरज चमक और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना बनी रहेगी। किसान बंधु, भारी बारिश, आंधी तूफान और बिजली कड़कना, तेज हवाओं के झोंके वगैरह आप अभी महसूस कर सकते हैं और ज़मीन के पास तेज हवाएं आप पाएंगे। किसान बंधु, फसलों का गिरना, फलों का टूटना आम बात है। और किसान भाई बहन, इस प्रकार की स्थिति में आप सुरक्षा बनाए रखिए, अपने फसलों को देखरेख में आप रहिए उसकी। और किसान भाई, फसल की बुआई से पहले जल निकासी सुनिश्चित कर लीजिए, तभी बुआई के लिए आप खेतों में जाएं। जिन किसान भाइयों का खेत अभी भी परती रह गया हो, वे अविलंब अनेक प्रकार की फसलों में से किसी भी फसल की बुआई जो अभी बरसाती आप कर सकते हैं, अनुशंसित विधि से आप करें। धान की फसल को छोड़कर अन्य सभी फसल की बुआई मेढ़ बनाकर ही करिए। किसान भाई, जिन खेतों में धान का रोपा करना हो, वैसे जो खेत हैं उसको, उसके जो मेड़ हैं उसको आप दुरुस्त जरूर कर लीजिए और खेत को जोतकर मिट्टी को खुला छोड़ दीजिए, जिससे जल जमाव के साथ साथ खेत में मौजूद खरपतवार भी भली भांति सड़ जाए। संक्रमण से बचाने और वायु परिसंचरण के सुधार के लिए क्षतिग्रस्त और सड़ते हुए फलों और पीले रोगग्रस्त पत्तियों को अविलंब हटा दीजिए आप। जी हाँ किसान बंधु,
1: और जो किसान पहले ही बुआई कर चुके हैं और अगर अंकुरण समान रूप से नहीं हो पाया हो तो खाली जगहों में पुनः बीज बोएं, या अगर एक ही जगह पौधों की संख्या ज़्यादा हो गई हो तो उसे उखाड़ कर खाली जगह में लगा दें। खड़ी फसलों में सिंचाई रोक दें और जल निकासी की सुविधा रखें। मौसम साफ होने तक खाद व कीटनाशकों का छिड़काव रोक दें। वर्षा जल संचयन के लिए अपने खेत के निचले भाग में छोटे छोटे गड्ढे, जिसे हम डोभा भी कहते हैं, उसका निर्माण करें,
0: जरूर करवाइए। जी हाँ किसान भाई, और किसान भाइयों को यह भी सलाह दी जाती है कि टमाटर फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए जाल फसल के रूप में गेंदा यानी अफ्रीकी गेंदा का उपयोग बहुत उपयोगी है अभी। जी हाँ किसान भाई बहन, और हम रागी की अगर आपसे बात कर लें तो किसान भाइयों को ये कृषि विज्ञान से ये सलाह दी जाती है कि किसान भाइयों, 3 सप्ताह पुरानी रागी की फसल की रोपाई आप करिए और रोपाई से पहले जल निकासी की सुविधा आप सुनिश्चित कर लीजिए। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर लगभग और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखिए। मक्का की बात जहां तक आती है किसान भाई बहन, तो जल्दी बोई गई फसल 3 सप्ताह की अवस्था में है तो निराई गुड़ाई आवश्यक है। 16 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ डालें और फिर मिट्टी चढ़ा दें। लंबे समय तक बादल छाए रहने और बारिश होने के कारण मक्के में विशेष रूप से अंकुरण से लेकर वानस्पतिक अवस्था तक जीवाणु, तना सड़न रोग के संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। और तना सड़न को नियंत्रित करने के लिए सूखे दिनों में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आधारित रसायनों का आप प्रयोग कर सकते हैं, उससे आप सुरक्षित कर सकते हैं फसलों को। और किसान भाई बहन, अब बात धान की। जो किसान भाई श्री विधि से धान की खेती करना चाहते हैं, वे रोपा के लिए खेत की तैयारी का रोपा का कार्य शुरू कर दीजिए। किसान भाई, अविलंब एकदम आवश्यक है, तुरंत शुरू करिए, देरी नहीं करिए। रोपा वाले खेत में गोबर की खाद का प्रयोग 40 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से आप करिए तथा जल निकासी के लिए नाली बनाए रखिए। रोपा से पहले खेत से पानी आप निकाल दीजिए और एक एक बिचड़े को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाइए। जी हाँ किसान बंधु, सीधी बुआई वाले धान की फसल 3 से 4 हफ्ते की अवस्था में है। चूँकि आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान हमारे किसान कृषि वैज्ञानिक लगा रहे हैं, इसलिए किसान भाई निराई गुड़ाई खरपतवार नियंत्रण के लिए खेतों में अवश्य जाएं और 35 किलो यूरिया प्रति एकड़ डाल दें। इसके बाद निराई गुड़ाई करें और खाली जगहों को भरें। खाद डालते समय अतिरिक्त पानी निकाल दीजिए किसान भाई, और एक

0: दिन बाद पानी को खेतों में डाल दीजिए।
1: किसान भाई, जुलाई में टमाटर की नर्सरी में पौध लगाने का सबसे अच्छा समय होता है। बीज को ट्राइकोडर्मा विरिडे 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीज को बोने से 24 घंटा पहले बीज उपचारित करना चाहिए। इसके उन्नत किस्में हैं स्वर्ण लालिमा, अरका आभा, स्वर्ण संपदा, स्वर्ण समृद्धि, पूसा शंकर 1 और सुरक्षा। जरबेरा की फसल में फफूंद रोग के प्रकोप देखे जा रहे हैं। इससे बचाव हेतु किसान भाई वावेस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर हर पौधे के जड़ों के पास डालें। अगर हम पशुपालन की बात करें किसान भाई, तो जुगाली करने वाले पशुओं को नई घास चरने से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल नेमोटेट बीमारी की संभावना रहती है, जिसमें एनीमिया और दस्त जैसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इसके लिए फेनवेंडाजोल 5 से 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से पशुओं को दें।
0: जी हाँ किसान भाई बहन, ये बातें हो रही थी ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची झारखंड से प्राप्त मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं की। और किसान भाई बहन, कार्यक्रम में अब हम लेते हैं छोटा सा अंतराल
1: और अंतराल के बाद पुनः हाजिर हुए।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनित।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
4: परम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच है?
3: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
6: इस संदेश के बाद पुनः आपका किसान वाणी कार्यक्रम में स्वागत है। आइए अब सुनते हैं भेंट वार्ता उद्यान एवं वानिकी। भेंट वार्ताकार हैं प्रमोद कुमार, कृषि विशेषज्ञ, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चिया की पलाम, और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी भाई संतोष कुमार।
7: भाइयों, आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं पलामू जिला के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियांकी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, जिनसे आज हम विस्तृत बातें करेंगे उद्यान और वानिकी की। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
8: नमस्कार।
7: सर्वप्रथम तो हमारे श्रोताओं को ये बताया जाए कि उद्यान और वानिकी के माध्यम से हमारे जो किसान भाई हैं वो किस प्रकार अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर पा सकते हैं।
8: किसान भाइयों, आप पूरे झारखंड में कहीं भी रहने वाले हों, खास करके पलामू, गढ़वा और लातेहार की बात हम लोग करें, तो मुझे जो यहाँ पर क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में 20 साल रहते रहते हो गया है, हमें लगता है कि कृषि क्षेत्र में अपनी आय को बहुत ज़्यादा आगे ले जाने के लिए, अभी देखिए कृषि में जो क्षेत्र में हम लोग आय उतना अच्छा नहीं आने के चलते हमारे नई युवा पीढ़ी के लोग जो है उसे जुड़ नहीं रहे, विमुख हो जा रहे हैं। नई युवा पीढ़ी बाहर कमाने चले जा रहे हैं और कृषि का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, और कृषि में भी लाभप्रद उतनी खेती नहीं कर पा रहे हैं। किसी साल वर्षा हुई तो अच्छी खेती हुई, और नहीं हुई तो वो भी खराब हो गई। तो एक तरह से ये ऐसा

0: लगता है कि हमें जितना से जितना इससे आय प्राप्त हो, तब नया युवा पीढ़ी से जुड़ेंगे और हमारी भी स्थिति को सुदृढ़ होगी। हमें लगता है कि हमारी जो जलवायु है, यहाँ की जो मौसम है, यहाँ की जो वर्षापात है और यहाँ की जो मिट्टी है, इस सब को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर अगर किसान उद्यान के क्षेत्र में यानी फल फलदार वृक्षों के क्षेत्र में और वानिकी वानिकी मतलब फॉरेस्ट के क्षेत्र में अगर हम लोग बांस की चर्चा कर लें, हम लोग सागवान की चर्चा कर लें, अगर इसके दोनों के कॉम्बिनेशन को लेकर अगर कोई कृषि का कार्य करते हैं तो यह कृषि का कार्य सर्वोत्तम कार्य है और उसमें से जो लाभ प्राप्त होगा आप सोच नहीं सकते हैं कि 5 से 6 लाख रुपया प्रति एकड़ आय, जहाँ पर हम लोग 10 से 20 हज़ार धान की खेती में आय सृजित करने में पसीना छूट जाता है, किसी साल वो हुआ किसी साल नहीं हुआ, बीज भी हम लोग देखते हैं कि खेतों में डाले और बीज भी चला जाता है। इन क्षेत्रों में इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो भी प्राकृतिक रूप से हमारे जो जंगलों में ये सब वृक्ष पाए जाते हैं तो यहाँ पर नेचुरली रूप से या इन चीज़ों को खेती करके आगे कर सकते हैं। तो हम लोग अगर कोई भी किसान के पास में रकवा है 1 एकड़ का, तो आप अपने खेतों में जो किनारे के ज़मीन में आप अगर सागवान की बात हम लोग कर रहे हैं, सागवान मतलब टीक
1: जी,
0: और हम लोग जो है बांस, ये दो चीज़ ऐसी है, बांस की खेती भारत सरकार ने बांस को जंगल से मुक्त कर दिया है और बांस को लगाने पर सब्सिडी भी दी जा रही है कि अगर बांस लगाएंगे तो सरकार आपको पैसा भी देगी। तो ये बांस इस तरह है कि बालकुआ प्रजाति का बांस जो है बहुत बड़े पैमाने पर होता है और 4 साल के बाद ये रिटर्न देना शुरू करता है। किसान भाई कोई ऐसी खेती नहीं है कि जो कि एक बार लगाएंगे तो 50 वर्षों तक आप सिर्फ काटने जाएंगे, लगाने में जो है 4-5 वर्ष में ये बांस जो है आय प्राप्त करने देने लगता है और हमें बहुत अच्छा प्राप्त कर। ये सब बांस जो है किसान भाई टिशू कल्चर लेबोरेटरी से तैयार होता है। अब जो नई खेती आ गई है, किसान अगर तकनीक के सहारे आगे नहीं बढ़ा, जो नवीनतम तकनीक कृषि में जो आए हैं उसका उपयोग नहीं कर पाएगा तो आय से वंचित हो जाता है। तो ये तकनीक इतनी फास्ट तकनीक है, जो हम लोग सागवान की बात कहें, ये अमूमन सागवान आप सुनते होंगे कि ये 40 वर्षों में तैयार होता है जो हमारे खेतों में है और एक में से 8-10 ब्रांच होते हैं तो उसका वैल्यू उतना नहीं आ पाता है लकड़ी का। लेकिन जब आप इस सागवान की बात करेंगे, टिशू कल्चर लेबोरेटरी से उत्पादित सागवान जो कि आपको 80 से 90 रुपया में 70 रुपया में जो भी पैसे में प्राप्त हो आपको अगर मिल जाती तो यह सागवान प्रथम वर्ष में जो है 15 से 20 फीट चला जाता है। ये मैंने पलामू के बहुत किसानों के पास में यह टिशू कल्चर लेबोरेटरी का सागवान लगाया है और इसकी ग्रोथ जो है ये 20 साल में तैयार हो जाता है। ये बांस सागवान की खेती करना लोग इसलिए दिक्कत दो चीज़ों के चलते दिक्कत समझते हैं, एक तो इसको काटने में लगता है कि इसको परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी, कहीं बहुत ज़्यादा परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, आप CO को लिख के देंगे आवेदन और अपने सकता को बताएंगे तो आपको परमिशन मिल जाएगा, लेकिन परमिशन मिलेगा ये 20 साल में 15 से 20 साल में ये तैयार हो जाती है। तो जो ये सागवान जो है लगाएंगे 2-2 मीटर की दूरी पर आप लगाएंगे, बांस को भी जो है हम लोग जो है 4-4 मीटर की दूरी पर लगाते हैं, तो ये किनारे किनारे पर आप 2 या 3 लाइन अगर 1 एकड़ का खेत है तो उसके चारों तरफ आप लगा देते हैं तो ये 20 वर्षों के बाद में जो सागवान जो वैल्यू देगा वो बहुत करोड़ों रुपया में आपको देगा, लाखों रुपया से करोड़ों रुपया, क्योंकि सागवान बहुत कीमती है। अब हम लोग कोई भी किसान 20 साल तक इसका इंतजार करने में थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, तो इसके बीच वाले जो एरिया है उसमें हम लोग फलदार वृक्ष की खेती करेंगे। मैं तो ये देखता हूँ कि जितने भी किसान यहाँ पर कर रहे हैं पहले से, अगर फलदार वृक्ष में अमरूद की बात करें, अब ये अमरूद जो है हमने बहुत सारे लोग अपने घरों में रखते हैं लगाते हैं वो अमरूद, और ये जो अमरूद है थाईलैंड गुआभा, थाईलैंड ताइवान पिंक गुआभा, ये ऐसे अमरूद हैं खेती हैं, आप अमरूद की खेती कर सकते हैं, आप जो है किन्नू की खेती कर सकते हैं, आप मौसमी की खेती कर सकते हैं, आप कटहल की खेती कर सकते हैं। ये सब फलदार वृक्ष जो है सब हाइब्रिड नस्ल के होते हैं और छोटे प्रजाति के होते हैं और ये 6 मंथ में 6 महीना में ही फल देना शुरू कर देते हैं, तो इसका वेटिंग पीरियड नहीं है। कहने के मतलब पौधा लगाएंगे और हमको 4 साल 5 साल में फल देगा तो उससे उतना इंटरेस्ट नहीं हो पाता है। तो ये सारे पौधे जो है छोटे प्रजाति के हैं और ये जो है 2.5 मीटर की दूरी पर हम लोग लगाते हैं, और जो है लगाने में 1 से 1.25 लाख रुपया एकड़ का खर्च होता है। और अगर हम लोग आय की बात करें तो 2 वर्षों के बाद ये 5 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आमदनी। ये किसान पलामू में, हरिहरगंज, छतरपुरी, ये सब एरिया में किसान कर रहे हैं, 50 एकड़ में कर रहे हैं, कोई 40 एकड़ में कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। और ये ऐसे है कि

0: वर्ष में 3 बार इस ये फसलों को अमरूद की देते हैं। और यह जो नस्ल ताइवान पिंक की हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में भी लगा हुआ है, प्रयोग के तौर पे हम लोगों ने बहुत इसको कर रहे हैं। और ये जो अमरूद है ये दुनिया का सबसे बेहतरीन क्वालिटी का है, ये 50 रुपये केजी के हिसाब से आप होल सेल में आप मार्केट में बिक सकते हैं। तो विपणन की भी समस्या नहीं है कि आप विपणन में आप ऐसे लग लें कि अगर कोई किसान इसको लगाता है तो ग्राहक जो खरीदने वाले हैं उनके घर आते हैं, इसीलिए उनका रेट भी अच्छा मिल पाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि मौसमी में हम लोग जो है नटाल प्रजाति का जो है हम लोग मौसमी को लगवाए हैं नागपुर से लाकर, और यहाँ पर यह बेहतरीन कर रहा है। तो इस तरह की खेती अगर करते हैं और साल में 2 बार हमको मौसमी किन्नू मिलता है और अमरूद 3 बार मिलता है, तो इस तरह से हम लोग 4 से 5 लाख रुपया प्रति एकड़ अगर आय करते हैं। थोड़ी सी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि इसके लिए हमको घेराबंदी करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फलदार वृक्ष हैं तो आप इनको नहीं घेराबंदी करेंगे तो चोरी होने की थोड़ी बहुत समस्या होती है, जानवरों से समस्या होती है। तो इसकी घेराबंदी की में थोड़ा सा ध्यान देंगे, और घेराबंदी के लिए अब जो है यहाँ पर भी फैक्ट्री लग गई है पलामू आसपास में कि आप तार के लिए खरीद के कर सकते हैं और 5 फीट की चौड़ा लेंथ की घेराबंदी करके खेती कर सकते हैं। तो वही वहाँ की जलवायु और यहाँ का मौसम, पलामू की भी मौसम उतना ही बेहतरीन और बहुत अच्छा है। हम यहाँ के किसान भी 5 से 6 लाख रुपया एकड़ का कमा रहे हैं और कमा सकते हैं इन दोनों चीज़ों को सहारा लग के। आप बानकी की फसलों को लगा के किनारे में आप लगा लें और बीच में जो है फलदार वृक्षों की लगा लें, और बीच में अगर 1 या 2 वर्ष तक सब्जी की खेती करें, यानी 3 टायर सिस्टम में अगर खेती करते हैं तो आप 4 से 6 लाख रुपये देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा आय प्राप्त होती है, लेकिन ये हम लोगों ने किसान ने इसको पा चुके हैं और इसके बहुत बड़े पैमाने पर हर साल इसको फैला रहे हैं। तो ज़रूरत है किसान भाई जागरूक होने की, ज़रूरत है इस चीज़ों को जाके देखने की और अपने खेतों में उतारने की। मैं तो यूँ कहूँगा कि क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में ये सारे चीज़ लगे हुए हैं, आप आएँ वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करें, देखें। और पौधों की भी व्यवस्था जो है आने वाले समय में हम लोग जो कि अभी हम लोग नागपुर और साउथ से मंगा रहे हैं जो कि वो हब बना हुआ है, और क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र से उत्तम क्वालिटी के पौधे भी प्राप्त कर सकते हैं।
1: प्रश्न उठता है कि हमारे किसान भाई किन किन पौधों की खेती कर सकते हैं, खासकर अमरूद की बातें तो हमने कर ली, और यहाँ किसके लिए जलवायु अनुकूल है?
0: किसान भाइयों फलदार वृक्षों की बात करें तो हम लोगों ने बताया कि मौसमी की बात करें, किन्नू की बात करें, संतरा की बात करें, अमरूद की बात करें, कटहल की बात करें। और ये जो कटहल हम लोग देखते हैं किसान भाई, मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि कटहल जो लगाते हैं तो 7 वर्षों में फल देता है। ये वियतनाम प्रजाति का कटहल जो है कि 1 साल में ये फल देना शुरू हो जाता है और छोटे छोटे फल देना शुरू करते हैं जो कि मार्केटेबल है, आसानी से बिक जाते हैं बाजार में। तो ये सारे चीज़ें जो है सब उपलब्ध हैं और अच्छे क्वालिटी के उपलब्ध हैं, आने वाले दिनों में ये सब क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियाकी में भी उपलब्ध।
1: और वानिकी से छुट्टी हुई कोई बात है?
0: वानिकी से छुट्टी हुई, इसकी प्रबंधन की बात हम लोग जब करेंगे तो प्रबंधन में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, और इसमें जो है जिसमें बात की है कि कभी भी अपने खेतों में लगाएंगे तो इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी की जो पौधे हैं उसमें ब्रांचिंग शुरुआत में लगेगा, थोड़ा सा रेट उसका ज़्यादा हो, लेकिन लेबोरेटरी में इतने अच्छे पौधे तैयार हो रहे हैं कि आप इसको लेकर ड्रैगन फ्रूट्स की भी खेती हम लोग जो है कर रहे हैं। इन सारे चीज़ों को जो नई टेक्निक्स हाई जो रेट्स से रिटर्न के पौधे हैं इसको आप लगाएंगे और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर थोड़ी सी पानी की भी व्यवस्था हो और घेराबंदी व्यवस्था कर कर हम इससे आय प्राप्त कर सकते हैं।
1: एक बहुत बड़ी बात सामने आई कि हमारे किसान भाई खाली पड़े जो जगह हैं वहाँ पर अंतर्वर्ती भी कर सकते हैं, सब्जियाँ भी लगा सकते हैं।
0: सब्जियों की, क्योंकि सब्जियों की खेती में जो है 2 महीने में रिटर्न आना लगता है, फलदार वृक्षों की खेती में मैंने बताया 6-6 महीने में आने लगता है। इस तरह से हमको लगता है कि कोई भी आदमी इन्वेस्ट करता है खेती में, कुछ पैसा लगाता है तो उसको आय जब प्राप्त होना शुरू होता है तो उसका मनोबल बढ़ जाता है और खेती को अच्छे ढंग से वो करते हैं।
1: अगर हम मिट्टी की बात करें कि हमारे किसान भाई किस तरह की मिट्टी में इसे कर सकते हैं?
0: किसान भाइयों अमूमन हम लोग जो फलदार वृक्ष या बानकी की बातें करते हैं तो जितने भी चीज़ें हैं बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त है। ऐसे सभी मिट्टी में ये काम खेती की ये हो सकता है, लेकिन इसमें जो ग्रोथ है बढ़वार जो होती है बलुई दोमट मिट्टी जो है, और जो कि पूरे पलामू और गढ़वा इस सब क्षेत्रों में हमारे यहाँ उपयुक्त बड़े पैमाने पर मात्रा में पाई जाती है, तो बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है।
1: आप थे पलामू जिला के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियाकी के जाने माने कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, आप कार्यक्रम से जुड़े और हमारे किसान भाइयों को उद्यान एवं वानिकी से

0: जुड़ी जानकारियां साझा की उनके साथ। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता उद्यान एवं वानिकी, 3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह में आर्द्रता रही 95%, जबकि शाम की आर्द्रता 87% दर्ज की गई। वर्षापात 0.02 मिलीमीटर।
0: और इसी जानकारी के साथ अब अपने भाई संतोष कुमार
2: और प्रदीप कुमार सिंह को दें इजाजत। नमस्कार।
3: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

हमारे श्रोता सुन रहे थे किसान भाइयों को संबोधित हमारा कार्यक्रम किसानवाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे क्रमशः प्रादेशिक समाचार एवं जिले में आजकल हमारे रांची केंद्र से। कृपया समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह उपलब्धि युवाओं को नवाचार में योगदान के लिए करेगी प्रेरित। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लागू होने और जन जागरूकता से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में आई कमी। SIR अभियान के तहत राज्य भर के शहरी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर में लोगों ने जमा किया इन्यूमरेशन फॉर्म। बचे हुए मतदाताओं से 20 जुलाई तक फॉर्म जमा करने की अपील। जामताड़ा में पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 27 मोबाइल फोन और 39 फर्जी सिम कार्ड बरामद। और बोकारो पुलिस लाइन मैदान में कोयला क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। 254 पुलिस कर्मी विभिन्न खेल स्पर्धाओं में हुए शामिल। और अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड

0: करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम वन भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम वन में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी। कोडरमा में आज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। झुमरी तिलैया में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि योजना के लागू होने और जन जागरूकता से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।
2: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये एक बहुत ही बड़ी पहल है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भारत सरकार की ओर से सीधे डीबीटी के माध्यम से उन्हें पैसे दिए जाते हैं ताकि गर्भवती माता का और बच्चों का वो अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। NFSH 6 का जो रिपोर्ट आया है उसमें अगर आप देखेंगे तो पहले मातृ मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर बहुत ही ज्यादा था, अब वो बहुत ही घटा है।
1: इस मौके पर विधायक अमित यादव सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहियाएं, गर्भवती महिलाएं उपस्थित थीं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। गिरिडीह परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य में सिंडिकेट और दलालों का शासन चल रहा है और विकास कार्य अवरुद्ध है।
3: संवाद में जो कोयला की चोरी हो रही है, मुझे लगता है कि राज्य के सरकार या मुख्यमंत्री खुद उसमें शामिल है और इसलिए चोरों के हौसला बड़ा बुलंद है और केंद्र सरकार तो इसलिए कोशिश कर रही है कोयला चोरी रोके, इसलिए ड्रोन या बाकी सारी चीजों का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ये सारे काम राज्य सरकार का है, कोयला चोरी को रोकना राज्य सरकार का काम है, इससे राज्य सरकार को राजस्व मिल रहा है।
1: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर राज्य के सभी शहरी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए आज विशेष सहायता शिविर लगाया गया। इस दौरान अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने जमशेदपुर पश्चिमी और ईटागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर इन्यूमरेशन फॉर्म संग्रहण और डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे 20 जुलाई तक अपना भरा और हस्ताक्षरित इन्यूमरेशन फॉर्म BLO को अवश्य जमा कर दें ताकि मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन की प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज रांची में प्रेस वार्ता कर JPSC PT 14 परीक्षा परिणाम में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कट ऑफ अंक सार्वजनिक करने, उत्तर पुस्तिकाएं उपलब्ध कराने और आयोग की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने की मांग की। उन्होंने बताया कि JPSC की कार्यशैली के खिलाफ 21 जुलाई को पूरे झारखंड में मशाल जुलूस निकाला जाएगा और 22 जुलाई को JPSC कार्यालय का घेराव किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह जिले की पुलिस ने कुख्यात नक्सली अजय महतो को गिरफ्तार कर लिया है। गिरिडीह SP डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि CRPF और जिला पुलिस ने अजय महतो को गिरफ्तार किया है। उस पर झारखंड सरकार ने 25 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। SP ने बताया कि नक्सली अजय के खिलाफ हत्या और सरकारी भवन को क्षति पहुंचाने समेत 68 मामले गिरिडीह जिला में दर्ज हैं।
4: इसकी गिरफ्तारी से झारखंड पुलिस को भी एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। गिरिडीह पुलिस के साथ साथ आने वाले समय में हम अपील करते हैं कि जो भी बचे खुचे यहाँ पे नक्सली हैं वो या तो आप समर्पण कर दें, अन्यथा आपके खिलाफ गिरिडीह पुलिस की, झारखंड पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी। वो अपने आप को ग्रामीण के रूप में आने का प्रयास कर रहा था और वो छुपते छुपाते जंगल में आ रहा था, लेकिन चूंकि वही गुप्त सूचना थी उसके आने की और जिस पर हम लोगों ने कार्रवाई किया है।
1: जामताड़ा जिले की पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आज 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधियों के पास से 27 मोबाइल फोन और 39 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं।
5: दो अलग अलग टीम का गठन किया गया था, इस टीम के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में कर्माटार के सियाटार और मट्टार जामताड़ा थाना क्षेत्र के कोसोई के पास से छापेमारी किया गया, जिसमें कुल 9 साइबर अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुल 27 मोबाइल और 39 सिम कार्ड बरामद हुआ है।
1: चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 लोगों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई गई है। धनबाद क्लब की लगभग 4.95 एकड़ भूमि को लेकर नया विवाद सामने आया है। जिला परिषद ने इस भूमि पर अपना दावा करते हुए DCLR न्यायालय में याचिका दायर की है। परिषद की अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि यदि न्यायालय में परिषद का दावा सिद्ध होता है तो संबंधित संस्थानों से नियमानुसार किराया वसूला जाएगा।
6: 170 एकड़ जमीन वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के नाम से मेंशन है। हम अपनी जो जमीन है उस पर हम लोगों ने दावा किया है और LRDC कोर्ट पे हम लोगों ने ये किया है कि हमारा है, हमारे पास खतियान है, सारे उसके पेपर हैं हमारे पास, उसको लेकर हम लोग दावा किए। अगर ये सिद्ध हो जाता है जितना जमीन उन्होंने एक्वायर किया है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का उसका उनको रेंट देना पड़ेगा।
1: हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने अपने निजी स्तर की सांसद तीर्थ दर्शन योजना के 1 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस अवधि में 5,000 से अधिक लोगों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा कराई गई। उन्होंने बताया कि अब श्राद्ध किट वितरण की सुविधा पूरे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों तक विस्तारित की जाएगी। बोकारो पुलिस लाइन मैदान में आज कोयला क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उत्तरी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए कहा कि खेल पुलिसकर्मियों में शारीरिक क्षमता, मानसिक दृढ़ता और टीम भावना का विकास करते हैं। पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने बताया कि प्रतियोगिता में धनबाद और बोकारो जिला पुलिस के कुल 254 खिलाड़ी क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, हैंडबॉल और एथलेटिक्स सहित विभिन्न स्पर्धाओं में भाग ले रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा यह उपलब्धि युवाओं को नवाचार में योगदान के लिए करेगी प्रेरित। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लागू होने और जन जागरूकता से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में आई कमी। SIR अभियान के तहत राज्य भर के शहरी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर में लोगों ने जमा किया इन्यूमरेशन फॉर्म। बचे हुए मतदाताओं से 20 जुलाई तक फॉर्म जमा करने की अपील। जामताड़ा में पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। 27 मोबाइल फोन और 39 फर्जी सिम कार्ड बरामद। और बोकारो पुलिस लाइन मैदान में कोयला क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। 254 पुलिसकर्मी विभिन्न खेल स्पर्धाओं में हुए शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: इस अंक में आप सुनेंगे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता।
1: रथ यात्रा को लेकर बुधवार को संपूर्ण जामताड़ा जिले में भक्तिमय वातावरण देखा गया। एकांत वास के बाद भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा श्रद्धालुओं को दिव्य दर्शन दिए। इस दौरान मंदिरों एवं पूजा स्थलों में भजन कीर्तन एवं मेले का भी आयोजन किया गया। जामताड़ा के गायछंद स्थित राधा माधव मंदिर से निकली रथ यात्रा में नगर पंचायत अध्यक्ष आशा गुप्ता शामिल हुई और जिले वासियों को सुख समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की।
2: रथ यात्रा का बहुत ही पवित्र दिन है, पूरा जामताड़ा भक्ति में बना हुआ है। चारों बगल भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। हमारे गायछंद में स्थित राधा माधव मंदिर से रथ निकल के हम लोग जामताड़ा गांधी मैदान के लिए प्रस्थान करेंगे। मैं अपनी ओर से सभी जामताड़ा वासियों को रथ यात्रा के अवसर पे सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ।
1: जामताड़ा जिले के सभी 6 प्रखंडों में निर्धारित तिथियों को चरणबद्ध प्रखंड स्तरीय ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिला परिवहन पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों एवं जांच प्रक्रिया से गुजरने के बाद लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किया जा रहा है।
3: इसके लिए जो जरूरी दस्तावेज है उसमें डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ चाहिए, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट या पैन कार्ड, रेसिडेंस का प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड और ब्लड ग्रुप का प्रूफ चाहिए। इसके साथ आप नजदीकी सीएससी या प्रज्ञा केंद्र में जाकर के आवेदन करें, फी ऑनलाइन जमा करें और स्लॉट बुक कर लें। कैंप में आप आए, ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट के बाद आपको पास अगर सफल होते हैं आप तो लर्निंग लाइसेंस दिया जाएगा।
1: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वां स्मरण दिवस के अवसर पर जामताड़ा जिले के कुंडहित स्थित डाक बंगला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी एवं पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने भाग लिया। इस क्रम में डॉक्टर मुखर्जी के जीवन वृत्त एवं नीतियों से कार्यकर्ताओं को सीख लेने की अपील की। इस दौरान श्री मरांडी ने वर्तमान राज्य सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की और जल जंगल जमीन को बचाने का आह्वान किया।
4: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कल के अप्रैल 29 जन जय बंगाल में व्यक्ति जन और 1957 में जनसंघ की स्थापना की। 1953 जम्मू कश्मीर में वो शहीद। यानी आप सोच सकते हैं छोटा सा कार्यक्रम कहाँ बंगाल में जन्म और जहाँ जम्मू कश्मीर यानी देश की एकता और अखंडता के लिए जहाँ जाने के लिए परमिट लगता था उसका उन्होंने विरोध किया था और बिना परमिट के प्रवेश किए थे। जब तक
1: जामताड़ा सदर अस्पताल में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर विकलांगता जांच शिविर का आयोजन किया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने बताया कि पंजीकृत विकलांगों की जांच मेडिकल बोर्ड के द्वारा करने के उपरांत प्रमाण पत्र लाभुक विकलांगों को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उनके घरों तक पहुँचा दिया जाता है। जामताड़ा जिले में मतदाताओं के बीच इन्यूमिनेशन फॉर्म का वितरण, संग्रहण एवं डिजिटाइजेशन कार्य जारी है। जिले में गुरुवार शाम तक 99.98% मतदाताओं के बीच इन्यूमिनेशन फॉर्म वितरित, जबकि 51.70% फॉर्म का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा।
0: अभी आप सुन रहे थे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

बगैर नहीं रह सकती कि मैं बेहद खुशनसीब हूँ जो ऐसे मुल्क में मैंने जन्म लिया जहाँ की फ़जाएँ संगीत से मुअत्तर हैं, जहाँ के लोग फ़न और फ़नकार से मोहब्बत करते हैं। मुझे भी एक फ़नकार की हैसियत से आपका बहुत प्यार मिला है। आपके प्यार का शुक्रिया हमेशा मैंने अपनी गायकी से अदा किया है।

लोग कहते हैं आज के मॉडर्न जमाने में क्लासिकल म्यूजिक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है, इसमें आवाम की कोई दिलचस्पी नहीं, मगर ऐसा कहने वाले ये भूल जाते हैं कि गज़ल और उसकी गायकी भी क्लासिकल मौसीकी का ही एक अंग है। इसे आज भी वही मकबूलियत हासिल है जो पहले थी। गज़ल अगर सही ढंग से पेश की जाए तो इसका जादू सर चढ़कर बोलता है।

ने जहाँ हर चीज को कुछ नयापन दिया, वहाँ मुसीकी ने भी नई कदरों की कदर की है। मैं नएपन की मुखालिफ नहीं, लेकिन ये नयापन वहीं तक मुनासिब है जहाँ तक आज के फनकार और मुसीकार नएपन के चक्कर में तहजीब का दामन न छोड़ें। गजलें पहले भी गाई जाती थीं, आज भी गाई जाती हैं, मगर असल में गजल वही कहलाने की मुस्तहक है जिसमें गजल का रवायती अंदाज मौजूद हो। मिसाल के तौर पर गजल की ये बंदिश सुनिए जो मुझे बहुत पसंद है।

गजल में एक ऐसी कैफियत है, और अच्छे शोरा की गजलों में तो सुभान अल्लाह सुभान, सुन के तबीयत खुश हो जाती है। तो बताइए ये सिर्फ पढ़ के जो लुत्फ आता है, और गाने के बाद इसमें क्या लुत्फ पैदा होगा कि अगर वो उस अंदाज से गाई जाए जिस तरह गजल गाया करते थे, तो मेरा ख्याल है कि इंसान बगैर रोए तो नहीं उठना चाहिए उसको।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत गज़ल का कार्यक्रम स्वरांजलि। स्वरांजलि में आप सुन रहे थे बेगम अख्तर की आवाज़ में गज़ल। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं विज्ञान जगत कार्यक्रम। आज का विषय है पृथ्वी की उत्पत्ति, संकलन और वाचन प्रीति कुमारी का है।
1: विज्ञान जगत, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रीति। श्रोताओं, आज मैं आपको बता रही हूं ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। अन्य ग्रहों के भांति पृथ्वी का आरंभ भी ग्रहाणुओं के एक ठंडे समूह से हुआ है। आंतरिक ग्रहों के क्षेत्र में ये मुख्यतः सिलिकॉन, लोहा, मैग्नीशियम के यौगिकों तथा सूक्ष्म मात्रा में अन्य तत्वों से बने, जबकि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के क्षेत्र में ग्रहाणु मुख्यतः हाइड्रोजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन से बने थे। जैसे जैसे और अधिक ग्रहाणु पृथ्वी से टकराते रहे तथा इसके साथ जुड़ते गए, उसकी गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित होती गई। यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम के परमाणुओं के रेडियो एक्टिव विघटन तथा पृथ्वी के संपीड़न के कारण भी ग्रह धीरे धीरे गर्म होता गया, जिससे अंततः उसकी उत्पत्ति के 80 करोड़ वर्ष बाद यह पिघल गया। इस घटना के कारण पृथ्वी की सतह से उसकी उत्पत्ति के पहले 80 करोड़ वर्ष तक के समस्त रिकॉर्ड नष्ट हो गए। पिघलने के बाद पृथ्वी ने गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के अंतर्गत स्वयं को पुनर्व्यवस्थित करना प्रारंभ कर दिया। पृथ्वी का ताप बढ़ने पर लोहा पिघल गया। पिघला हुआ लोहा बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में बह सकता था। ये भारी बूंदें पृथ्वी के केंद्र की ओर गिरने लगी। इस प्रक्रिया में पृथ्वी के अंतरंग में स्थित हल्के पदार्थों का स्थान लोहा ने ले लिया। इस उत्स्रवण के कारण हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए और पूर्वकालीन भूपर पट्टी का निर्माण हुआ। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से केंद्र पर पहुंचे लोहे से पृथ्वी की कोर का निर्माण हुआ। पृथ्वी इस प्रकार परतों से संगठित होने की प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं। विभेदन के दौरान पूर्वकालीन पदार्थों के परमाणुओं में प्रगहित गैसों तथा जल वाष्प मुक्त हो गई, जिससे कि वायुमंडल तथा महासागरों की उत्पत्ति हुई। यह उथल पुथल ऐसी थी जैसे कि पृथ्वी भड़क उठी हो। विभेदन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी तीन प्रमुख परतों में संगठित हो। ये परत है भूपरपट्टी, प्रवार और क्रोड कहलाती है। भूपरपट्टी का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जिसके ऊपर वायुमंडल का आवरण। अब हम आपको बताते हैं पृथ्वी की संरचना के बारे में। पृथ्वी की भूपरपट्टी कैसी है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत सेब अथवा संतरे के छिलके के समान है। इसकी मोटाई भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न है। महाद्वीपों में यह 35 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है। सागर के नीचे भूपरपट्टी पतली होती है, लगभग 10 किलोमीटर, और उत्पत्ति के समय से ही भूपरपट्टी लगातार टूटती रही है और पुनः संगठित होती भी रही है। इस प्रक्रिया में नए द्वीप और सागर भी बनते रहे हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा उदाहरण हम आपको दे देते हैं। जैसे सुनामी आया था, तो सुनामी आने के बाद कई जगह पानी में डूब गए थे और कई ऐसे पिंडों का भी निर्माण हुआ था जो पानी से बाहर आ गए थे। दूसरा परत होता है प्रवार। भूपरपट्टी तथा क्रोड के मध्य का हिस्सा प्रवार कहलाता है। यह भूपरपट्टी की तली से लेकर के केंद्र की ओर 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ है। अभी भी हमें प्रवार के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं है, किंतु यह विश्वास किया जाता है कि मुख्यतः लोहे तथा मैग्नीशियम सिलिकेट से बना है। प्रवार के उच्च दाब के कारण ये चट्टानें सामान्यतः ठोस हैं, किंतु लंबी अवधि के रहने के कारण और तनाव के कारण उनमें बहने की प्रवृत्ति भी कभी कभी उत्पन्न हो जाती है, देखी जाती है। अब हम आपको पृथ्वी की तीसरी परत क्रोड के बारे में बताते हैं। क्रोड का आंतरिक भाग ठोस गोले के रूप में है, जिसके चारों ओर तरल आवरण होता है। पृथ्वी के केंद्र पर ताप लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस होता है तथा दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में लगभग 37 लाख गुना होता है। इस उच्च दाब के कारण ही उच्च ताप के बावजूद क्रोड के आंतरिक भाग में लोहा ठोस रूप में रहता है, जबकि क्रोड के भीतर आवरण में लोहा पिघल जाता है क्योंकि यहाँ दाब अपेक्षाकृत कम होता है। पृथ्वी के अंतरंग में गर्म भागों से इसकी सतह के अपेक्षाकृत ठंडे भागों की ओर ऊर्जा प्रवाह के कारण पृथ्वी किसी इंजन की तरह व्यवहार करती है। यह ऊर्जा प्रवाह किसी समस्त आंतरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब हम आपको पृथ्वी के बारे में बता ही रहे हैं, तो क्यों ना पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। सौर्य पूरे सौर्य मंडल में यही एक उपग्रह है जो सामान्य उपग्रह से बहुत बड़ा है। प्रायः सभी उपग्रह अपने मूल ग्रह के आकार का आठवां भाग है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी का चौथाई है। पृथ्वी के 12,700 किलोमीटर व्यास की तुलना में चंद्रमा का व्यास 3,475 किलोमीटर है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के छठे भाग के बराबर है। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 4,06,000 किलोमीटर है, जबकि न्यूनतम दूरी 3,64,000 किलोमीटर है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27.5 दिन यानी कि 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11 सेकंड में इतने समय में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति गैसों को बनाए रखने में असमर्थ है। इसलिए चंद्रमा में कोई भी ध्वनि भी नहीं है क्योंकि ध्वनि वायु के माध्यम से ही संचरित या कंपन होती है। चंद्रमा पर तापमान बहुत अधिक होता है। दिन में इसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और रात में घटकर -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पृथ्वी तल तक पहुंचने के लिए चंद्रमा के प्रकाश को 1.3 सेकंड लगते हैं, जबकि सूर्य की किरण को 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं पृथ्वी तक पहुंचने के लिए। पृथ्वी पे जीवन का उद्भव कैसे हुआ इसके बारे में आपको बताते हैं। पृथ्वी पर जीवन का उद्भव लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है, जिसके प्रमाण स्वरूप साइनोबैक्टीरिया के जीवाश्म मिले हैं। जीव उद्गम की पुरानी परिकल्पना के अनुसार अजीवित वस्तु से जीवन का विकास हुआ है, परंतु लुई पाश्चर के प्रयोग के द्वारा यह परिकल्पना गलत साबित हुई है। सन 1929 में रूस के प्रसिद्ध जीव रसायनज्ञ ए.आई. ओपेरिंग ने नवीनतम खोजों के आधार पर जीवन के उद्भव की जीव रसायन परिकल्पना या भौतिकवाद या पदार्थवाद प्रस्तुत की थी। सन 1936 में उन्होंने पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ इस परिकल्पना की व्याख्या की। ओपेरिंग की परिकल्पना के सामान्य ऐसी ही परिकल्पना सन 1929 में जेबीएस ने दी थी। इनके अनुसार आज से करोड़ों वर्ष पहले इस आदिकालीन पृथ्वी पर इस प्रकार की अवस्थाएं थी कि विशेष भौतिक रासायनिक क्रियाओं से नए नए अकार्बनिक यौगिक बने। इन यौगिकों के विशिष्ट रूप में संगठित एवं संघनित होने पर जटिल यौगिक बने और फिर उनके समुच्चय में एक रचना का निर्माण हुआ जिसमें जीवन के लक्षण विद्यमान। निर्माण में हुई ऐसी विभिन्न घटनाओं का निम्न चरणों में वर्णन किया गया है, जिसमें प्रथम चरण में सरल यौगिकों के निर्माण के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अनुसार धरातलीय गैस में कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन व हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में थे। इसके परस्पर संयोग में जल यानी कि H2O अमोनिया NH3 मीथेन CH4 जैसे प्रारंभिक यौगिक बने, परंतु तापमान अधिक होने के कारण ये सब गैसों के रूप में ही वायुमंडल में रहे। साथ ही पृथ्वी पर लोहे और निकल आदि ने इन गैसों के साथ सहयोग करके नाइट्राइड और कार्बाइड बनाए। दूसरे चरण में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। पृथ्वी का ताप कम होने पर मीथेन के अणुओं में एथेन प्रोपेन ब्यूटेन आदि संतृप्त बहुलक हाइड्रोकार्बन्स का निर्माण हुआ। स्टेनले मिलर नामक वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर विद्यमान परिस्थितियों को उत्पन्न कर जीवन के उद्भव के रहस्य को खोजने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वैज्ञानिकों ने मिलर के प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि आज से 3-4 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी, वाष्प, बादलों, मीथेन, अमोनिया या हाइड्रोजन जैसे गैसों से बने वायुमंडल से घिरी हुई थी। बादलों में विद्युत प्रवाह के कारण एमिनो अम्ल व जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बने कार्बनिक पदार्थ समुद्र में एकत्रित होने लगे, क्योंकि उस समय तक इनको क्षय करने वाले जीवों जैसे कि बैक्टीरिया आदि का उद्भव नहीं हो पाया था, और साथ ही उस समय मुक्त ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं थी जिससे इसका ऑक्सीकरण न हो सका। तीसरे चरण में जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ, जैसे कि शर्कराएं, ग्लिसरॉल, एमिनो अम्ल, बसा अम्ल, ब्यूटीन्स, पायरामिडीन्स। इन यौगिकों के इकाइयों के रूप में जुड़ने से जटिल कार्बनिक यौगिकों के दीर्घाणुओं या पॉलीमर जैसे कि पॉलीसेक्राइड्स, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स व न्यूक्लियोवाइड्स का निर्माण हुआ। इसी प्रकार हजारों न्यूक्लियोइड्स के क्रम में जुड़ने से अत्यंत जटिल प्रकार के अणुओं का निर्माण हुआ, जिसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। चौथे चरण में अपनी प्रतिलिपि बनाने की क्षमता अर्थात जनन का प्रारंभ हुआ। इसके विकास से निर्जीव व सजीव के बीच की एक सीमा निर्धारित हो गई। पांचवें चरण में प्रारंभिक कोशिकाएं संश्लेषण, वृद्धि तथा परिवर्धन करने लगी। छठे चरण में आदि जीवों में पोषण विधियों का विकास हुआ। परजीविता, मित्र जीविता, प्राणी सदृशता, पोषण विधियों के पश्चात इन चरणों में स्वपोषी पोषण विधि का भी विकास हुआ। ये स्वपोषी जीव जो दो प्रकार के थे, रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी। अंतिम चरण में आधुनिक वायुमंडल का निर्माण हुआ। इस घटनाक्रम में वायुमंडल में मुक्त ऑक्सीजन आ जाने से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। हैंडेल ने आदि समुद्र की उबलता हुआ सूप कहा। आदि समुद्र में ही जीवन के उद्गम की संभावना थी। प्रारंभिक सरलतम जीव सर्वप्रथम समुद्र में ही उत्पन्न हुए। समस्त जीवों के शरीर में लवण की आवश्यकता होती है और जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा खनिज लवण प्रचुर मात्रा में समुद्र में ही उपलब्ध थे। इससे कि यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जीव की उत्पत्ति समुद्र में ही हुई है। तो श्रोताओं, आज हमने आपको बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कैसे पृथ्वी एक आग का गोला से एक सॉलिड से फिर उसके अंदर जो भी पदार्थ थे वो लिक्विड में बदलकर फिर वाष्प में बदलकर कि अपना वायुमंडल खुद निर्माण करते हैं, और कैसे कैसे हमारी पृथ्वी मतलब हमारी पृथ्वी बनती है जो आकाश से देखने पे नीले रंग की दिखाई देती है, वो हमारी पृथ्वी बनती है। उसके बाद फिर हमने आपको बताया कि पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, ये भी एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया के माध्यम से ही होती है, और इसमें पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया और जीवों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया दोनों ही बहुत ही जटिल है और समझने की ज़रूरत। और श्रोताओं, मुझे आशा है कि आपको ये कार्यक्रम यानी कि विज्ञान जगत बहुत पसंद आया होगा। मैं अगले एपिसोड में आपके लिए कुछ और जानकारी और नए रोचक तथ्यों के साथ आपके बीच फिर आऊँगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते।
0: अभी आप सुन रहे थे विज्ञान जगत कार्यक्रम, संकलन और वाचन प्रीति कुमारी का था। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। चित्रपट से सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली पेशकश फिल्म

जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार, जहाँ चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार। जहाँ चार यार महफिल रंगीन जमे, महफिल रंगीन जमे दौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार। जहाँ चार यार, जहाँ चार

टान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे। आ

दिन भी बन गई भोली, कुंडी खोली हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं, ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार।

बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी।

पीना छूट गया, पीना छूट गया, बीवी ने इतना दिया प्यार, पीना छूट गया। फिर दोनों ऐसे मिले, हे हे, फिर दोनों ऐसे मिले, प्यार में ही डूब गए। प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार, जहां चारिया

0: 73वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, फिल्म मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
2: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। कल की 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना यूबीटी सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
3: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
4: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
5: टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री
6: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
5: इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
0: होर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमेरिका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसेलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले 2 दिन में डिसेलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसेलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंताएं बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में 1 व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थी। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा HD कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। PV सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही PV सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई है। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु, प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news.

0: Omasim Kumar Sinha said Bhangar, directed by Sumira Roy, has bagged the Best Non-Feature Film Award. Best Short Film is Hamsafar in Marathi. He said Best Direction Award will be given to Anand L. Rai for Statue of Unity Ekta Ka Pratik.
1: Best Direction, Statue of Unity, Ekta Ka Pratik, Hindi, Citation, for creatively chronicling the making of the world's tallest statue through dynamic cinematic storytelling, transforming and engineering marvel into a stirring tribute to Sardar Vallabh Bhai Patel, unity and national pride, Director Anand L. Rai. Best Short Film, Hamsafar Marathi. Through a compassionate cinematic narrative, the film reveals how ordinary objects become deeply personal and how their loss opens a poignant void, sparking and heartfelt search for memory, identity and emotional connection.
0: Best Film Critic Award will be given to Sanjeev Srivastav. Award for Best Writing on Cinema will be given to K. Pradeep Kumar Shetty for his Kannada book Nani Iruvude Nimagagi Nadi Iruvude Nanagagi Kannada Cinema the Tattva Mattu Rajakiya. A report.
2: Rajkumar Periyasamy will get Best Direction Award for her Tamil film Amaran. Sanjay Mishra will receive the award for Best Actor in a Supporting Role, while Sachana Namidas and Rupashree Varkadi will receive the award for Best Actress in a Supporting Role. Shashwat Sajdev and G.V. Prakash Kumar will get the award for Best Music Direction. Abhay Jodhpurkar and Vaikom Vijayalakshmi will receive the Best Playback Singer Award. Telugu movie Chinna Kathakadu will get the Best Children Film Award. Kalki 2898 AD was named Best Feature Film, providing wholesome entertainment. Captain Miller has got award for Best Film Promoting National Social Values. Best Gujarati Film is Maran. Best Oriya Film is Lahari. Best Kannada Film is Mithya. Best Manipuri Film is Sunita. And Best Gadwali Film is Dholi. With Dipendra, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
0: Lok Sabha Speaker Om Birla has given approval for a separate seating in the House for the 20 rebel TMC MPs who have joined Nationalist Citizens Party of India, NCPI. Mr. Birla also gave his approval to the merger of 6 Shiv Sena UBT MPs with the Shiv Sena led by Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde. With the merger of the 6 MPs, the strength of the Shiv Sena has gone up to 13 from 7 in the lower house of Parliament. The government has convened an all-party meeting tomorrow ahead of the monsoon session of Parliament beginning on Monday. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure smooth functioning of both houses of Parliament. The monsoon session will commence on Monday and continue till the 13th of next month. During the session, several important legislations are scheduled to be taken up for discussion and passage. In Gujarat, 5 people were killed and several others injured today after a massive fire broke out at a firecracker manufacturing and processing unit on the Ramol Gutrad Road in Ahmedabad. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have expressed deep grief at the loss of lives in the fire and prayed for the speedy recovery of the injured. The Prime Minister announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. Our correspondent reports that the fire has been brought under control.
3: Following the tragic outbreak of a massive fire at fireworks factory in Ahmedabad, Rapid Action Force personnel from the nearby Vastral camp rushed to the site immediately to rescue the trapped workers and retrieve the bodies. The injured have been admitted to nearby hospitals for urgent medical treatment, while the Ahmedabad Fire Brigade has brought the blaze under control and initiated the cooling operations. Senior civic officials, including municipal commissioner and mayor, visited the spot to assess the situation. Expressing deep condolences over the tragedy, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel announced an ex gratia assistance of 4 lakh rupees to the next kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured. Preliminary police investigation suggests that the manufacturing unit was operating illegally. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
0: Union Home Minister Amit Shah has extended condolences over the tragic accident at a firecracker factory in Ahmedabad. In a social media post, Mr. Shah said every possible medical facility is being provided to the injured. In Andhra Pradesh, 5 fishermen lost their lives after drowning in the Godavari River near Golagudam village of Polavaram district today. The victims had gone to the river for fishing when they were reportedly swept away by the strong current. An investigation has been launched to ascertain the circumstances. Chief Minister N. Chandrababu Naidu expressed profound grief over the incident and conveyed his condolences to the bereaved families. In West Bengal, Union Home and Cooperation Minister Amit Shah held several meetings at Uttarkonna in Siliguri today. More from our correspondent.
4: Union Home Minister Amit Shah today chaired meetings on the implementation of new criminal laws and on birth and death registration at Uttarkonna in Siliguri. Discussions were held on number of issues including the border security, law and order situation along with the security of Chicken Neck. In addition to the Chief Minister of West Bengal Shubhendu Adhikari, superintendents of police, district magistrates of North Bengal and senior BSF officials attended the meetings. Earlier, he took part in the Prohori Sammelan at the Juma Gach BSF camp near Siliguri, where he interacted with BSF personnel and took stock of border security scenarios in North Bengal. Mr. Shah planted trees and laid foundation stone for number of projects. Kollan Laha reporting from Kolkata for Akashvani News.
0: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back, here with us on the news at 9. India's first privately developed orbital rocket Vikram 1 under Mission Agman has successfully reached orbit after completing its final burn and injecting payloads into a 450-kilometer orbit. The liftoff took place at 12.05 p.m. from the Satish Dhawan Space Center at Sriharikota in Andhra Pradesh. Our correspondent reports that the milestone makes India the third country in the world to achieve private orbital launch capability. Developed under Mission Agman, the rocket is intended to provide cost-effective and flexible launch services for small satellites. Prime Minister Narendra Modi congratulated the Skyroot Aerospace team over a telephone call. Mr. Modi said the successful launch of Vikram 1 under Mission Agman is a major milestone in India's journey towards self-reliance in the space sector. Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh also congratulated Team Skyroot on the successful launch of Vikram 1. The United States and Iran exchanged fresh strikes today as fighting over the Strait of Hormuz intensified. The heaviest damage was reported in Kuwait, where Iranian strikes hit a water desalination plant and an oil facility, injuring several people and disrupting power generation. It was the second attack on a desalination plant in 2 days, raising concerns in a country that relies on desalination for about 90% of its drinking water. Kuwait Ministry of Foreign Affairs condemned the attacks, calling it a heinous Iranian aggression targeting critical civilian infrastructure, and accused Iran of violating the international law. On the other hand, the U.S. Central Command said its latest strikes targeted Iranian surveillance sites, military logistics infrastructure, underground weapon storage, and maritime capabilities this morning. Iranian authorities said at least 50 people have been killed and more than 500 injured in U.S. strikes in the past 3 weeks, including 8 killed in a strike on a bridge yesterday. The conflict has increasingly centered on the Strait of Hormuz following the collapse of an interim ceasefire. The Indian Olympic Association IOA today announced that Olympic medalists Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain will serve as India's flag and baton bearers at the opening ceremony of the Commonwealth Games in Glasgow. The opening ceremony of the scaled down multi-sport event will be held on July 23rd at the OVO Hydro Arena. In a press release, IOA President P.T. Usha said the honour recognises their outstanding contribution to Indian sport and wished the entire contingent success at the Games. Mirabai has been India's leading weightlifter for close to a decade. She won the silver medal in the women's 49-kilogram category at the Tokyo Olympics in 2021 and followed it with gold at the 2022 Commonwealth Games in Birmingham. Lavina Borgohain secured a bronze medal at the Tokyo Olympics and went on to win gold at the 2023 World Boxing Championships. In FIFA World Cup, European rivals France and England will lock horns in the third-place playoff match at the Miami Stadium tonight. The match is scheduled to begin at 2:30 a.m. Indian Standard Time. Argentina and Spain will face each other in the finals of FIFA World Cup at the New York, New Jersey Stadium tomorrow night. In badminton, Indian shuttler and two-time Olympic medalist P.V. Sindhu has reached the women's singles final at the Japan Open in Tokyo today. She entered the final after her opponent and world number 4 Chen Yufei of China retired during the second game of the match. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal, Sikkim and Uttarakhand tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Jammu Kashmir, Jharkhand, Kerala, Mahe, Odisha and parts of Northeast India during the next 2 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. 72nd National Film Awards announced. Yami Gautam wins Best Actress Award for Article 370. Mammootty for Brahma Yugam and Karthik Aryan for Chandu Champion share Best Actor Award. 20 rebel TMC MPs who joined National Citizens Party of India get Lok Sabha Speaker's approval for separate seating in the House. Massive fire at a firecracker factory in Ahmedabad claims 5 lives. Prime Minister Narendra Modi expresses grief. US-Iran fighting over Strait of Hormuz escalates with attacks on key infrastructure and military targets. Olympic medalist Mirabai Chanu and Lavlina Borgohain to be India's flag and baton bearers at opening ceremony of Commonwealth Games in Glasgow. That is all in the news at 9. Good night.
5: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। बहत्तरवीं कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया जाएगा। ब्रह्मा युगम के लिए ममूती और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को मुश्तरका तौर पर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिए जाने का ऐलान किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के जो 20 सरकार ने पार्लियामेंट नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए थे उन्हें लोकसभा में अलहदा ग्रुप के तौर पर बैठने के लिए स्पीकर की मंजूरी मिल गई है। अहमदाबाद में आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगने से 5 अफराद की मौत हो गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस वाकये पर दुख का इजहार किया है। अब नए हुरमुस के मामले पर अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई में तेजी आ गई है। अहम बुनियादी ढांचे और फौजी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ओलंपिक खेलों में तमगे जीतने वाली मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो में होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों की इफ्तिताही तकरीब में भारत की परचम बरदार खिलाड़ी होंगी। और फीफा वर्ल्ड कप में तीसरे मकाम के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 को 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स में बेहतरीन फिल्म का अवार्ड मिला है। आज शाम नई दिल्ली में कौमी फिल्म अवार्ड्स का ऐलान करते हुए फीचर फिल्म जुमरे की ज्यूरी के चेयरमैन जयराज ने कहा कि ममूती और कार्तिक आर्यन को उनकी फिल्मों ब्रह्मा युगम और चंदू चैंपियन के लिए बेहतरीन अदाकार के जुमरे में कौमी फिल्म अवार्ड मिला है। उन्होंने कहा कि फिल्म 370 में उनकी अदाकारी के लिए यामी गौतम को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया जाएगा। गैर फीचर फिल्म के ज्यूरी के चेयरमैन असीम कुमार सिन्हा ने कहा कि सुमेरा रॉय की हिदायतकारी में भंगार को बेहतरीन गैर फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। बेहतरीन मुख्तसर फिल्म मराठी में हम सफर रही। उन्होंने कहा कि बेहतरीन हिदायतकारी का अवार्ड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए आनंद एल राय को दिया जाएगा। बेहतरीन फिल्म क्रिटिक अवार्ड संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। सिनेमा में बेहतरीन तहरीर के लिए के प्रदीप कुमार शेट्टी को उनकी कन्नड़ किताब के लिए अवार्ड दिया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
6: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए बेहतरीन हिदायतकारी का अवार्ड दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सपोर्टिंग रोल के लिए बेहतरीन अदाकार का अवार्ड मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को बेहतरीन मौसीकार का अवार्ड मिलेगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना कथा कादू को बेहतरीन बच्चों की फिल्म का अवार्ड देने का ऐलान किया गया है। मजमुई तौर पर तफरीह फराहम करने के लिए काल्की 2898 एडी को बेहतरीन फीचर फिल्म करार दिया गया है। दिल्ली से दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
5: लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने टीएमसी के उन 20 बागी अरकान पार्लियामेंट के लिए ऐवान में अलहदा से बैठने को मंजूरी दे दी है जो नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई में शामिल हुए थे। जनाब बिरला ने शिवसेना यूबीटी के 6 अरकान पार्लियामेंट के महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे की क्यादत वाली शिवसेना में जम किए जाने को भी मंजूरी दे दी है। 6 अरकान पार्लियामेंट के शामिल होने के बाद पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी में शिवसेना के अरकान की तादाद 7 से बढ़कर 13 हो गई है। सरकार ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल कल सभी पार्टियों की मीटिंग तलब की है। ये इजलास पीर से शुरू हो रहा है। कल की मीटिंग के दौरान सरकार दोनों ऐवानों का कामकाज खुशउसलूबी के साथ चलाने के लिए सभी सियासी पार्टियों से तआवुन की अपील करेगी। पार्लियामेंट का मानसून इजलास अगले महीने की 13 तारीख तक जारी रहेगा। मिशन आगमन के तहत भारत का पहला निजी तौर पर तैयार करदा मदार में जाने वाला रॉकेट विक्रम 1 इंजन का आखिरी मरहला मुकम्मल करने के बाद और 450 किलोमीटर बुलंद मदार में पेलोड कामयाबी से पहुंचाने के बाद कामयाबी के साथ मदार में दाखिल हो गया है। इस रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा में वाक सतीश धवन खलाई मरकज से आज 12:05 पर खला में भेजा गया। इस कामयाबी के साथ भारत निजी शोबे के जरिए मदार में रॉकेट लॉन्च करने की सलाहियत हासिल करने वाला दुनिया का तीसरा मुल्क बन गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर स्काई रूट एरोस्पेस को मुबारकबाद दी। उन्होंने फोन पर स्काई रूट की टीम से बात की और इस तारीखी खलाई कामयाबी को सराहा।
7: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
5: साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इस कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद दी है। गुजरात के शहर अहमदाबाद में रामोल गटराड रोड पर आतिशबाजी का सामान तैयार करने और इसे प्रोसेस करने के यूनिट में जबरदस्त आग लगने से 5 अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग लगने के इस वाकये में लोगों की अमवात पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मकामी इंतजामिया मुतासिरा कारकुनों को हर मुमकिन इमदाद फराहम कर रही है। जनाब मोदी ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से 2-2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है जबकि जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी अहमदाबाद में आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री के अलमनाक वाकये पर ताजियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने कहा कि जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलत फराहम की जा रही है। मजीद तफसील हमारी नामा निगार से।
8: आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगने के अलमनाक वाकये के तनाजुर में तेजी के साथ कार्रवाई करने वाली फोर्स के अहलकार फौरी तौर पर वहां पहुंच गए और आग के शोलों में घिरे हुए मकाम पर फंसे हुए और जख्मी होने वाले कारकुनों को बचाकर बाहर निकाला। हलाक होने वाले कारकुनों की लाशें भी बरामद कर ली गई हैं। जख्मियों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। अहमदाबाद के फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर और मेयर समेत आला ओहदेदारों ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए उस मकाम का दौरा किया। रियासत के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने ताजियत का इजहार करते हुए मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 4-4 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पुलिस की इब्तदाई छानबीन से मालूम हुआ है कि आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली ये फैक्ट्री गैर कानूनी तौर पर चल रही थी। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
5: आंध्र प्रदेश में पोलावरम जिले के गोला गुडयम गांव के नजदीक 5 माहीगीरों के गोदावरी दरिया में डूबने से मौत हो गई। मालूम हुआ है कि ये माहीगीर मछलियां पकड़ने के लिए दरिया में गए थे कि पानी के तेज बहाव में बह गए। 5ों माहीगीरों की लाशें दरिया से बाहर निकाल ली गई हैं। हुक्काम ने बताया कि ये सभी एक ही गांव के रहने वाले थे और इनमें से 3 खवातीन थीं। इस वाकये की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू की गई है। रियासत के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इस वाकये पर दुख का इजहार किया है और सोगवार कुनबों से ताजियत जाहिर की है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल वसीले से रामनगर देहरादून एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया, जो रामनगर को देहरादून से मरबूत करने वाली पहली बराह रास्त एक्सप्रेस ट्रेन है। इस नई ट्रेन की शुरुआत से उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल खित्तों के दरमियान रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की खातिर आवाम की देरीना मांग पूरी हो गई है। लोगों से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि रामनगर देहरादून एक्सप्रेस दोनों खित्तों के दरमियान रेल कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करेगी।
9: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है, कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
5: शिमाली रेलवे ने जम्मू डिवीजन में कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन बाजाब्ता तौर पर रखने का ऐलान किया है। इसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने बताया कि इस सिलसिले में जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि मस्कुरा स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जो पहले के कोड KTHU की जगह लेगा। दीगर कोई तब्दीली नहीं की गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज मगरबी बंगाल में सिलीगुड़ी में जुमा गाज के मकाम पर सरहदी हिफाजती फोर्स BSF कैंप का दौरा किया और BSF के अहलकारों के साथ गुफ्तगू की। जनाब अमित शाह ने पौधे भी लगाए और प्रहारी सम्मेलन में शिरकत की। सरहदी इलाकों को मुस्तहकम करने, पैदाइश और मौत के रजिस्ट्रेशन, नीज अमन कानून की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वजीर अजम HD देवेगौड़ा की अहलिया चेनम्मा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि चेनम्मा को उनकी इनकिसारी और माशरे की खिदमत के उनके जज्बे के लिए याद किया जाएगा। वजीर अजम ने मजीद कहा कि दुख की इस घड़ी में वो जनाब देवेगौड़ा और उनके पूरे कुनबे के साथ हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी ताजियत का इजहार करते हुए कहा कि चेनम्मा अपने कुनबे के लिए मजबूती, वक़ार और पुख्ता अजम की अलामत थीं। अमले अवामी शिकायत और पेंशन के महकमे के वजीर ममलिकत डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि शिकायत के इजाले के तहत शिकायतों को निपटाने से आगे कार्रवाई की जानी चाहिए और पेंशन याफ्ता अफराद की तशवीश और उनकी उमंगों पर तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। डॉ सिंह ने कहा कि पेंशन से मुतालिक तनाजियात इंतजामी तरीके से हल किए जाने चाहिए ताकि पेंशन याफ्ता अफराद को अदालतों से रुजू करने पर मजबूर न होना पड़े। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में पेंशन मुकदमात के बारे में दूसरी कौमी वर्कशॉप से खिताब करते हुए कही। ईरान के कानूनी उमूर और बैन अल-अक़वामी उमूर के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने अमरीका पर समझौते की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हुए ऐलान किया है कि ईरान ने अमरीका के साथ हाल ही में दस्तखत किए गए इस्लामाबाद मुफाहमतनामे के तहत अपने वादों और अहद को मुअत्तल कर दिया है। ईरान के मीडिया के मुताबिक जनाब गरीब आबादी ने कहा कि तरफेन मुजाकरात कर रहे थे, लेकिन अमरीका ने बकौल उनके जारहाना कार्रवाई करके मुफाहमतनामे के तहत अपनी जिम्मेदारियों की मुबैना खिलाफ वर्जी की है। अमरीका और ईरान ने आज भी एक दूसरे पर हमले किए। आबनाए हुरमुज के मामले पर लड़ाई में शिद्दत आ गई है। गुज़श्ता दो दिन में खारे पानी को साफ करने के प्लांट पर ये दूसरा हमला है, जिससे कुवैत में तशवीश बहुत बढ़ गई है क्योंकि वो तकरीबन 90% पानी के पीने के पानी के लिए इसी तरह के प्लांट्स पर इन्हिसार करता है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल सिक्किम और उत्तराखंड में कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। आइंदा दो रोज के दौरान दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब बिहार

0: छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में भी शदीद बारिश का इम्कान है। दिल्ली के लिए कल आमतौर पर मतला अब्र आलूद रहने की पेशगोई की गई है। भारतीय ओलंपिक्स एसोसिएशन आईओए ने आज ऐलान किया है कि ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों की इफ्तिताही तकरीब में ओलंपिक में तमगा जीत चुकी मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन भारतीय परचम बरदान होंगी। इन खेलों की इफ्तिताही तकरीब इस माह की 23 तारीख को ओवीओ हाइड्रो एरिना में होगी। एक प्रेस रिलीज में आईओए की सदर पीटी उषा ने कहा कि यह एहसास भारतीय खेलों में उनके गराकदर तावन को तस्लीम करता है और उन्होंने खेलों में पूरे भारतीय दस्ते को कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। फीफा आलमी कप में आज रात मियामी स्टेडियम में तीसरे मकाम के लिए फ्रांस और इंग्लैंड का मुकाबला होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 2:30 बजे से खेला जाएगा। स्पेन के खिलाफ सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद आलमी कप में फ्रांस की खिताबी मुहिम खत्म हो गई है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। 72वें कौमी फिल्म अवार्ड का ऐलान कर दिया गया है। फिल्म आर्टिकल 370 के लिए यामी गौतम को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए ममूती और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को मुश्तरका तौर पर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिए जाने का ऐलान किया गया है। तृणमूल कांग्रेस के जो 20 सरकार ने पार्लियामेंट नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए थे उन्हें लोकसभा में अलहदा ग्रुप के तौर पर बैठने के लिए स्पीकर की मंजूरी मिल गई है। अहमदाबाद में आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगने से 5 अफराद की मौत हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस वाकये पर दुख का इजहार किया है। अबनाए हुरमुज के मामले पर अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई में तेजी आ गई है। अहम बुनियादी ढांचे और फौजी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ओलंपिक खेलों में तमगे जीतने वाली मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो में होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों की इफ्तिताही तकरीब में भारत की परचम बरदार खिलाड़ी होंगी। और फीफा वर्ल्ड कप में तीसरे मकाम के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसी आवाज जिसके बारे में गुलजार साहब ने कहा था, उनकी आवाज ऐसी है जैसे किसी पहाड़ी से टकराने वाली बारिश की बूंदें, वो तन मन को तरोताजा कर देती हैं। उनकी मखमली आवाज आत्मा तक सीधे

दिलचस्प बात यह है कि आज उनकी आवाज की बातें कम होंगी, बल्कि उनके गिटार की बातें ज्यादा होंगी, जो उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मी गानों में बजाया।

प्रतिभा की बातें कम करें और उनके गिटार की बातें ज्यादा करें। आज के फनकार आज केंद्रित है जाने माने गायक और गिटार वादक भूपिंदर सिंह पर।

भूपेंद्र सिंह का जन्म 6 फरवरी 1940 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। उनके पिता एक जाने माने गायक और संगीतकार थे, उनका नाम था नत्था सिंह। उन्होंने भूपेंद्र को गाने की और गिटार की तालीम बचपन से ही देनी शुरू कर दी थी। बचपन के इन दिनों में ही भूपेंद्र की दिलचस्पी गजल गाने में भी हो गई थी और वो आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ गए थे। फिर ये हुआ कि संगीतकार मदन मोहन एक बार दिल्ली आए। जाने माने संगीतकार सतीश भाटिया के घर पर एक पार्टी दी गई और इस पार्टी में मदन मोहन ने भूपेंद्र सिंह को सुना। मदन जी ने कहा कि तुम्हें मुंबई आना चाहिए और वहां गायकी में अपनी तकदीर आजमानी चाहिए। इसके कुछ दिन बाद भूपेंद्र को चेतन आनंद ने बुलाया फिल्म हकीकत के इस गाने को गाने के लिए। जरा सोचिए कि एक दुबला पतला नौजवान और उस स्टूडियो में थे कितने सारे लेजेंड, मोहम्मद रफी, मन्ना डे, तलत महमूद और इन सबके बीच भूपेंद्र सिंह।

थे। भूपिंदर सिंह वैसे तो स्पेनिश गिटार बजाया करते थे, लेकिन मुंबई में गिटार की और ज्यादा बारीकियां उन्होंने सीखी भारतीय फिल्म उद्योग के बेमिसाल गिटार वादक भानु गुप्ता से, जो आरडी बर्मन की टीम का हिस्सा थे। तकरीबन 2 बरस तक भूपिंदर सिंह भानु गुप्ता से सीखते रहे। फिर एक इत्तेफाक हुआ, भूपिंदर सिंह मुंबई में एक 12 स्ट्रिंग गिटार खरीद रहे थे। उनके साथ गए थे फिल्म उद्योग के एक और गिटारिस्ट सुनील कौशिक। इत्तेफाकन भूपिंदर सिंह की मुलाकात आरडी बर्मन से हुई, और उसके बाद आरडी बर्मन से भूपिंदर का जो नाता बना वो आरडी बर्मन के इस दुनिया से जाने यानी 1994 तक कायम रहा। पंचम के लिए भूपिंदर सिंह ने कई गानों में बेमिसाल गिटार बजाया है, उसकी बातें करेंगे बाद में। लेकिन पहले आपको बताएं कि हकीकत आने के बाद फिल्म आखिरी खत आई 1966 में। इस फिल्म में भूपिंदर सिंह ने न केवल एक गाना गाया, बल्कि इस गाने को उन्हीं पर फिल्माया भी गया।

सन 1968 में भूपेंद्र सिंह ने पहली बार अपनी गजलों का एक ईपी रिलीज किया। ईपी यानी छोटा वाला रिकॉर्ड। इसमें उन्होंने गालिब और प्रेम जलंधरी को गाया था। इसके बाद भूपेंद्र सिंह का दूसरा एल्बम आया, जिसमें उन्होंने गजलों में स्पेनिश गिटार, बास और ड्रम्स का इस्तेमाल किया। और फिर गुलजार साहब के साथ वो जो शायर था, गजलों के पूरे स्ट्रक्चर को भूपेंद्र सिंह ने पूरी तरह से बदल दिया। बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही प्रयोगवादी एल्बम था वो जो शायर था। पर आज भूपेंद्र की गायकी से ज्यादा बातें होने वाली हैं भूपेंद्र के गिटार की। पंचम के साथ भूपेंद्र के गिटार की तरंगें अब आपको सुनाई देंगी। सबसे पहले 12 स्ट्रिंग गिटार का जादू, फिल्म का नाम हरे रामा हरे कृष्णा।

बातें हो रही हैं उन गानों की जिनमें संगीतकार आर डी बर्मन के निर्देशन में भूपिंदर सिंह ने बजाया गिटार। फिल्म का नाम जवानी दीवानी।

0: पे पिसत्ता, आह क्या गाना है। इस गाने में गिटार भूपिंदर ने बजाया था।
1: तुमने वो क्या देखा

आरडी बर्मन ने बतौर गिटारिस्ट ही भूपिंदर सिंह का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में पंचम से गाने भी गवाए। सन 1972 फिल्म परिचय।

ऐसा नहीं है कि भूपिंदर सिंह ने सिर्फ आरडी बर्मन के लिए ही अपने गिटार के तार छेड़े। भूपिंदर सिंह ने मदन मोहन के लिए कुछ फिल्मों में गिटार बजाया, जैसे फिल्म हंसते जख्म।

फिल्म कादंबरी के इस गाने में भूपिंदर सिंह ने गिटार बजाया, संगीत वलायत खान साहब का था। आशा भोसले का ये गाना, कविता अमृता प्रिय।

इस गाने में भूपिंदर सिंह ने एकॉस्टिक गिटार बजाया, सुनील कौशिक ने इलेक्ट्रिक गिटार, फ्रेंको वाज ने ड्रम्स बजाए और आज के जमाने के जाने माने संगीतकार ए आर रहमान तब इलैया राजा के साथ कीबोर्ड बजाया।

0: गले लगा ले।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हमने खास तौर पर भूपेंद्र सिंह को याद किया और फोकस किया उन गानों पर जिनमें है भूपेंद्र सिंह का बजाया गिटार, पर उनकी आवाज के बिना इस कार्यक्रम को कैसे खत्म किया जा सकता है, तो एक झलक उनके कुछ मशहूर गानों की।

0: भूपिंदर सिंह तो चले गए, लेकिन रह गए वो गाने जिनमें उनका गिटार है, रह गई उनकी गजलें और रह गए उनके फिल्मी गाने। भूपिंदर सिंह हमें हमेशा शिद्दत से याद आएंगे। विनम्र नमन। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने गायक और गिटारिस्ट भूपिंदर सिंह पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान का था। प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे हमारे मुंबई केंद्र का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

0: कार्यक्रम की पहली पेशकश सुनिए फिल्म दिलवाला से।
1: तुम शेर नहीं सुनाओगे?
2: हाँ, कमान अरुण,
3: कमान कमान कमान यार, कमान यार,
2: क्या करूँ यार, आज कोई शेर ही नहीं बन रहा।
4: अरे ये क्या हुआ?
2: ये तो शम्मा ही बुझ गई।
4: अरे अब तो इसे खुदा ही रोशन कर सकता है भाई। अरे चेक करो यार, फिर तो नहीं गया।
1: क्या मालूम।
4: अरे भाई किसी के पास माचिस वाचिस है कि नहीं?
2: हाँ हाँ मेरे पास है। ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

0: तूने सपना को हाथ लगाया, हमारी इज्जत पे हाथ डाला।
1: मामा ठाकुर, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं।
0: जबान खींच लूंगा तेरी।
2: मामा जी,
1: अपना ये डंडा संभाल के रखिए, कोई झंडा लहराने के काम आएगा। हम आज आपके सामने अपने प्यार का ऐलान करते हैं।

करी तेरा सवा सत्यानाश। अरे जेनी, अरे लड़की, ये तूने क्या किया? अरे मुझ लड़के को मझधार में तनहा छोड़कर तू अकेली किनारे पर उछल पड़ी। बेवफा, बेरहम, बेमुरव्वत, तेरी ये हिम्मत।

0: 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई है। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, इट विल मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान उसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नबीदास और रूपाश्री वरकरी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर को और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कांडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गातात्र रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वस्त्राल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र अड़प्पा बीजे अनुष्ठान आज पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच देर रात 2:30 बजे से अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। समाप्त होती हमारी आज की सभा। प्रातःकालीन प्रसारण में 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।